एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आस्था के स्वर कार्यक्रम आरंभ करते हैं समूह स्वर में इस देशभक्ति रचना से। यह रचना गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई है।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है स्वतंत्र कुमार ओझा के स्वर में ये भक्ति गीत। इसे लिखा है पंडित सुमित्रानंदन पंत ने।

आज के आस्था के स्वर कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं हम पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में इस भक्ति रचना से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आस्था के ईश्वर, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन, आलेख चंद्रहास दलाल का।

आत्मोत्थान के लिए नैतिक मूल्यों की चर्चा की गई, परंतु वास्तविक जीवन में उतारने के लिए और गहराई से विचारें तो नैतिकता आज के वर्तमान में थियरी ही है। प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। व्यवहार को नैतिकता की कसौटी पर कसते ही निर्णय द्वंद में फंसता है। नैतिकता चरित्र और उसके ज़्यादा अपने आने वाले जन्म का विचार करने पर भी वर्तमान बाध्य करता है और वर्तमान कमोबेशी अनीति की ओर घसीट जाता है। नीतिगत विचार इस भौतिक सुख साधन प्रतिष्ठा प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा में अभ्यस्त जीवन की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आज भोग ही भाग्य है। जो जहाँ है उससे वह सुखी नहीं है, और सुख की खोज में पैदल से साइकिल, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से मोटरबाइक और मोटरबाइक से मारुति में प्राप्त होने पर सुखानुभूति की आशा करने लगता है, भले ही आवश्यकता न हो। देखा देखी साइकिल से स्कूटर की चाहना तीव्र से तीव्रतर हो जाती है। सुख की खोज का यही क्रम हो गया है। नीतिगत जीवन जिए तो यह सब संभव कहाँ? केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की बात नहीं है, बात तो हमारा बालक शहर की फलाएं स्कूल में ही पढ़े ऐसा विचार दृढ़ होते हुए, असमर्थ होते हुए भी अवास्तविक आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है, तब अतिरिक्त धनार्जन शीघ्रता से कोई अतिरिक्त मार्ग से ही करना होगा। युग की विचारधारा से प्रभावित चाहकर भी वह इस आपाधापी में नैतिक विचारों को आधार नहीं बना पाता, तो क्या यही वास्तविकता बनी रहेगी? ऐसा मान लिया जाए और हालात बद से बदतर होते चले जाएं? नहीं। श्रीमद् गीता के प्रकाश में यदि उत्तर खोजें तो हल मिलेगा ही। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। इसी आधार पर अनीति की अति हो जाने पर सद्विचार का उदय होना है, तभी गाड़ी पटरी पर आ जाती है। विचारों को शुद्ध होने के लिए परिवेश बदलना होगा, अर्थात संग, वह भी सत्संग। सत्संग शने शने सही दिशा बोध कराते हुए जीवन में परिवर्तन लाएगा। सतत धन की अभिप्सा, भौतिक सुखों की लालसा, छल कपट ईर्षा द्वेष अहंकार के प्रति जागरूक रहते हुए जीवन इनके दंशों से मुक्त होकर राहत महसूस करने लगेगा। आंतरिक सुख की ऐसी महक कस्तूरी मृग समान अंदर तो व्याप्त थी पर भटक रहा था। केवल ज्ञान ही नहीं था, जो अंदर था उसे खोजा ही नहीं, और जब पाया तो जीवन की दिशा ही बदल गई। क्या हम कह सकेंगे कि परिवर्तन कैसे संभव हो सका? बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट भेंट बुद्धि

0: जिसके द्वारा अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, इंद्रियों के घोड़ों को भिन्न भिन्न विषय वासना की ओर जाने से बुद्धि रोकती है, मन को काबू में रखती है, योग्य मार्ग पर चलने को प्रेरित और बाध्य करती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। महात्मा टॉलस्टॉय की कहानी हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर से अपनी अतिरिक्त आवश्यकता पर अंकुश लग जाता है और हर हाल में सुख से ऊपर आनंद का अनुभव होने लगता है। अपरिग्रह इसकी कुंजी है। गोधन गजधन बाजधन और रतन की खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन की दशा और दिशा यदि वास्तव में बदलना है तो संतोषम परमम सुखम, यहीं से अनीति छूटती है और नीतिगत जीवन की वास्तविक शुरुआत हो जाती है। जीवन का यही मूल मंत्र है, संतोषी नर सदा सुखी। जीवन नीतिगत स्वयं होता चला जाएगा, जो है जैसा है उसी में संतोष, संतोषम परमम सुखम।
1: ये था आज का चिंतन, आलेख चंद्रहास दलाल का। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर था सुरेश वाडकर का। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा।
1: भाई बहनों, राम राम। आज हम कृषि चर्चा में चर्चा करांगा प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक का बारा में। वाचक स्वर छे मनीषा चौबे को। फेबेढ़ सभी फसल न की पड़वार न अच्छी उपज का लेन 17 पोषक तत्व न की आवश्यकता हो। जिंक जेक आम भाषा में जस्तो कहो जाय सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आवज नारु फसल न का लेन आवश्यक हो। दलहनी फसल में जिंक की कमी का कारण प्रोटीन संचय की दर कम होती जाय। पौधा का लेन जिंक मृदा से अवशोषण द्वारा प्रमुख रूप से प्राप्त हो। सामान्यतः पौधा में जिंक की आदर्श मात्रा 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शुष्क पदार्थ तक उपयुक्त मानी जाए। पौधा का माध्यम से खाद्य पदार्थ में जिंक को संचय हो न अरु जीवित प्राणी न क जिंक प्राप्त हो। दुनिया की आबादी को 1/3 भाग जिंक कुपोषण का जोखिम का अंतर्गत आवज। विशेष रूप से बच्चा नम जिंक तत्व की कमी से कुपोषण बढ़तो जाई रोज। एको प्रमुख कारण जिंक तत्व की कमी वाला आहार को सेवन करनु छे। पौधा में जिंक की कमी का लक्षण की बात करा तो जिंक की कमी का लक्षण पौधा की नई पत्ती न पर आवज। जिंक की अधिक कमी से नई पत्ती न उजली निकलज न पत्ती न की शिरा न का मध्य सफेद धब्बा दिखाई दे। मक्का में जिंक की कमी से सफेद कली रोग उत्पन्न हो न अन्य फसल न पर जैसे कि नींबू की वामन पत्ती आड़ू को रोजेट नरु धान में खेरा रोग उत्पन्न हो। जस्ता की कमी से तना की लंबाई में कमी गाट न का मध्य भाग को छोटो होनो आई जाए। बाली न देर से निकलज नरु फसल पकन में विलंब हो। न तना की लंबाई भी घटती जाए न पत्ती न मुड़ी जाए। मृदा में जिंक की उपलब्धता को प्रभावित करने वाला कारक की बात करा तो मृदा पीएच मान जसो जसो बढ़तो जाए वसो वसो पौधा का लेन जिंक की उपलब्धता में कमी होती जाए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ ह्यूमिक न फाल्विक एसिड का रूप में पायो जाए। जिंक इन्हीं कार्बनिक पदार्थ का साथ चिलेट जिंक यौगिक को निर्माण करे जो पौधा को आसानी से उपलब्ध हुई जाए। जिंक उर्वरक को उपयोग कार्बनिक खाद का साथ करी कन जिंक तत्व की उपलब्धता पौधा में बढ़ज। फास्फोरस युक्त उर्वरक को अधिक मात्रा में उपयोग करने पर या पहले से मृदा में उपलब्ध फास्फोरस की अधिक मात्रा होने पर जिंक की पौधा में उपलब्धता में कमी हुई जाए। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में मृदा का जलमग्न होने का कारण अन्य पोषक तत्व की सांद्रता अधिक हो पर जिंक तत्व की कमी हुई जाए। एकालेन जल निकास को उचित

0: प्रबंधन आवश्यक छे। मृदा का तापमान भी जिंक की उपलब्धता को प्रभावित करज। मृदा का तापमान में कमी होना पर जिंक उपलब्धता घटज न मृदा को तापमान बढ़ने पर जिंक की उपलब्धता बढ़ज। एकालेन ठंडा क्षेत्र में मृदा को तापमान नियंत्रित करने का लेन मल्च को उपयोग जरूरी छे। फसल की प्रजाति न रूप किस्म भी जिंक तत्व की आवश्यकता न उपयोग करने में महत्वपूर्ण हो। हर फसल की जिंक तत्व की आवश्यकता न उपयोग करने की क्षमता भिन्न भिन्न हो न यह जिंक का अवशोषण का प्रभावित करज न फसल का चयन न जिंक को उपयोग फसल का अनुसार होना चाहिए। मृदा न पौधा में जिंक का प्रबंधन की बात करा तो एक साल का अंतराल से मृदा में गोबर की खाद को 10 से 15 टन प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करी करना सभी सूक्ष्म तत्व की पूर्ति की जा सकज। गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने पर 4 से 5 टन गोबर की खाद का साथ 50% जस्ता की अनुशंसित मात्रा को प्रयोग से एकी पूर्ति करी सकज। आज की कृषि चर्चा में बस एतोज। राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

विशेष कार्यक्रम में सुबह 7 बजे सुनिए वार्ता रविंद्रनाथ टैगोर। वार्ताकार होंगी गीता कन्नौजिया। साप्ताहिक कार्यक्रम सुनहरे पत्र आप सुनेंगे सुबह 7:20 से। 8:15 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे जगजीत सिंह। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 8:30 पर। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे सुबह 9 बजे से और फिर 11 बजे से।

जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से सुबह 10 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 10:05 पर आपकी पसंद। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:35 से।

30 मिनट पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। शाम 6:30 युवाणी कार्यक्रम में शाम 6 बजे क्रम होगा इंद्रधनुष।

0: किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:21 और विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8 से सभा की समाप्ति तक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आज की ताजा खबर।

आज की ताजा खबर में लेते हैं समाचार पत्रों से सुर्खियां। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गुरुवार यानी आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने इस वर्ष की यात्रा की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 19 मई तक जारी रहेगी। इस बार करीब 1000 श्रद्धालु पवित्र स्थल की यात्रा कर सकेंगे। जिला न्यायालय में 9 मई 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों और प्रकरणों के निराकरण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि राजीनामा योग्य मामलों में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें और आमजन को त्वरित, सुलभ और कम खर्चीला न्याय मिले। जिले में आजीविका मिशन और उद्यानिका विभाग के समन्वय से इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्याज, टमाटर और अरबी की प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण इंक्यूबेशन सेंटर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं की अधिक आय अर्जित करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की द्वितीय परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता ने सभी 6 परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर के इन 6 केंद्रों पर 8,500 से अधिक छात्र देंगे परीक्षा। खंडवा शहर संभाग के अंतर्गत 11 केपी इमरजेंसी फीडर और 11 केवी इंडस्ट्रियल फीडर पर आज मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। सुबह 7 से 11 बजे तक संबंधित क्षेत्र भैरव तालाब, पड़ावा, गिदवानी मार्केट, टाउन हॉल में बिजली बंद रहेगी। अब एक नजर खेलों के हाल पर। आईपीएल 19 के 49वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हराया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल पर

नंबर वन पर आ गई है। अब एक नजर मौसम के हाल पर। खंडवा शहर का कल दिन का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। समाचारों का संकलन किया शाहबाज उस्मानी ने।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता रविंद्रनाथ टैगोर। वार्ताकार है गीता कन्नौजिया।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आप सभी श्रोताओं को गीता कनौजिया का नमस्कार। दोस्तों, आज 7 मई है और आज ही के दिन भारत की पुण्य धरा पर एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ था जिनकी ख्याति भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी विख्यात है। और उन युग पुरुष का नाम है रविंद्रनाथ जी टैगोर, जो कि एक महान कवि, साहित्यकार, संगीतकार और शिक्षाविद थे, जो न केवल बंगाली साहित्य में अपितु भारतीय संस्कृति और कला को नई दिशा देने वाले महानायक थे। टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रमुख धार्मिक सुधारक और ब्रह्म समाज के नेता थे। उनकी माता जी शारदा देवी थी। वे अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। वे एक संभ्रांत परिवार से थे, लेकिन उनका बालपन बहुत सादगी में बीता। टैगोर जी की पारंपरिक स्कूली शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उनकी शिक्षा मुख्य रूप से घर पर हुई। उन्होंने शिक्षक से इतिहास, भूगोल, विज्ञान और संस्कृत की पढ़ाई की। टैगोर ने महज 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने भानु सिंह उपनाम से अपनी पहली महत्वपूर्ण कविताएं प्रकाशित की। उन्होंने लगभग 1000 कविताएं, उपन्यास और 8 से अधिक कहानी संग्रह लिखे। उनकी कहानियों में भारतीय समाज की गहरी झलक देखने को मिलती है, जैसे काबुलीवाला। टैगोर जी का सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह गीतांजलि है, जो उनकी अपनी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति टैगोर जी ही थे। यह पुरस्कार उन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का

0: राष्ट्रगान बनी। पहला भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोमार बांग्ला। महात्मा गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा देने का एक अनूठा केंद्र था। बाद में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि केवल साहित्य बल्कि आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन का अद्भुत संगम है। इसी रचना से संबंधित कुछ पंक्ति आप सभी के बीच साझा करना चाहती हूँ। चित्त जहाँ भय शून्य हो, चित्त जहाँ भय शून्य हो, मस्तक जहाँ ऊंचा हो, मस्तक जहाँ ऊंचा हो, ज्ञान जहाँ मुक्त हो, ज्ञान जहाँ मुक्त हो, जहाँ संसार को संकीर्ण, जहाँ संसार को संकीर्ण घरेलू दीवारों ने छोटे छोटे टुकड़ों में न बांटा हो, छोटे छोटे टुकड़ों में न बांटा हो। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही हम मानवता की राह पर चलते हुए अपनी सोच, ज्ञान और स्वतंत्रता का जोश लेकर निर्भय मन से आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया और शायद आपको पता हो कि उन्होंने 2000 से अधिक चित्र बनाए। वे एक संगीतकार भी थे। उनके द्वारा 2000 से अधिक गीतों की रचना की गई, जिन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाओं में मानवता, प्रेम, प्रकृति और देशभक्ति की गहरी भावना दिखाई देती है। उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता, सोच की आज़ादी और सृजनात्मकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे प्रकृति, कला और जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। उनके विचार बहुत ही प्रगतिशील और प्रेरणादायक थे। वे स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और मानवता में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ अपनी लेखनी के माध्यम से आवाज़ उठाई। एक बार पुनः मैं आप सभी का ध्यान हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की ओर आकृष्ट करना चाहूँगी। जन गण मन केवल लेखनी तक ही सीमित नहीं है, अपितु टैगोर जी के द्वारा हम भारतवासियों को जो राष्ट्रगान के रूप में हमें प्राप्त हुआ, वह आज करोड़ों भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाता है। यह गीत हमें एकता और सम्मान का संदेश देता है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी कलम से देश की पहचान बना दी, क्या हम सभी के लिए गर्व की बात नहीं है? दोस्तों, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारे पास तकनीक है, संसाधन है, अवसर हैं, लेकिन क्या हमारे पास वह सोच है जो टैगोर जी के पास थी? क्या हम प्रकृति को उतना महत्व देते हैं? क्या हम रचनात्मकता को उतना अपनाते हैं? क्या हम स्वतंत्र सोच रखते हैं? अगर नहीं, तो आज का दिन हमें यही सिखाने आया है। आज टैगोर जयंती के इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम डर के बिना सोचेंगे, हम रचनात्मक बनेंगे, हम मानवता को सबसे ऊपर रखेंगे। हम केवल सफल नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।
1: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे

0: को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और वियतनाम ने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। मध्य प्रदेश में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा आज से हो रही प्रारंभ, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश के मौसम में आया बड़ा बदलाव, कहीं तेज गर्मी तो कहीं हो रही है बारिश। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल पंजाब किंग्स को 33 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने अपने आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देते हुए साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब डॉलर तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तु लाम के बीच हुई वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड आधारित प्लेटफॉर्म छोड़ने और कृषि उत्पादों जैसे अंगूर, अनार और ड्यूरियन के लिए बाजार पहुंच आसान बनाने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा,
1: कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। इस दौरान साइबर और अंतरिक्ष युद्ध जैसी चुनौतियों और भविष्य की सैन्य क्षमताओं पर चर्चा के साथ स्वदेशी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में असफल रहे विद्यार्थियों के लिए आज से सुनहरी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा परिणाम आपके भविष्य की कहानी तय नहीं करते। उन्होंने इस अवसर को विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प बताया। डॉ. यादव ने अभिभावकों और शिक्षकों से भी अपील करते हुए कहा,
2: आज दोबारा मौका मिलता है, इसलिए

0: ऐसे बच्चे जिनको किसी कारण से पहले अटेम्प्ट में दिक्कत आ रही, उनको 7 मई से होने वाली परीक्षा के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामना है। आप सभी के लिए केवल ये परीक्षा नहीं है, आप केवल छात्र नहीं है, भविष्य की धरोहर है। इसलिए आप सबके प्रति, आपके सपनों की मेहनत के लिए मैं आपका, आपके परिवार का और शिक्षकों का, सबका जो विश्वास आप में है, उस विश्वास को बनाए रखने की जवाबदारी भी आप ही की है।
1: केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग स्थित उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय में भारतीय डाक के 100वें एंजिन डाकघर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। ये सुविधा छात्रों, शिक्षकों और परिसर में रहने वाले निवासियों की सेवा के उद्देश्य से एक आधुनिक युवा केंद्रित डाक केंद्र के रूप में विकसित की गई है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक एक युवा और गतिशील राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग करने जा रही है। उज्जैन की सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में इस साल जुलाई से टेंपल मैनेजमेंट यानी मंदिर प्रबंधन में MBA कोर्स शुरू किया जाएगा। प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य मंदिरों के पारंपरिक प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल स्वरूप देना है। श्री परमार ने बताया कि इस कोर्स से एक पंथ दो काज सिद्ध होंगे, जहां एक ओर मंदिरों की व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन बेहतर होगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के विशिष्ट अवसर पैदा होंगे। उज्जैन को इस कोर्स के लिए चुना गया है क्योंकि ये मंदिरों की नगरी है और यहां प्रबंधन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन का संकल्प धरातल पर साकार हो रहा है। प्रदेश के वंदन विकास केंद्र जनजाति और PVTG वर्ग की महिलाओं को लाभार्थी से उद्यमी बनाने के सशक्त मंच बनकर उभरे हैं। सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक पूरा कर दिया है, जिससे महिला संग्राहकों को लगभग 344 करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया गया। वर्तमान में 126 वंदन केंद्रों के माध्यम से 10,000 से अधिक महिलाएं लघु वनोपज के प्रसंस्करण और विपणन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये पहल न केवल महिलाओं की आय बढ़ा रही है बल्कि उन्हें समाज में नेतृत्वकारी भूमिका और सम्मान भी दिला रही है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसके चलते अब तक 8.5 लाख से अधिक किसानों से 48 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। इसी बीच मंत्री श्री राजपूत ने कल रायसेन जिले के केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को सख्त फटकार लगाई। आपको बता दें कि प्रदेश में किसानों को समर्थन मूल्य और बोनस मिलाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस समय प्रदेश में मौसम के दो अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय गतिविधियों के चलते ग्वालियर, रीवा और छतरपुर समेत 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर भोपाल, उज्जैन और इंदौर जैसे 44 जिलों में तपिश पड़ेगी, जहां पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं नरसिंहपुर 42.2 डिग्री के साथ कल प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जबकि सीधी 35.0 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 9 और 10 मई को लू का असर पड़ेगा, लेकिन 10 मई से एक नया सिस्टम सक्रिय होने से मौसम में पुनः बदलाव की संभावना है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल पंजाब किंग्स को 33 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के कान्हा स्टेडियम क्रिकेट में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में आजीविका मिशन और सीवी रमन यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्वसहायता समूहों की महिलाओं को फल सब्जी प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख ने बताया कि इसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमी बनाना है। आगर मालवा जिले में किसानों को खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए जिले की

मोलियाखेड़ी संस्था में ई टोकन प्रणाली लागू की गई है। इस नई व्यवस्था से किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति मिली है और समय की बचत हो रही है। मैहर जिले में 26 मई को गंगा दशहरा पर आल्हा तालाब में भव्य आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने विद्यार्थियों अधिकारियों को जल संरक्षण की थीम पर दीपदान और स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। सतना जिले में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत सतना रेलवे स्टेशन से 11 मई को 262 यात्री हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने यात्रा को व्यवस्थित बनाने हेतु सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मैहर जिले में प्रशासन ने बदेरा क्षेत्र की आमतारा गैस एजेंसी सहित दो संस्थानों पर अनियमितता के चलते FIR दर्ज की है। खाद्य विभाग की जांच में ये एजेंसियां सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और अवैध स्टॉक की दोषी पाई गईं। झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम ने रायपुरिया में आधुनिक शिव नर्सरी का अवलोकन किया। यहां 25 लाख की लागत से कोकोपेट तकनीक द्वारा मिर्ची के पौधे तैयार किए जा रहे हैं जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हैं। छिंदवाड़ा जिले में कुंडीपुरा पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाकर ब्लैक फिल्म लगाने लगे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी शिकंजा कसा है। छतरपुर जिले में रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने अलीपुरा में लापरवाही बरतने वाले पटवारी को निलंबित कर दिया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा और महापौर मालती राय ने कल वार्ड 31 स्थित साउथ टीटी नगर में साहित्यकार पार्क के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक क्रम सुनहरे पत्र।

0: सुनहरे पत्रकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त मनीष कुलकर्णी का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ में हैं, आप सोच रहे होंगे कौन है, तो चिन्मय दीक्षित सर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को भी सुप्रभात।
0: सुप्रभात सभी श्रोताओं को। और श्रोताओं, जैसा कि आपने सुनी लिया होगा कि आज की आवाज और खनकदार आवाज के साथ चिन्मय जी हमारे साथ है, तो शुरुआत करते हैं हमारे श्रोताओं के ईमेल का।
1: जरूर।
0: ये ईमेल जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि आप दोनों को हमारा सुबह का नमस्ते कार्यक्रम आपके मीठे गीत बहुत अच्छा लगता है। आजकल जितने भी ईमेल श्रोता द्वारा भेजे जाते हैं सभी को शामिल किया जाता है। एक ही फिल्म कार्यक्रम के अंतर्गत भी जो प्रस्तुति होती है बहुत अच्छी आती है। इसके बाद शास्त्रीय संगीत भी हम सुनते हैं। आकाशवाणी खड़वा के फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुनने में अच्छा लगता है। साथ ही पिछले दिनों पंकज लाड जी द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में कोई बदलाव किया है तो जरूर बताएं। हमारे ईमेल को भी आप आपके मीते गीत कार्यक्रम में शामिल करें। आकाशवाणी खंडवा का कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर बार बार बंद क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, बाकी आकाशवाणी केंद्रों पर ऐसा नहीं होता है। और हमारा ईमेल आपने शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईमेल है सीतामऊ रोड नाटाराम से दशरथ सेन।
1: दशरथ सेन जी, आपने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। कार्यक्रम आपको पसंद आया, पंकज लाड़ जी के शायद संभवतः गुड मॉर्निंग इंदौर, आपको गुड मॉर्निंग खंडवा आपको पसंद आया होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न है कि मोबाइल एप्लीकेशन पर यह कार्यक्रम आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण बार बार क्यों रुक जाता है। देखिए, खंडवा का प्रसारण रुकने का एक कारण होता है, यहाँ पर कई बार जो मोबाइल नेटवर्क प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता, उनके द्वारा मिल रही सेवाओं में व्यवधान आना है ना।

0: तो उस वजह से ये होता है। हम इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था करने का की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। अब जैसे ही वो संपन्न होगी वैसे ही कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से निर्बाध प्रसारण जारी रहेगा, भले ही एक लिंक टूट जाए पर कोई बात नहीं, दूसरी एक वैकल्पिक व्यवस्था आपके लिए प्रसारण जारी रखने के लिए चलती रहेगी। इसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, अब जल्दी ही जब ये संपन्न हो जाएगी तो आपको कोई समस्या रहेगी नहीं कार्यक्रमों को सुनने में कहीं से भी,
1: मतलब ये कहीं भी आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से, और कुछ ही समय बाद हो सकता है कुछ दिनों में इन्हें सुनने को मिल जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: ये ईमेल है भाटापारा छत्तीसगढ़ से

0: चलती रहेगी। इसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, अब जल्दी ही जब ये संपन्न हो जाएगी तो आपको कोई समस्या रहेगी नहीं कार्यक्रमों को सुनने में कहीं से भी,
1: मतलब ये कहीं भी आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से, और कुछ ही समय बाद हो सकता है कुछ दिनों में इन्हें सुनने को मिल जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: ये ईमेल है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, विदही जोशी, हंसिका जोशी, इनके साथ में इन्होंने जोड़ लिया है अनूपपुर मध्यप्रदेश से जयवंती केवट, और खंडवा से इन्होंने एक और नाम जोड़ा है अब्दुल गफ्फार डावर जी का। एक ही ईमेल में इन्होंने तीन नाम जोड़े हैं और लिखा कुछ विशेष नहीं, बस इतना ही कहा कि यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर आपके मीत ये गीत कार्यक्रम अच्छा लगता है और इसकी प्रस्तुति के लिए बधाई।
0: क्या बात है, आपको वो कार्यक्रम पसंद आता है जिसमें श्रोताओं का जो है वो भी कुछ ना कुछ प्रेम किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष शुमार रहता है। बहरहाल इस पत्र के लिए आपको बधाई, अनूपपुर तक से जो हमारे श्रोता हैं वो जुड़े हुए हैं ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा।
1: और ये ईमेल हमें मिला है शाहजी नगर देगरूल जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे जी का।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये कहते हैं कि सुनहरे पत्र में हमारा यह पहला पत्र है। आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं, आपके मीठे गीत कार्यक्रम कभी सुनना नहीं भूलते क्योंकि हमें श्रोताओं की भागीदारी के कार्यक्रम पसंद आते हैं।
0: क्या बात है, स्वागत है बंधु आपका इस कार्यक्रम में, और हमारे श्रोता के रूप में आज आपने सुनहरे पत्र में जो पदार्पण किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम आशा करते हैं कि आप प्रतिक्रियात्मक पत्र भी भेजेंगे और समालोचनात्मक पत्र भी हमें आपकी ओर से प्राप्त होंगे और साथ साथ कुछ सुझाव भी मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल, और इनका पहला पत्र है इसलिए इनका स्वागत भी कार्यक्रम में। ये अगला ईमेल है हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, ग्राम शिरडे, जिला सांगली से। सुनहरे पत्र प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता को सादर नमस्कार। सोमवार 4 मई का प्रसारित किया गया गुड मॉर्निंग खंडवा प्रोग्राम अच्छा लगा। इस मौसम में मतलब गर्मी से सभी परेशान हैं, गर्मी का असर शरीर पर होता है, गर्मी से बुरा असर हमारे शरीर पर होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है। इस विषय के बारे में उपयुक्त जानकारी मिली, गीतों का चयन अच्छा था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ये गीत करने प्रिय लगा। पंकज लाड़ को बहुत बहुत धन्यवाद उनकी प्रस्तुति के लिए।
0: क्या बात है, आपको प्रस्तुति पसंद आई ये जानकर हमें अच्छा लगा। मुझे लगता है पंकज लाड़ जी अगर हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो उन्हें भी हार्दिक प्रसन्नता होगी माफ करें, और पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।
1: ये ईमेल है बड़ावाम चौक खंडवासी ममता मारकंडे और संजय मारकंडे का। प्यारे प्यारे पेशकर्ता जी को नमस्कार, किसान वाणी में स्मिता बरोली जी द्वारा जो पानी बचाव पर उपयुक्त जानकारी सुनवाई गई सोमवार को विशेष कार्यक्रम में, नाम इन्होंने कुछ लिखा है रश्मि मसानी से, गंगा जल संवर्धन पर ज्ञानवर्धक वार्ता बहुत अच्छी लगी। इसी दिन का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम सबसे बेस्ट शिक्षा, ज्ञान, मनोरंजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण से ओतप्रोत लबालब था जो कि पंकज लाड़ जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में प्रेरणाप्रद लगा और उन्होंने कहा कि विशाखा सोनी जी द्वारा जो ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया दृष्टि बाधित बच्चों के ऊपर वो भी इन्हें लाभप्रद लगा, और बाकी इन्होंने कुछ विशेष लिखा नहीं है।
0: अरे वाह, अरे लगभग समस्त कार्यक्रमों की आपने तारीफ लिखी है, पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अच्छा लगा कि आपको विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आ रही है, आगे भी हमें खत लिखकर बताइएगा कि आपको कार्यक्रमों में और क्या बदलाव आप अपेक्षा करते हैं कि वो हम लेकर आए।
1: ये ईमेल है पिछले सप्ताह शादी ब्याह के रेलबम पेल में हम सभी कार्यक्रमों सुन नहीं पा रहे हैं, जो सुन रहे हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। श्रोता अंतर्गत इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के नारायण हागे से रेडियो के प्रति प्रेम समर्पण को श्वेता जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को सुंदर रेपल गुड मॉर्निंग खंडवा में पंकज लाड़ द्वारा जो प्रस्तुति दी गई मनमोहक लगी। ऐतिहासिक फिल्म बाजीराव मस्तानी के गीत संगीत और पटकथा संवाद की तारीफ तो बनती है। कीर्ति गोखले जी को इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है लिखने वाले जूना राम मंदिर रामगंज खंडवा से विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, शिवी सलोनी, ईशु बाबा और पेंटर बाबू, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से कमला बिमला सरला देवी, साथ में उन्होंने जोड़ा है ये नाम भी।
0: क्या बात है, आप सभी को पत्र लिखने के लिए बहुत सारे बधाई और शुभकामना तथा हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। कार्यक्रम आपको पसंद आया ये जानकर हमें अच्छा लगा।
1: ये है चांदनी चौक गड़ई पडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन। इंसान की जीवन में समय का बड़ा ही महत्व है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय का इंतजार हमें करना पड़ता है, और जो इंसान समय के साथ साथ चलते हैं वह

0: कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी समय को ध्यान में रखते हुए हम सुनते ही रहते हैं आकाशवाणी खंडवा के प्रसारण, और इसी क्रम में हमने आकाशवाणी खंडवा के सुप्रसिद्ध कार्यक्रम सुनहरे पत्र कार्यक्रम को 30 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह अपने चांदनी चौक से छत्तीसगढ़ में सुना, और इस दिन कार्यक्रम में शिरकत किए थे विद्याधर मुले जी और पंकज लाड जी। इनका अंदाज आवाज और हंसी के ठहाक से लगाते हुए कार्यक्रम को सभी श्रोताओं के भी समर्पित किया, इन्हें बहुत अच्छा लगा। और विशेष इन्होंने कुछ इस कार्यक्रम में लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा हुआ है।
1: क्या बात है, आप छत्तीसगढ़ से हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, खंडवा की निमाड़ की धड़कन छत्तीसगढ़ी में सुनाई दे रही है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बताइएगा कि और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं। हमारी इच्छा रहेगी ये जानने की कि कार्यक्रमों में क्या आपको पसंद नहीं भी आता है।
0: सही है, अगर आप तारीफ ही करेंगे सिर्फ लिखेंगे तो ही हमें मज़ा नहीं आएगा। क्या नहीं पसंद आता है और क्या पसंद आता है उसकी समीक्षा जरूर करें।
1: ज़रूर करें।
0: ये है ईमेल ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, शंकरलाल गंगराड़े, कैलाश फुलमाली और मोहम्मद हसनैन पवार। ये ईमेल में लिखा है कि निमाड़ की सुई धड़कन आकाशवाणी खंडवा सुनहरे पत्र कार्यक्रम के हर दिल अजीज मेजबानों को हमारा पुरखलुस आदाब।
1: आदाब।
0: इन्होंने प्रशंसा की है कि गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम जो कि विद्याधर मुले जी और मनीष शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इन्हें बहुत पसंद आया। साथ ही उन्होंने कहा है कि रविवार को फोन करेगी सुने कार्यक्रम जो मनीष शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो उन्हें पसंद आया।
1: बधाई।
0: और आपके मीठे गीत कार्यक्रम में पंकज लाड जी द्वारा प्रस्तुत उन्हें पसंद आया। साथ ही लोक रंजनी कार्यक्रम की इन्होंने तारीफ की है। एक ही फिल्म कार्यक्रम में रणधीर कपूर और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म बाजीराव मस्तानी की इन्होंने तारीफ की है। और कीर्ति गोखले का इन्होंने शुक्रिया अदा किया है इस कार्यक्रम के लिए।
1: ओके।
0: और एक उन्होंने कहा है कि सुझाव है एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिरोज खान और हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म धर्मात्मा को भी शामिल करें तो बहुत अच्छा होगा।
1: जरूर जरूर। अभी हमारे पास पिछली बार के जो सूची है वो तैयार है, वो पूरी नहीं हुई है, पर उसमें ये नाम जरूर जोड़ लेंगे धर्मात्मा का।
0: बिल्कुल।
1: बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोक रंजनी कार्यक्रम को भी आप पसंद कर रहे हैं ये जानकर। तो पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नर्मदे हर जिंदगी भर,
1: नर्मदे हर जिंदगी भर
0: नाम इनका ये जो शुरुआत है इससे समझ में आता है कि हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्रवीण शिमाली जी। और इन्होंने इनका जो ईमेल में लिखा है कि एक ही कहानी के अंतर्गत नफीसा नोखंड वाला की कहानी गजरा सुनी, बेहद पसंद आई। 2 मई को चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य भेंटवार्ता अस्थमा रोग कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर प्रशांत डोंगरे द्वारा जो जानकारी दी गई थी वो स्वास्थ्य पथ लगी। 3 मई को सुनहरे पल कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री स्वर्गीय नरगिस दत्त की पुण्यतिथि पर फिल्मों की चुनिंदा गीतों को सुनवाया गया, वो उन्हें पसंद आया है। और 4 मई को गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में भीषण गर्मी के ऊपर जो कार्यक्रम बनाया गया था, और साथ में इसमें खलघाट के कवि विजय शर्मा जी की गर्मी की निमाड़ी रचना ने हमारा मन मोह लिया। कार्यक्रम की अनूठी पेशकश पंकज लाल की थी। 5 मई को विविध कार्यक्रम के अंतर्गत यश पांडे की काव्य रचनाओं ने आनंद ला दिया। इसी दिन का सुनहरे पल में भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के रचयिता महान संगीतकार पद्मभूषण से सम्मानित नौशाद जी की पुण्यतिथि पर संगीतबद्ध गीतों को सुनकर आनंद आ गया। 6 मई को एक ही फिल्म में बाजीराव मस्तानी फिल्म की कहानी और गीत सुनकर आनंद आ गया। मन की बात, जल का संरक्षण करें, जल है तो कल है, स्वच्छता ही सेवा है।
1: बिल्कुल, जल का संरक्षण करें, बहुत बढ़िया आपका पत्र है प्रवीण जी, और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको लगभग कार्यक्रम सभी कार्यक्रम पसंद आए हैं। देखिए अभी एक और पत्र आया था जिसमें भीषण गर्मी के ऊपर बने कार्यक्रम का जिक्र किया गया था। आप सभी श्रोता यदि एक बार प्रयास करेंगे तो आपको देखेगा कि मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में वन का जो क्षेत्र है वो घटता जा रहा है, तो यदि हम इसके लिए कुछ जागृत प्रयास करें तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को इतनी या इससे ज़्यादा भीषणतम गर्मी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इतने अच्छे से संगीतकारों का जिक्र हुआ है
0: जी जी,
1: तो नौशाद जी का नाम आ गया है, तो अब क्यों ना एक संगीत ओपी नैयर जी के जो मतलब उनके साथी रहे हैं उस दौर के, उस युग के, उनके एक गीत सुना जाए।
0: बिल्कुल, तो सुनते हैं ये गीत।

0: तो साथियों, आपने अभी गीत सुना। देखिए, नौशाद जी का जिक्र आया था और नौशाद जी के साथ ओपी नैयर जी का जिक्र ना आए, वो कैसे हो सकता है। तो उनका संगीतबद्ध ये गीत था और आवाज गीता दत्त एवं मोहम्मद रफी जी की थी।
1: बिल्कुल, फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55
0: जी।
1: ये ईमेल हम लोग अब शामिल कर रहे हैं। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना और इनके साथ है सुधावा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश जगता।
0: अच्छा,
1: पिछले सप्ताह सुनील पत्र लाजवा पेश किया गया। शनिवार विशेष प्रोग्राम में तारकेश्वर चौरी जी से काव्य रचनाएं सुनी। चेतना प्रोग्राम के अंतर्गत नेचुरोपैथी क्या है, इस विषय पर कमलेश चौधरी जी से विद्याधर मुले की बातचीत सुनी और बहुत कुछ जानने को मिला। सप्ताह भर के निमाड़ी लोकगीत के साथ साथ फिल्म संगीत और सुनहरे पल के साथ सुगम संगीत का भी आनंद लिया। रविवार के सुनहरे पल प्रोग्राम में श्वेता सोनी ने कुछ चुनिंदा गीत जो कि अभिनेत्री नरगिस पर फरमाए थे वो पसंद आए ने। मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस पर वार्ता सुनी जो लाभकारी लगी। डॉक्टर प्रशांत डोंगरे जी को धन्यवाद। विविधा में यश पांडे का काव्य पाठ सुना। सुगम संगीत में मेहंदी हसन को सुना। विशाखा सोनी जी ने साथ ही लोकरंजनी फरमाइशी प्रोग्राम सुना। इन सभी प्रस्तुतकर्ताओं को धन्यवाद। बुधवार विशेष कार्यक्रम में नर्स सप्ताह पर प्रोग्राम सुना और एक ही फिल्म में बाजीराव मस्तानी की स्टोरी और गीत इन्हें पसंद आए। आप अगले हफ्ते हमारा दिल हमारे पास है फिल्म और इसके गीत जरूर सुनाएं ताकि इस सप्ताह का हम आनंद ले सकें। सुनील पर प्रोग्राम

0: बहुत ही दिलचस्प और मैं रोज सुनता हूँ। आपके मीठे गीत कार्यक्रम के साथ आपके द्वारा चुने गए पत्र और ईमेल हमें बहुत ही भावपूर्ण और दिलचस्प रखते हैं। गीतों का चयन भी लाजवाब रहता है। सभी प्रस्तुतकर्ताओं का वाचन, आवाज और शैली बहुत ही अच्छी है।
1: चलिए, आपको ये सभी प्रस्तुतियाँ पसंद आ रही हैं ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और मुझे यकीन है कि जो प्रस्तोता जिनका आपने जिनके कार्यक्रमों का जिक्र किया और आपको पसंद आए वो कार्यक्रम, उनके प्रस्तोताओं को भी हार्दिक प्रसन्नता होगी आज आपके इस पत्र को सुनकर। लगभग सप्ताह के सभी प्रसारणों का आपने जिक्र कर ही लिया है और आपको लगभग वो सारे ही पसंद आए, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़रूर हमने आपकी ये जो फिल्म है, आपकी फरमाइश, इसको नोट
0: लिस्ट में जोड़ लिया है,
1: लिस्ट में जोड़ लिया है, और आपके पास श्रृंखलाबद्ध रूप से ये सभी फिल्में आती जाएंगी। हमारा दिल आपके पास है एक अपने कालखंड की अनोखी फिल्म थी, तो ज़रूर इसकी कहानी भी रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत की जा सकती है। तो धन्यवाद आपके इस पत्र के लिए, आगे भी हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते रहिएगा।
0: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, प्यार भरा नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के सभी प्रोग्राम हम सुनते हैं, पसंद आते हैं। 2 मई को जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई गजलें, 3 मई को अदनान स्वामी के गाए नगमे पसंद आए। उसी दिन हमारे श्रोता कार्यक्रम में बरकट बकाल के नारायण हांगे जी से जो श्वेता सोनी जी की बातचीत थी वो इन्हें बहुत पसंद आई। 1 मई को फिरदौजी और 2 तारीख को विद्याधर मुले जी, 4 को पंकज लाड जी और 5 तारीख को मनीष शर्मा जी द्वारा जो आपके मीठे गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था वो इन्हें पसंद आया।
1: अरे वाह, धन्यवाद। आपने तो लगभग सभी कार्यक्रमों की और प्रस्तोताओं के नाम लेकर तारीफ कर दी। आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस हम हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, देश की सुरीली धड़कन तो विविध भारती है। जी
0: बिल्कुल, ये ईमेल है बाजार फेल शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद जुनेद मोहाल, मोहम्मद रियाज मोहाल और मोहम्मद रिजवान मोहाल। निमाड़ क्षेत्र की सुरीली आवाज आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम सुनहरे पत्र के मेजबान साथियों को हमारा प्यार भरा आदाब।
1: आदाब।
0: गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के ईमेल और पत्र शामिल किए गए। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता विद्याधर मुले जी और मनीष शर्मा जी के जोड़ी ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसी दिन का आपके पसंद कार्यक्रम हमें पसंद आया। एक ही फिल्म कार्यक्रम में फिल्म बाजीराव मस्तानी, फिल्म की कहानी और सुमधुर गीत सुनकर दिल झूम उठा। यादगार और दिलकश पेशकश के लिए श्वेता सोनी जी को इन्होंने लगता है नाम
1: मेरे ख्याल से कीर्ति गोखले ने
0: कीर्ति गोखले था
1: प्रस्तुत किया था। हाँ, जी।
0: और इसी दिन आपके मीठे गीत कार्यक्रम में लाजवाब गीत सुनवाए गए। सदाबहार पेशकश के लिए प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई। गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम सुनहरे पल, सुगम संगीत, चेतना, सप्ताह भर के आपके मीठे गीत, युवाणी, किसानवाणी, बाल जगत और फोन करी गीत सुने, हेलो फ्रेंड्स, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक पेश किए गए। सभी कार्यक्रमों के लिए हमारी ओर से साधुवाद।
1: आपको इस पत्र के लिए साधुवाद बंधु। बहुत आपने कार्यक्रमों के विषय में ये बताया कि आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आए। अगली बार हम जानना चाहेंगे कि उन कार्यक्रमों में आपको क्या क्या पसंद आया है, लिखकर जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा।
0: कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदी जोहरी, पूजा और पायल। मोदी जी नमस्कार, 3 मई को हमारे श्रोता कार्यक्रम में बरकट बकाल के श्रोता नारायण हांगे जी की श्वेता सोनी के साथ बातचीत बहुत ही पसंद आई। 2 मई को जगजीत सिंह चित्रा सिंह की द्वारा गाई गई गजलें पसंद की। 1 मई को फिरदौस जी, 2 मई को विद्याधर मुले जी का आपके मीठे गीत कार्यक्रम इन्हें पसंद आया। शुक्रिया, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में पड़ोसन फिल्म की कहानी सुनाए। एक और फरमाइश आ गई है आपके लिए,
1: जरूर
0: इसे भी लिस्ट में जोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पड़ोसन फिल्म की कहानी। और ये अगला ईमेल है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, निशा परवीन और आसमानाज अंसारी। 30 अप्रैल 2026 का सुनहरे पत्र सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। मुले जी और पंकज लाड़ जी को हार्दिक बधाई। इसी दिन का आपकी पसंद जिसे पंकज लाड़ द्वारा पेश किया गया था पसंद आया। 16 अप्रैल 2026 मतलब पुराना ईमेल है लगता है ये। प्रसारित आपके पसंद कार्यक्रम की प्रस्तुति भी लाजवाब रही। राखी जैन जी को बधाई। इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा ईमेल शामिल किए गए जो सराहनीय कदम है, एक बार फिर आपको बधाई। और हाँ, उन्होंने इतना लिखा है कि सुगम संगीत में गुलाम अली को सुना है, दिल खुश हो गया। और एक ही फिल्म की इन्होंने तारीफ की है, बाजीराव मस्तानी की, उसके लिए भी इनका धन्यवाद।
1: आपके इस पत्र के लिए आपका धन्यवाद। आपने एक विशेष प्रस्तुति का जिक्र करते हुए जो गत माह हुई थी उसका आपने जिक्र किया और बताया कि वो आपको पसंद आई क्योंकि उसमें अधिकतम खत शामिल किए।

0: गए थे, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे हम अपने सभी खतों वाले कार्यक्रम में जितने हमारे पास होते हैं उन्हें शुमार करने का प्रयत्न करते हैं ताकि कोई भी श्रोता पीछे ना रह जाए। जिन्होंने पत्र लिखने का कष्ट उठाया है उनके इस कष्ट को ज़रूर माइक पर आना चाहिए, ऑन एयर प्रस्तुत होना चाहिए। हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं। बहरहाल पत्र लिखने के लिए आपका धन्यवाद बंधु।
1: ताज रेडियो श्रोता संघ कल्याणगंज खंडवा से कोसर बी पवार, हसीना बी पवार, हीना सईद खोकर, अलमास बानो पवार और सबीना जहीर पवार। सुनहरे पत्र कार्यक्रम के पेशकर्ता मेजबान साहेबान को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: आदाब। खंडवा आकाशवाणी के हर दिल अजीज कार्यक्रम में गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में आदरणीय दोनों महानुभाव विद्याधर मुले जी और पंकजलाल जी की उपस्थिति सराहनीय रही। आप दोनों को दिल की गहराइयों से बधाई। बुधवार एक ही फिल्म कार्यक्रम में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी की कहानी और गीत संगीत ने दिल खुश कर दिया। इसी दिन का आपके मीत गीत कार्यक्रम भी लाजवाब पेशकश रही। दोनों कार्यक्रमों के लिए श्वेता सोनी जी और कीर्ति गोखले जी को बधाई। रविवार का फोन करें गीत सुने कार्यक्रम यादगार और लाजवाब रहा। पंकज लाल जी को बहुत बहुत बधाई। आपके मीत गीत कार्यक्रम सुनहरे पल, राग रंग, युवाणी, हेलो फ्रेंड्स और किसानवाणी कार्यक्रम सभी की प्रस्तुति अच्छी रही। इन सभी कार्यक्रम को पेश करने वाले हमारे उद्घोषक भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इन्होंने एक और चीज जोड़ देता हूँ। हमारा सुझाव है कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अनिल कपूर और श्रीदेवी अभिनीत फिल्म जुदाई के गीत और कहानी सुनाई जाए।
0: अच्छा, ज़रूर इसको भी हम शामिल कर लेते हैं अपनी सूची में। और आपको कार्यक्रम पसंद आए ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आगे भी हमें यूं ही पत्र लिखते रहिएगा, आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी।
1: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती। सुनहरे पत्र प्रोग्राम को हम नियमित रूप से सुनते हैं, अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, आपके प्रोग्राम लुभावने व दिलकश होते हैं। 30 अप्रैल 2026 का सुनहरे पत्र और इसी दिन का प्रसारित आपकी पसंद भी हमारे दिल को छू गया। पंकज लाल जी और विद्याधर मुले जी को बधाई। 4, 5 और 6 मई को प्रसारित आपके मीत गीत कार्यक्रम भी इन्हें पसंद आया है। फिल्म बाजीराव मस्तानी और कलंक की कहानी के गीत इन्हें पसंद आए और इन्होंने लिखा है कि नृत्य दिवस 29 अप्रैल का जो विशेष प्रस्तुति थी उसके लिए मनीष शर्मा जी को बधाई।
0: क्या बात है, नृत्य दिवस की प्रस्तुति आपको पसंद आई और कलंक का आपने जिक्र किया, ये पहले प्रसारित हो चुकी है, तो आप उसको याद करके उसके लिए भी अपनी मतलब अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आगे भी अपने पत्र हमें भेजते रहिएगा। ये बताइएगा कि कार्यक्रमों में आपको क्या क्या पसंद आ रहा है।
1: श्रोताओं, एक चीज मुझे बार बार लग रही है कि चिन्मय जी बार बार एक ही चीज बताते हैं कि आप कार्यक्रमों में क्या पसंद करते हैं और उसमें क्या उनको पसंद नहीं आता है आपको। तो जो आपके ईमेल आते हैं उसमें इन चीज़ों को हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको जरूर शामिल करें कि आप जो कार्यक्रम सुनते हैं उसमें आपने क्या पसंद किया है। विशेष कार्यक्रम अक्सर हमारे जो रोज होते हैं वो विशेष भी होते हैं, तो उनमें आप क्या पसंद करते हैं और जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनमें आपको क्या पसंद आया, ये अपने ईमेल के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएँ।
0: ज़रूर,
1: ये ईमेल है। सुनहरे पत्र कार्यक्रम के अतिथियों को सादर सप्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के समीक्षात्मक ईमेल पत्रों को यथासंभव शामिल कर श्रोताओं के सुझाव, शिकायत और प्रशंसाओं को कार्यक्रम में जगह दी, इसके लिए विद्याधर मुले जी और पंकज लाड जी को हार्दिक धन्यवाद। गुरुवार का आपके पसंद कार्यक्रम पसंद किया उसके लिए उन्होंने पंकज लाड जी को बधाई। साथ ही फोन करेगी सुने कार्यक्रम यादगार पेशकश गुड मॉर्निंग खंडवा की भी इन्होंने यादगार पेशकश की धन्यवाद बोला है। मंगलवार को रोकतंजनी कार्यक्रम बढ़िया लगा। बुधवार को एक ही फिल्म में बाजीराव मस्तानी की कहानी और गीत पसंद आए। इन्होंने भी लाजवाब पेशकश के लिए श्वेता सोनी को क्यों लिख दिया है इन्होंने, बल्कि कीर्ति जी ने द्वारा किया गया
0: जी श्वेता सोनी द्वारा एक अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, उसकी भी काफी तारीफ हुई है,
1: इसलिए बार बार उसके अंदर जोड़ दे रहे हैं
0: जी।
1: रविवार को फोन करेगी सुने कार्यक्रम दिल की गहराइयों को छू गया। लाजवाब और यादगार पेशकश के लिए पंकज लाड जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी कहा है कि एक सुझाव है, एक ही फिल्म कार्यक्रम में अरुण गोविल और जरीना वहाव अभिनीत अच्छा। सावन को आने दो फिल्म की कहानी और गीत सुनवाए। यह है हमारे श्रोता ग्राम जामली कला खंडवा से माणक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, ग्राम चेगा देवी जिला खंडवा से अशोक वाघे और वंदना वाघे।
0: क्या बात है, राठौर एवं वाघे दंपति और परिवार को हमारी ओर से इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु जेठ के महीने में सावन को आने, तो ये तो मतलब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।

0: गर्मी की तपती गर्मी में सावन की बहुत जरूरत होने लगती है। बहरहाल इस पत्र के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको कार्यक्रम की प्रस्तुतियां पसंद आई ये जानकर हमें अच्छा लगा। आगे भी पत्र लिखिएगा, जो नहीं पसंद आया वो जरूर बताइएगा, और समीक्षा आलोचना सबका स्वागत है।
1: ये ईमेल हमें मिला है दादाजी धुनी वाले मार्ग कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, हस्सू बाबा मोइन छोटू, मोहम्मद फाजिल जामा मस्जिद रोड बिकन गांव से, साफिया हरहान खोकर और अयान खोकर। निमाड़ की सुली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के अतिथि महानुभावों को हमारा प्यार भरा नमस्कार आदाब। पिछले सप्ताह गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्र ईमेल के जरिए प्राप्त सुझाव शिकायत और प्रशंसा के बड़े ही निराले अंदाज में जवाब दिए गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन का आपके पसंद कार्यक्रम श्रोताओं के दिलो दिमाग पर छा गया। रविवार का फोन करे गीत सुने कार्यक्रम बेहद यादगार लाजवाब रहा। दोनों कार्यक्रमों के लिए प्रस्तुतकर्ता पंकज लाड़ को सफल और सुंदर पेशकश के लिए बधाई। बुधवार एक ही फिल्म कार्यक्रम में फिल्म बाजीराव मस्तानी की कहानी और गीत का आनंद लिया। यादगार पेशकश के लिए श्वेता सोनी
0: को बधाई,
1: दिल से गहराइयों से बधाई। सुनहरे पल गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम आपकी पसंद, नारी जगत बाल जगत युवाणी हेलो फ्रेंड्स किसानवाणी सभी कार्यक्रम रोचक लगते हैं। सुझाव इन्होंने भी दे दिया है, ऐसा लग रहा है सब ईमेल एक साथ लिखे गए हैं। एक ही फिल्म कार्यक्रम के अंतर्गत फारूक शेख रेखा और सलमान खान अभिनीत फिल्म बीबी हो तो ऐसी के गीत और कहानी सुनवाएं का कष्ट करें। एक बार फिर से आकाशवाणी खंडवार को साधुवाद।
0: बहुत ही उम्दा और बड़ी ही अनोखी फिल्म का आपने नाम लिया बीवी हो तो ऐसी, और फारूक शेख की अदाकारी तो आहा क्या बात थी, क्या दौर था वो। ये भी हमने आपकी जो फिल्म की फरमाइश है इसको अपने सूची में नोट कर लिया है, और श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम इनको सुनवाने का प्रयत्न करेंगे। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे लोग किसान वाणी का जिक्र कर रहे हैं, है ना। खेती गृहस्थी और किसान वाणी कार्यक्रमों को नियमित सुनने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो अक्सर हमें पत्र नहीं लिखते,
1: बिल्कुल,
0: है ना। और उसके उन श्रोताओं के अगर पत्र आने लगते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो धन्यवाद आपका।
1: साथ ही इन्होंने मतलब युवाणी हेलो फ्रेंड्स वगैरह की भी जानकारी जो इन्होंने सुना है उसके बारे में लिखा है, तो मतलब शाम की सभा भी सुनते हैं,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: यह है ईमेल जय श्री राधे कृष्ण दिनांक 2 मई का 7:20 पर साप्ताहिक स्वास्थ्य भेंटवार्ता में न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर कमलेश चौधरी से आकाशवाणी खंडवा के उद्घोषक साथी विद्यामूल्य जी की वार्ता सुनी। भेंटवार्ता वार्ता का विषय रहा न्यूरोपैथी चिकित्सा पद्धति, काफी स्वास्थ्यवर्धक लगी। किस प्रकार से हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, इतनी महत्वपूर्ण वार्ता हेतु आपका हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसी दिन का सदाबहार फिल्म गीतों का नियमित कार्यक्रम सुनहरे पल सुना, प्रस्तुति सहयोग रहा उद्घोषक साथी विद्याधर मुले जी का, आपने वही चित परिचित अंदाज में कार्यक्रम की को प्रस्तुत किया। आज संगीतकार सी अर्जुन के संगीत निर्देशन में सजे हुए गीतों की महफिल से आपने अलग ही समा बांध दिया, एक से बढ़कर एक गीतों का चयन किया। सफल और शानदार प्रस्तुति हेतु आपका हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: सफल और शानदार पत्र हेतु आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं बंधुवर। बहुत अच्छा लगा ये जानकर के आपको प्रस्तुति पसंद आई, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम की आपने जो तारीफ करी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे सुनने वाले यदि जो हमारे प्रस्तोता साथी के साथ साथ विशेषज्ञ होंगे उन्हें भी आज बहुत अच्छा लगेगा।
1: एक्चुअली चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी खंडवा की भी कोशिश होती है कि वो ऐसे विषयों को शामिल करे जो सामान्य रूप से नहीं शामिल होते, मतलब जो उन्होंने बात बताई थी थोड़ी सी अलग हटके थी, इसलिए लोगों को भी पसंद आया है।
0: बिल्कुल,
1: ये ईमेल है सुदर्शन शाह पल्लवी शाह पद्मा टाकिच नेपाल नगर खंडवा से। आकाशवाणी खंडवा की उद्घोषिका बहन श्वेता सोनी जी की वार्ता सुनी, रेडियो के प्रति उनके विचार काफी पसंद आए। उनकी शानदार वार्ता हेतु श्री हागे जी को हृदय की गहराइयों से आभार और अभिनंदन। मुझे लगता है हमारे श्रोता कार्यक्रम की बात कर रहे हैं ये
0: जी।
1: इसी क्रम में प्रातः 7:30 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का नियमित कार्यक्रम सुनरे पल सुना। आज का ये कार्यक्रम बीते और अपने जमाने के मशहूर अदाकारा नरगिस पर केंद्रित रहा, एक से बढ़कर एक गीतों का शानदार चयन किया गया, प्रस्तुति काफी लाजवाब रही। सफल एवं शानदार प्रस्तुति हेतु उद्घोषक साथी श्री विद्याधर मूले जी को हार्दिक बधाई आभार धन्यवाद। 5 मई को प्रातः 7:20 पर प्रसारित विशेष वार्ता में प्रशांत डोंगरे जी से प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाए जाने वाले पर्व विश्व अस्थमा दिवस पर विशेष वार्ता सुनी। आत्मा का कारण लक्षण और उपचार अस्थमा लक्षण उपचार विशेष पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सफल एवं शानदार प्रस्तुति हेतु प्रस्तुत

0: तो साथी को हृदय से धन्यवाद। 5 तारीख को शाम में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम युवाणी में UPSC सिविल सेवा परीक्षा के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई और इसी के साथ विशेष क्रम हमारे शहर में झारखंड राज्य के स्टील नगरी के रूप में विख्यात शहर जमशेदपुर के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसी शहर में भौगोलिक ऐतिहासिक सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। सफल और शानदार प्रस्तुति हेतु प्रस्तुतकर्ता साथी दीदी को हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद।
1: पत्र लिखने के लिए आपका अभिनंदन बंधु। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने युवाणी के विशेष प्रस्तुति का जो है जिक्र किया और वो आपको पसंद आई। ऐसे कुछ प्रयास हम कर रहे हैं जो सभी वर्गों को शामिल भी करें और उनके लिए हितकारी भी हों। तो UPSC सिविल सेवा का के विषय में दी गई जानकारी भी उसी क्रम का एक हिस्सा थी। आपको ये कार्यक्रम की प्रस्तुति अच्छी लगी ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई।
0: यही मेरे प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी। 5 मई को संगीतकार नौशाद जी के ऊपर जो समर्पित प्रोग्राम था वो इन्हें पसंद आया है। आपके मीठे गीत कार्यक्रम सुनहरे पल, मेहंदी हसन की गजलें जो लाजवाब लगी। चेतना कार्यक्रम में विद्याधर मुले जी और डॉक्टर कमलेश चौधरी जी द्वारा जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई वो अच्छी लगी। अस्थमा दिवस पर डॉक्टर प्रशांत डोंगरे की वार्ता, रोग लक्षण और निदान की जानकारी दी, ये भी इन्हें पसंद आई है। बाकी इन्होंने कहा है एक ही फिल्म कहानी के अंतर्गत फिल्म तेरे मेरे सपने की कहानी सुनाई जाए। अच्छा। इसके लिए हम अनुरोध करते हैं। यह है हमारे श्रोता प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी और तनुजा जोशी।
1: धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए जोशी दंपति को, और आपके इस सुझाव को, आपके इस फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। इस श्रृंखला में ये फिल्म भी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
0: कहरवाड़ी मोहल्ला ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम नागनपुरी, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से गुड मॉर्निंग खंडवा। हमें आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। हमें 6 मई की बुधवार का कार्यक्रम आस्था के स्वर अच्छा लगा। साथ ही इस दिन का कार्यक्रम आपके मीठे गीत नारी जगत कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस पर मोना दफ्तरी जी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई और फिल्म संगीत बेहद पसंद आता है, अच्छे से लगते हैं कार्यक्रम।
1: बहुत बढ़िया, पत्र लिखने के लिए आपका धन्यवाद बंधु।
0: ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। इनका कहना है कि हमें 5 मई का मंगलवार युवाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में हमारे शहर क्रम बहुत अच्छा लगा, गीत भी इन्हें पसंद आए। साथ में किसान वाणी कार्यक्रम में जो लू से बचाव के बारे में जानकारी दी गई वो इन्हें बहुत पसंद आई है।
1: धन्यवाद आपका, आपको कार्यक्रम की प्रस्तुति पसंद आई, वाणी आपने पसंद किया और लू से बचाव की जानकारी आपको अच्छी लगी, ये जानकर मुझे लगता है दोनों प्रस्तोताओं को बहुत खुशी होगी।
0: नेपाल नगर मध्य प्रदेश से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे। खंडवा से श्यामाबाई रायकवार और उनके परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने लिखा है कि हमें आपके कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। 6 मई का नारी जगत जो कार्यक्रम था अच्छा लगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस पर मुनाद अफ्तरी की जो भेंटवार्ता थी वो पसंद आई।
1: बहुत बढ़िया, आपको कार्यक्रम विस्तृत रूप से पसंद आते हैं परंतु आपने कुछ विशेष कार्यक्रमों का जिक्र किया ये जानकर हमें खुशी हुई।
0: जिर्निया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़, सचिन पलक, अंतिम, श्रुति, शशा, चिया किट्टू, वैभव परी और उनका पूरा परिवार। इन्होंने लिखा है कि एक ही कहानी कार्यक्रम में जो फातिमा लोखंडवाला जी द्वारा प्रस्तुत की गई थी इन्हें पसंद आई है। चेतना कार्यक्रम में जो थेरेपी, जो नीरू थेरेपी लिखा, गलत लिखा है इन्होंने, उस पर जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी गई थी वो इन्हें पसंद आई है। साथ में गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम जो पसंद आया उसके बारे में लिखा है और बाजीराव मस्तानी फिल्म की स्टोरी इन्हें पसंद आई है।
1: अरे वाह क्या बात है, आपने बताया आपको कौन कौन से प्रस्तुतियां पसंद आई, ये जानकर हमें अच्छा लगा, आगे भी हमें पत्र लिखते रहिएगा।
0: भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वेदही जोशी और उनके सभी साथी। इन्होंने कहा है कि आपके मीठे गीत का हमें बहुत पसंद आता है और इसको हम रोज सुनते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया,
0: ये ज्यादा कुछ भी लिखा नहीं है।
1: हाँ, एक टू द पॉइंट डायरेक्ट आपने बताया आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद आता है जानकर हमें खुशी हुई।
0: छोटी बलिया करजत मुंबई से आमना अंसारी, दुखना फैजानी, इकबाल अंसारी और सदब अर्जु अंसारी। 30 अप्रैल को प्रसारित सुनहरे पत्र कार्यक्रम इन्हें पसंद आया। 28 और 29 अप्रैल को प्रसारित आपके मीठे गीत कार्यक्रम जो इन्हें पसंद आया। साथ ही बाजीराव मस्तानी की कहानी और गीत पसंद आए।
1: क्या बात है, आपको लगभग वो प्रस्तुतियां सभी पसंद आई जो फिल्म संगीत पर आधारित थी, ये जानकर उसके ऊपर मेहनत करने वाले साथियों को बहुत अच्छा लगेगा।
0: यह है ईमेल।

0: मैं बता श्रोता परिवार शिवकोटी ओमकारेश्वर सेन, राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, इंदौर से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी, इन्होंने कार्यक्रमों की तारीफ की है। और एक बात इन्होंने कही है कि एक श्रोता के अलग अलग पते से भेजे गए लगभग 8 ईमेल शामिल किए गए, ऐसा क्यों किया गया? बस इतना ही है, बाकी इन्होंने सभी कार्यक्रमों की तारीफ की गई है।
1: पहली चीज तो आपको कार्यक्रमों की तारीफ के लिए धन्यवाद देते हैं, पत्र लिखने के लिए धन्यवाद देते हैं। दूसरा, ये हम कैसे जान सकते हैं कि एक ही श्रोता हमें कई पतों से अपना पत्र भेज रहे हैं? ये हमारे लिए बड़ा कठिन काम है इसको पुष्ट कर पाना। बहरहाल अपने श्रोताओं से ये आग्रह करेंगे कि ऐसा ना करें सभी श्रोताओं के, ताकि पत्र शामिल किए जा सकें। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, इशारा हो रहा है समाचारों की ओर अग्रसर होने का, तो अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और
0: मनीष कुलकर्णी का नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पत्र। थोड़ी देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से ही अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। श्रमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं, तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है।

0: और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: एनसीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
4: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम

0: व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तोलाम लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
1: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है जिसने जारी अमरीका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त

0: होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग।
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुगम संगीत में आज सुनिए जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल से, जिसके बोल हैं, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुगम संगीत में इस समय आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें। लेते हैं कार्यक्रम की अगली गजल, जिसके बोल है दिन कुछ ऐसे गुजरता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

द गर्ल ऑन द ट्रेन, इस फिल्म का ये एनर्जेटिक गीत नवराज हंस और जोनीता गांधी की आवाजों में आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था कुमार ने, शुरू में पिरोया था सनी इंदर ने। एनर्जी का ये स्टॉक साथ लेकर बने रहिए दिन भर विविध भारती के साथ। अब आज के चित्रलोक कार्यक्रम से दीजिए राजुल को इजाजत।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: अंबाला शहर में थे एक जेल सुप्रिंटेंडेंट, जिनके घर 13 जून 1923 को एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर प्रेम धवन के नाम से विख्यात हुआ। प्रेम धवन के पिता जेल सुप्रिंटेंडेंट थे और कुछ ही दिनों में उनका तबादला हो जाया करता था, इसलिए प्रेम का बचपन कई शहरों में बीता और शहर शहर भटकते हुए परिवार का कारवां पहुंचा लाहौर। तब तक प्रेम धवन कॉलेज जाने की उम्र में पहुंच चुके थे। मशहूर लाहौर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। यहां उनके सहपाठी थे इंद्र कुमार गुजराल और साहिर लुधियानवी। आई के गुजराल आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने और साहिर लुधियानवी एक जाने माने गीतकार। ऐसे जागरूक साथियों का साथ मिला और प्रेम धवन का रुझान युवा राजनीति में हो गया। उन्होंने उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जुट गए। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई के लिए चेतना जगाने का काम नौजवान करते थे। प्रेम धवन पंजाब में इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के बैनर तले प्रेम धवन अपने साथियों के साथ गांव-गांव, शहर-शहर जाते, नाटक और गीत संगीत के जरिए आजादी के लिए चेतना जगाते, लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा देते और इस तरह एक दिन भारत आजाद हो गया।
1: हर जर्र

0: है तेरा कंगना।
1: जैसा कि हमने आपसे कहा, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं प्रेम धवन को। प्रेम धवन की शख्सियत के कई पहलू रहे हैं। वो गीतकार रहे, संगीतकार रहे, यहां तक कि उन्होंने कुछ फिल्मों की कोरियोग्राफी भी की है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी की कहानी। इसके लिए हमें चलना होगा साल 1923।

धवन की दिलचस्पी इप्टा के हर पहलू में थी, संगीत में, गीत में, यहां तक कि नृत्य में भी। उन्होंने पंडित रविशंकर से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। उन दिनों में वे पंजाबी में गीत गाया करते थे। यही वो दौर था जब रविशंकर के भाई मशहूर नर्तक उदय शंकर के साथ ही शांति वर्धन से प्रेम धवन ने शास्त्रीय नृत्य की तालीम ली। उन दिनों में वो डांस ट्रूप का हिस्सा हुआ करते थे। आगे चलकर प्रेम धवन मुंबई आ गए। उन दिनों के मशहूर संगीतकार खुर्शीद अनवर ने प्रेम धवन को अपना सहायक बना लिया। साल 1946 में प्रेम धवन की शुरुआत हुई बतौर गीतकार फिल्म पगडंडी के जरिए। सन 1948 में प्रेम धवन ने खेमचंद प्रकाश के लिए मशहूर फिल्म जिद्दी के गाने लिखे। आपको बता दें, जिद्दी वही फिल्म है जिसमें किशोर कुमार ने अपना पहला पार्श्व गीत गाया। हालांकि वो गाना जज्बी ने लिखा था, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, लेकिन इसी फिल्म में प्रेम धवन का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, राग छाया नट पर आधारित ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ।

0: साल ये हमारा।
1: सलील चौधरी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है प्रेम धवन ने। सन 1955 में आई फिल्म तांगे वाली और इसका ये तांगा गीत।

0: लिया
1: कोई ना,
0: एक की मैं कुफर तो लिया
1: कोई ना,
0: एक की मैं जहर को लिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ हट के भला जी बच के,
2: सन 1961 में प्रेम धवन ने फिल्म काबुलीवाला का ये नायाब गीत लिखा।

गाने भी लिखे। अब बात करते हैं प्रेम धवन और हिंदी फिल्म संगीत जगत के बेहद वरिष्ठ संगीतकार अनिल बिस्वास की जोड़ी की। सन 1951 फिल्म तराना, तलत महमूद का ये गाना।

सन 1953 में अनिल बिस्वास ने कई रागों पर आधारित एक गाना बनाया जो रागावली कहलाता है। फिल्म हमदर्द का ये गीत मन्ना डे ने गाया। इसके बोल प्रेम धवन के थे।

किंग धवन और रवि ने हिंदी फिल्म संगीत जगत के कुछ बेमिसाल गाने दिए हैं। रवि की पहली कामयाब फिल्म 10 लाख का ये गाना।

0: जग जग ले दिल जुबा।
1: फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत जो हर पिता की आंखें नम कर देता है।
2: तुझे

प्रेम धवन की शख्सियत के कई पहलुओं में से एक था उनका संगीतकार वाला पहलू। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में संगीत नहीं दिया, गिनी चुनी फिल्में हैं उनके संगीत निर्देशन में। प्रेम धवन के दोस्त और मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने जिद करके फिल्म शहीद के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी प्रेम धवन को सौंपी।

0: ये सन 1965 की बात है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रेम धवन ने शहीद भगत सिंह की मां से मुलाकात की। ये उनके लिए बहुत जज्बाती अनुभव था और उन्होंने इस यादगार मुलाकात को एक गाने में ढाल दिया और वो गाना है मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना।
1: तू न रोना के तू है

0: प्रेम धवन गीत संगीत निर्देशन वाली कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके हीरो रहे हैं तारा सिंह। इन फिल्मों के नाम हैं वीर अभिमन्यु, किसान और भगवान, मेरा देश मेरा धर्म, भारत के शहीद। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रेम धवन ने नृत्य की तालीम भी ली थी और फिल्म संसार में जब जब मौका आया उन्होंने कोरियोग्राफी की। सन 1949 में फिल्म सिंगार के लिए उन्होंने नर्तकी कुक्कू को कोरियोग्राफ किया था। फिल्म नया दौर के इस गाने का नृत्य निर्देशन प्रेम धवन का ही था।
1: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह।

शिवपुरी जिले के लिए यह महीना मिला जुला रहा। इस समय गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, इसके चलते अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। इसी बीच दो दिन पहले अचानक मौसम ने करवट बदला और तेज आंधी चली और मध्यम बारिश भी हुई। शिवपुरी कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी का स्थानांतरण भोपाल हो गया है। उनकी जगह पर नए कलेक्टर अर्पित वर्मा को बनाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर का ट्रांसफर इंदौर हो गया है। उनके स्थान पर शिवपुरी का नया पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांग शिन डोलकर भूटिया को बनाया गया है। पिछले दिनों केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिवपुरी जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान शिवपुरी जिला मुख्यालय पर 42.5 करोड़ रुपए की लागत से बने संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। श्री सिंधिया ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र में विकास हो। इसी उद्देश्य से संदीपनी स्कूल प्रारंभ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधाओं वाले विद्यालय खोले जा रहे हैं। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा, अंग्रेजों को पछाड़ने वाले और गुरिल्ला युद्ध के महारथी तात्या टोपे की याद में बीते दिनों शिवपुरी जिला मुख्यालय पर शहीद मेले का आयोजन किया गया। शिवपुरी तात्या टोपे का बलिदान स्थल है। शिवपुरी जिला सर्किल जेल में पिछले दिनों दिव्यांगता परीक्षण प्रमाण पत्र सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खिमरिया मौजूद रहे। दिव्यांगजन आयुक्त ने जेल में निरुद्ध दिव्यांग बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। डॉ. खिमरिया ने इस मौके पर बताया कि मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जल्द नई नीति बनाने का काम किया जाएगा। शिवपुरी जिले में पिछले दिनों अक्षय तृतीया पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर प्राप्त सूचना के आधार पर प्रशासन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए 2 बाल विवाह मौके पर रुकवाए। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य जारी है। जिला खाद्य अधिकारी तुलेश्वर कुर्रे ने बताया कि जिले में 45 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इन खरीदी केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से गेहूं उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में जनगणना 2027 को लेकर इस समय प्रथम चरण में मकानों की गणना और मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से 30 मई के बीच किया जा रहा है। शिवपुरी के मंगलम परिसर में स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र सीआरसी भोपाल के सहयोग से पिछले दिनों दिव्यांगजनों के अभिभावकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगलम के अध्यक्ष और पूर्व सिविल सर्जन डॉ. गोविंद सिंह ने की। कार्यक्रम में दिव्यांगजन के अभिभावकों को शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे लीगल गार्जियनशिप, निरामय हेल्थ इंश्योरेंस योजना, यूडीआईडी कार्ड और अन्य योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिले के विकासखंड खनियाधाना के ग्राम हीरापुर में पिछले दिनों जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज उपस्थित रहे। शिवपुरी जिले में पिछले दिनों 8वें पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। ये पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर 23 अप्रैल तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग तथा रोजगार विभाग द्वारा पिछले दिनों युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 7 कंपनियों द्वारा भाग लिया गया। इस दौरान 36 आकांक्षी युवाओं का चयन हुआ, जिन्हें ऑफर लेटर प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 82 हितग्राहियों को 1,14,00,000 रूपये से अधिक की राशि ऑनलाइन वितरित की गयी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शिवपुरी जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन

0: पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखते हैं,
1: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
0: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
1: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
1: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
0: जी,
1: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
1: जी, है ना? बिल्कुल।
0: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
1: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
1: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
0: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या हैं?
1: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
0: जी, एक रोचक बात और जान लेते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
1: जी,
0: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
1: जी,
0: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है। वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है?
0: जी देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियाँ और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
1: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
0: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
1: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
0: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है।
1: जी,
0: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
1: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
0: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
1: जी,
0: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
1: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए।
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक

0: कार्यक्रमों की सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियां। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
1: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नि और शुद्ध नि प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं, उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
1: आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलड़ू मैं, चल चलू मैं।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। ये कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए?
3: तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े।

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहे निवाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। पेशे कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे इस गीत से।

अभी आपने सुना कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल को फिल्म आशिकी में रानी मलिक के शब्दों को संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की। टेगोर कॉलोनी साई मंदिर के पास खंडवा से सुदामा महेश्वरी, सीता महेश्वरी, आशीष अमन, विजय महाजन, कुशवाहा, माणकचंद गुप्ता और अनिल उनके दोस्त, सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, कुंदन और रंजन शर्मा ग्रीन चौक मोरबी से, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, धर्मपुरी से शेख फई मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम, शेख मुजब्बर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा और हसनैन और खुशी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तनवी बोर्ड, कूड़ी सेक्टर 5 नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित गर्वी, हिमांश, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, सदर बाजार

से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। धांडी नांदोरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बांडे, संदीप बांडे और इनके अमूल्य भांडे। ताज रेडियो श्रोता संघ कल्याणगंज खंडवा से कौसर भी पवार, हसीना भी पवार, अलमास पालो और सबीना जहीर पवार। दादाजी कॉलोनी दुनीवाले मार्ग खंडवा से मोहम्मद हुसनैन हस्सू बाबा, मोइन छोटू, मोहम्मद फाजिल। जामा मस्जिद रोड बिकन गांव से साफिया, अरहान खोकर, अनस, शिफा खोकर और अहान खोकर। डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवरीत कौर और करमजीत। बड़ा बम चुखंडवा से ममता मरकंडे, संजय मरकंडे और बेबी किट्टू। शासी नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया। कवर कॉलोनी बड़बा से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया इब्राहिम, गांव कुंभार हेड़ा सहारनपुर से। रोहित दास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे और ऋषि शिंदे। कृष्णा घोड़के जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्टो, रोजी डिकास्टो, पर्ल डिकास्टो, फिलिप डिकास्टो। आकोट से विनायक बेड़े, मंगला बेड़े, विजय शुभम बेड़े, पवन जरिए के संजीव डाबेराव। गडई टिकरी पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार, जयाश्री, ऋषभ और दुषा देवांगन। मुल्ढाना वड़गी सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ईमानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेद। पालदा नाका इंदौर से हसीना भी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी और शापिक मंसूरी। उच्च बट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवान्या और अन्नू गोस्वामी। चांदनी चौकड़ी पटरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन। बेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेया, संकिता और अनिकेत चौहान। दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। जामनिया जिला गाजीपुर से सूरज जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर और तनुषी वाघे। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम अशब और शहनवाज अब्बासी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लिया है फिल्म सावरिया से, शान की आवाज। गीत समी

इस गीत के लिए फरमाइश की थी सिंगार तराई खंडवासी राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी यादव, कामेश यादव, भारती और राहुल यादव, तारानगर बड़वासी भारती कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, पार्थ कुशवाहा और अणवी कुशवाहा, विरामगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, सहारनपुर से एस के मौची, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली जाटव, कबीर और देवशंकर जमादार, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवनकर, सरिता गवनकर, प्रणीता, सिद्धांत गवनकर, अर्जुन गवनकर, प्रिंस एकांश गवनकर, पद्मा टाकीज नेपानगर।

ट्रस्टी सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजन जी शाह, नस्लवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, निर्वृत्ति शिरसागर, संजय कुमार चौहान, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, बसंत बोराव भोजनी, निर्वृत्ति आड़ोकार, पंचशील नगल तालुका कर्जत से इकबाल अहमद बागबान, शमीम अहमद, रफत अहमद, इमरान अहमद, रईस अहमद, अखलाक अहमद फुलवाली और अहमद मुंबईकर, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, गोकुल चौक गंगाजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्कीवाली और पलका झा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रमिला हेमा, अंतरा सिंह, सहारनपुर से सुरेश हटोरिया, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक और परी खर्चे, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश और प्रणाली देशमुख, सरबत देशमुख, सानवी देशमुख और पूरा परिवार, मलियान सरदाना, मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीबीएम जैन, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये, ताज रेडियो श्रोता संघ कल्लनगंज खंडवा से कोसर बी पवार, असीना बी पवार, अलमास बानो, सबीना जाहिर पवार, नमा नर्मदा रेडियो श्रोता परिवार शिवकुट्टी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, सपना सेन, ओम सेन और द्वारकी बाई सेन, इंदौर लिम्बोदरी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा भाई चौधरी, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्षी, सोनी मोहिनी और ऋतिक बलबीर सिंह, शाहजी नगर देवगुड़ जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बठिंडा रोड मंडी डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तनिया नारंग, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, उत्तम नगर दिल्ली से बोधगाज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, बुरहानपुर साके एल, मोहन मुदलियार, आरुष आरुषिया, शशि, राजेश कुमार, राटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे, मायरा सुरोशे, आदर्श नगर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मंडी शर्मा, सौरभ साइना और निवान शर्मा, बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूराज शाह बागवान, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आसमा आर्मना, राबिया परी, आशु जूही, सदब बागवान, छतरी रोड टोल टेघड़ा बाजार बेगूसराय से अदीबा अपसरी, इस्लाम आज़ाद, राजा फैयाज, फिरोज आलम, भाई शाह आलम और वाली आलम। कार्यक्रम के अंत में आप सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक को फिल्म गुलाम में, गीत समीर का और संगीत जतिन ललित का, फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। कासपुरा खंडवा से अब्दुल अहमद खलीफा, हबीब सलमानी, सफी सलमानी और जावेद खलीफा, शास्त्री नगर बीड़ शहर से किसन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, विशाल सबकाल, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन और मानस, कनिका पटेल, सनावत जिला खरगोन से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा कटारिया, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा, जकीरा और आयशा खत्री, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और सुदामा, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना, बिहार स्टेट डुमराव से आसमान अंसारी, आमना परवीन, वलीउल्ला अंसारी, शफीउद्दीन अंसारी, गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर गांधी, सुनिंदर बाजी, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीणा डिंगरा, अनुश्री और देवश्री डिंगरा, इंदिरा बिहार दिल्ली से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और बेबी अंसारी। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रुपेश संघाई, महेश संघाई, प्रज्ञा संघाई, संघाई प्रीतेश संघाई और पूरा संघाई परिवार, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर और जयपाल यादव, कोटवा राज नारायणपुर बाबापट्टी से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुविधा वादा जिला।

इस गीत को पसंद किया है रायगढ़ बिहार से उमाराज पवन उमा संजय उमा दीपक उमा कमल उमा शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा कुमार सपना और राकेश ताई जेल रोड राजगढ़ से निशा डोमिन उमा डोमिन जानवी डोमिन चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली यादव आशा यादव सुरेश यादव नरेंद्र यादव मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु बाजूजा सागल बालूजा सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक राया माही मलिक डोंडी लोहरा बालो से हरिशंकर डोम अनिता डोम जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी शमसुल हक राज अंसारी और फातमा राज अंसारी।

शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव ईशान, कार्तिक सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बेस, रिया रोहन, अंगद ठाकुर, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संपीत हेमेंद्र, रोशन माती पंचोलिया, माँ बिजासन रेडियो रशुता संघ, माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनिता कटारे, उज्जवल कटारे, उदय कटारे और पितांश कटारे, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदरे और आरती जोंदरे। आप सभी की पसंद पर यह था आज का आपकी पसंद कार्यक्रम। तो इसी के साथ मनीष कुलकर्णी को आज्ञा दे, नमस्कार। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, सुबह के ठीक 11 बजने वाले हैं। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम हम थोड़ी देर में अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रंग तरंग
1: श्रोताओं नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत।

रंग तरंग कार्यक्रम की शुरुआत हमने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म की इस रचना के साथ की। लता मंगेशकर का स्वर था, पंडित नरेंद्र शर्मा के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राज कौर की आवाज थी, सुरेंद्र कोहली ने धुन तैयार की थी। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये अगली रचना।

जगजीत सिंह की आवाज और उन्हीं के संगीत का जादू। आप सुन रहे थे ये गीत, इंद्रजीत हसनपुरी ने इसे लिखा था। और अब हम बढ़ेंगे आशा भोसले की आवाज की ओर।

यकीनन साथियों, रिश्ते बनने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन रिश्ते टूटने में पल भर भी नहीं लगता। अपने हर रिश्ते को सहेज कर रखिए। बहरहाल, आपको बता दें, आशा भोसले की आवाज थी, गुलजार की रचना राहुल देव बर्मन के संगीत से सजी, और एल्बम था दिल पड़ोसी है।

हम भी तो हैं तुम्हारे, कभी तो नजर मिलाओ एल्बम से। ये गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले और अदनान सामी की आवाजें थीं। अदनान सामी का ही संगीत और कलाम था रियाजुर रहमान सागर का। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

साहिर लुधियानवी की ये रचना थी, रोशन की तर्ज पर आवाजें आशा भोसले और साथियों की फिल्म थी दिल ही तो है। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। चलिए अब हम बढ़ेंगे जसपिंदर नरूला की आवाज की ओर। एल्बम है कुछ कुछ दिल में।

कुछ कुछ दिल में एल्बम से आप सुन रहे थे जसपिंदर नरूला की आवाज, और अब आप सुनेंगे श्रीकांत एल्बम से जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजें। श्लोक लाल के बोल हैं और तनिष्क बागची का म्यूजिक।

श्रीकांत एल्बम से आपने सुना जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार का गाया ये गाना। श्लोक लाल ने इसे लिखा था, तनिष्क बागची का सुरीला संगीत था और अब निदा फाजली का कलाम, जगजीत सिंह की आवाज, एल्बम गम बड़े आते हैं।

जगजीत सिंह की गई इस गजल के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। रंग

0: हमारा प्रसारण आप सुन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
2: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये कार्रवाई ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण GMADA से भूमि उपयोग परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त करने में हुई धोखाधड़ी और जनता से करोड़ों रुपए की ठगी के सिलसिले में की जा रही है। निदेशालय नितिन गोहल की तलाश कर रही है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

निगाहों की जादूगरी। आप सुन रहे थे ये गाना शबनम फिल्म से, लता मंगेशकर का स्वर था, प्रेम धवन की रचना और उषा खन्ना का संगीत। साथियों, आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन के कुछ नायाब गीत।

0: प्रेम धवन की ये रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम के। युगल स्वर थे, फिल्म थी सावन। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: चलिए अब यादों की महफिल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, जो प्रेम धवन की रचना है, सलिल चौधरी का संगीत, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर, फिल्म का नाम तांगे वाली।

दंगे वाली फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन की रचनाएं। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ें जिसमें स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों के। इस गाने में गीत और संगीत प्रेम धवन का, फिल्म का नाम शहीद।

0: प्रेम धवन की ये रचना आप सुन रहे थे, जिसका संगीत तैयार किया था संगीतकार चित्रगुप्त ने। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। जबक फिल्म का ये दो गाना भी आप सुन रहे थे। बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

बड़ा ही सुरीला ये दो गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत प्रेम धवन की रचना थी और संगीतकार थे चित्रगुप्त। चलिए अब बढ़ते हैं अगले गाने की बात। वल्लाह क्या बात है।

वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, ये नाम है फिल्म का जिसका गीत आपने अभी सुना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। प्रेम धवन के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रोशन ने। और अब आगे बढ़ते हैं एक फूल तोमाली फिल्म के इस गाने के साथ।

0: एक फूल दो माली फिल्म से आपने ये गीत सुना। आशा भोसले और सखियों के स्वर थे। प्रेम धवन की रचना थी, रवि का संगीत। अगले गाने में भी रवि का ही संगीत है, प्रेम धवन की रचना है और इस बार आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी का स्वर है। ये दो गाना आप सुनेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले ये संदेश। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: तनिया। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में तराना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रेम धवन के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार अनिल बिस्वास ने।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे हंसराज बहल के संगीत से सजा गाना मिलन फिल्म से, जिसे प्रेम धवन ने लिखा था। अगली रचना में गीत संगीत प्रेम धवन का, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पवित्र पापी।

मजबूर चला।

पवित्र पापी फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाए जा रहे हैं सुप्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन की रचनाएं। और अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, प्रेम धवन का संगीत, मन्ना डे का स्वर, फिल्म का नाम काबुलीवाला।

मन्ना डे के गायक काबुलीवाला फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, समय और जिंदगी दुनिया के दो बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माने जाते हैं। जिंदगी सिखाती है समय का सदुपयोग और समय सिखाता है जिंदगी की अहमियत। तो चलिए आज का सुरीला सफर शुरू किया जाए, और उससे पहले आपको वो इबारत, वो टेक्स्ट पढ़कर मैं फिर से एक बार आपको सुनाऊंगी, ताकि आप उस टेक्स्ट में शब्द ढूंढ के गाने ढूंढ सकें। तो साथियों, आज के लिए जो टेक्स्ट हमने पोस्ट किया है आप तक पहुंच भी गया है, मैं आपको एक बार फिर से पढ़कर सुनाती हूँ। समय कभी रुकता नहीं, हर घड़ी हर पल इसके साथ हम

जिंदगी भी कई रंगों में बदलती रहती है। बचपन की नादानियां, यौवन के सपने और वृद्धावस्था का अनुभव, ये सभी समय के अलग अलग पड़ाव हैं। बचपन में छोटी सी टॉफी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। यौवन का दौर खुशी के मायने बदल देता है। सपने बड़े हो जाते हैं, आंखों से दिल में उतरने लगती है किसी की तस्वीर। समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। बदलते रिश्तों में कुछ करीबी पीछे छूटते जाते हैं, कुछ अजनबी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। समय का दामन थामे कल आज और कल के साथ जिंदगी बदलती रहेगी। तो समय के साथ तुम भी चलो, हम भी चलें, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें। तो साथियों, ये था आज का टेक्स्ट, आप तक पहुंच भी गया है और मैं बीच में एक बार फिर इस टेक्स्ट को रिपीट करूंगी और उन शब्दों पर थोड़ा सा पॉज करूंगी ताकि आप समझ सकें कि वो शब्द कौन से हैं जो हमने चुने हैं। बहरहाल, आपने बहुत सारे मैसेजेस में भेजे हैं, वो काफ़ी हद तक हमसे मिलते जुलते हैं, है ना। वैसे हमारी एक साथी लिखती हैं कि जीवन एक बहती नदी की तरह है जो समय के किनारों से टकरा कर अपने रास्ते बदलती रहती है। ये बदलते मौसमों की तरह है जहाँ बचपन की बेफिक्र बहार, यौवन की चिलचिलाती धूप और बुढ़ापे की ठंडी शामें सब अपनी अपनी खूबसूरती लिए हुए हैं। वक्त के इस सफर में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ाते हैं, बचपन के खिलौने, पुराने घर और वो दोस्त जो अब सिर्फ यादों में बसते हैं। पर साथ ही हम बहुत कुछ नया पाते भी हैं, नए रिश्ते, नए जिम्मेदारियां और नए तजुर्बे। सच तो ये है कि ठहराव मौत की निशानी है और चलना जिंदगी का नाम, तो क्यों ना वक्त की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलें, हर मोड़ पर मिलने वाले नए रंगों को अपनाएं और अपनी जिंदगी की किताब के हर पन्ने को मुस्कुराहट की स्याही से लिखकर इसे एक हसीन दास्तान बना लें। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपने लिखी हैं। तो साथियों, विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आज आपके साथ हूं मैं, शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए भाई, आप सबके कमेंट्स के सिलसिला हम जारी रखेंगे। अब फिलहाल हंसते मुस्कुराते हम भी शुरू करें आज का सुरीला सफर। सुनिए ये गीत और हाँ, जरा बताइए तो आप समय के कितने पाबंद हैं।

खून भरी मांग फिल्म के इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के कार्यक्रम सुरीला सफर की। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई वाह शानदार गीत से आगाज, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। तो भाई जिंदगी का सफर है, हंसते मुस्कुराते कटे तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को हमने पूछा था कि आप समय के कितने पाबंद हैं, तो भाई सभी ने अपनी अपनी पाबंदियां लिखी हैं कि हम कितने पाबंद हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम तो समय के बहुत पाबंद हैं, उठना सोना खाना पीना पूजा पाठ सब समय के अनुसार होता है। सच बात है भाई, समय के साथ चलना भी पड़ता है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि इस चिलचिलाती धूप में भी सुरीले गानों की बौछार विविध भारती से होगी जो हम श्रोताओं को ठंडक का सुकून प्रदान करेगी। विविध भारती सचमुच मनभावन चैनल है जो दिल को तरोताज़ा कर देती है। एक साथ ही लिखते हैं कि समय समय की बात है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन की बगियार नए गुजरते बचपन जवानी बुढ़ापा के साथ जिंदगी, रिश्तों के हंसती बिखरती रिश्तों, जिंदगी बदलते रिश्तों के साथ जीना अवश्य सिखा देती है। और आगे लिखा है तो घबराएं नहीं, जिंदगी सुख दुख दोनों में बदलते रिश्तों की बुनियाद भी रखती है। तो आगे दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि समय के पाबंद पूरी तरह से तो नहीं है हम, पर हैं जहाँ समय पर पहुँचना होता है और जो काम जिस समय करना होता है जरूर कोशिश करते हैं। अब देखो ना, एक बजे इस प्रोग्राम में पहुँच गए ना। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि हम समय के पाबंद हैं क्योंकि समय की पाबंदी जीवन बनवाए आनंदी। क्या बात है। एक कमेंट में लिखते हैं कि समय दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है। गया हुआ धन, स्वास्थ्य और अवसर फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल सही बात लिखा है आपने। और आगे लिखते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि हम अपने जीवन में खुशहाली और तरक्की चाहते हैं तो हमें आलस से त्याग कर समय का पाबंद बनना होगा। याद रखें, समय ही धन है और इसे सही जगह निवेश करना ही बुद्धिमान है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि समय हमारे अनुसार नहीं, हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है।

आप सभी ने शब्द चुनकर गाने भी भेजे हैं हमें, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि समय के साथ हम चलने के लिए तैयार हैं, देखते हैं कौन से शब्द पर कौन सा गाना सुनने को मिलता है। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि सपने, जीवन, कल बदलना, जीवन के मतलब बहुत सारे गाने और शब्द इन्होंने हमें लिख भेजे हैं। वहीं एक साथी लिख रहे हैं कि समय जीवन की वो धारा और है जो अविरल और निरंतर बहती है, इंसान की जिंदगी, ये तो शायद मैं पढ़ चुकी हूँ, और आगे और इन्होंने लिखा है कि इंसान की जिंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक चक्र की तरह चलती रहती है, जिसमें कई रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, सुख दुख का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। तो ऐसे में हमें हिम्मत और विश्वास से अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तुम भी चलो, हम भी चलें। भाई आपने एक बात बिल्कुल सही लिखी है, वैसे तो सारी बातें ठीक लिखी हैं, अच्छी लिखी हैं, सही लिखी हैं, कि जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। जी हाँ, तो वैसे ही परिवर्तन हुआ है हमारे कार्यक्रम में, नया कार्यक्रम शुरू हुआ है सुरीला सफर। ये छोटा सा परिवर्तन है और आप धीरे धीरे इसमें ढल जाएंगे। शुरुआत में हर सफर, हर एक जो परिवर्तन होता है, थोड़ा कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमें उसकी आदत हो जाती है तो वही सफर, वही जो परिवर्तन रहता है, वो बहुत आसान हो जाता है। बहरहाल हम भी समय के साथ आगे बढ़ेंगे, और वैसे तो समय अपने हिसाब से ही चलता है, लेकिन हम उससे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा तो धीरे चलो। हमें अभी इस कार्यक्रम में कुछ और गीतों का आनंद लेना है, कुछ और आपके मैसेजेस पढ़ने हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ज़रा बताइए तो इस फिल्म का नाम

आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया करुण फिल्म का ये गाना था। भाई हमने समय से एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप थोड़ा सा तो धीरे चलिए, क्योंकि अभी बहुत समय हमें लेना है, हमें अपने साथियों के कमेंट्स लेने हैं और गाने सुनवाने हैं। बहरहाल हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं समय का पाबंद हूँ या नहीं, पर समय पर रहना मेरा सगुल है। मैं ना किसी को इंतजार करवाता हूँ और ना ही कभी कहीं देर से पहुँचता हूँ। इंतजार कर सकता हूँ और बड़े ही धैर्य के साथ, पर कभी किसी से नाराज नहीं होता। अगर कोई इंतजार करवाता है तो क्योंकि सोचता हूँ कि उसकी कोई मजबूरी होगी। मैं कई बार वहाँ का जिलाधिकारी से मिलने गया था जो मेरे ही विद्यालय से था और बहुत जूनियर था, पर उसने 4 घंटे इंतजार करवाया, पर मैंने धैर्य नहीं खोया और मिलकर ही आया। जी बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी कोई हमें इंतज़ार करवाता है तो कभी कभी हम एकदम से चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये धैर्य बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं बचपन से लेकर आज तक कभी भी समय का पाबंद नहीं रहा। अपने दोस्तों अपने जान पहचान वालों में मैं लेट लतीफ के नाम से मशहूर हूँ। तो वैसे बताइएगा कि आप स्कूल भी लेट जाते थे? वैसे आगे इन्होंने लिखा है कि मैं स्टेशन पर तब पहुंचता हूं जब ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी होती है। अरे वाह भाई, तो फिर ट्रेन में चढ़ते कैसे हैं आप? आगे लिखते हैं कि लोगों की शादियों में लेट पहुंचता हूं, हद तो तब हुई जब मैं अपनी ही शादी में भी 1 घंटा लेट पहुंचा। मेरी बीवी तो कहती है कि थोड़ा और देर करते तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करा देते। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि समय के साथ न चलने वाले जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। हम तो समय के साथ चलने में मानते हैं। बिल्कुल समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है और साथियों कुछ परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो वहीं एक साथी ने क्या लिखा है कि मेरी आदत ये है कि हमें किसी भी प्रोग्राम, मीटिंग, शादी या किसी से मिलना हो काम काज पर, समय से पहले जाने की आदत है। मेरा मानना है कि 12 बजे का समय दिया गया हो तो 11:45 पे हमें वहां होना चाहिए। भाई ये भी बात अच्छी है कि हम बिफोर टाइम हम वहां पर पहुंच जाएं। एक और कमेंट है कि वैसे तो मैं समय का पाबंद हूँ, पर कभी कभी मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई बारिश शुरू हो गई है और आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक और कमेंट आया है कि लवली सॉन्ग्स, व्हाट इज द थीम, वी डोंट नो, आवर फोकस ऑन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो थैंक यू सो मच। एक साथी ने लिखा है समय के

रात इतने पाबंद थे कि 40 वर्षों तक सुबह 4 बजे उठना और गाड़ियों की अनलोडिंग लोडिंग कराकर नो एंट्री टाइम तक शहर से बाहर भेज देना रोज का काम था। ताजुब करेंगे कि 4-5 गाड़ियां तो रोज रहती थीं, इससे ज्यादा भी। और मौसम चाहे बरसात हो या कड़कड़ाती सर्दी, रोज करते कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन समय ने ऐसे करवट ली कि फालिज मार गया और फिर सब छोड़कर स्वास्थ्य के लिए 5 सालों से घर पड़े विविध भारती सुनते समय गुजार रहे हैं। तो आप अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें। एक साथ ही लिखते हैं कि जिंदगी का फलसफा यही सिखाता है कि हर खुशी के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है और हर दर्द के बाद सुकून का एक नया सवेरा आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार टेक्स्ट एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाऊंगी, तो एक बार फिर मैं आपके साथ टेक्स्ट शेयर कर रही हूँ। समय कभी रुकता नहीं, हर घड़ी इसके साथ हमारी जिंदगी भी कई रंगों में बदलती है। बचपन की नादानियाँ, यौवन के सपने और वृद्धावस्था का अनुभव, ये सभी समय के अलग अलग पड़ाव हैं। बचपन में छोटी सी टॉफी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। यौवन का दौर खुशी के मायने बदल देता है। सपने बड़े हो जाते हैं, आंखों से दिल में उतरने लगती है किसी की तस्वीर। समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। बदलते रिश्तों में कुछ करीबी पीछे छूट जाते हैं, कुछ अजनबी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। समय का दामन थामे कल, आज और कल के साथ जिंदगी बदलती रहेगी। तो समय के साथ तुम भी चलो, हम भी चलें, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें। तो साथियों, बात करें बचपन के दौर की, तो वो समय, वो नादानियाँ, जो एक बार गुजर जाता है ना, फिर वो नहीं आता। अपने बचपन की कुछ नादानियाँ, शैतानियाँ, शरारतें याद हो तो साझा कीजिए। कुछ पुराने दिनों को तरोताज़ा कीजिए आज हमारे साथ। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जो टेक्स्ट है उसमें आखिरी में जो संदेश दिया है, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें, असली में यही जीने का तरीका है। तो भाई, बिल्कुल यही तरीका है कि हंसते मुस्कुराते जीवन जिया जाए। तो बहरहाल, हम बचपन के दौर में चल रहे हैं, इस वक्त बातें उसी की कर रहे हैं। तो जरा अपने बचपन की शैतानियों को हमारे साथ साझा कीजिए और सुनिए ये गाना। जरा फिल्म का नाम तो बताइए।

गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजों में बचपन से जुड़ा ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और हमने पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि गानों के बारे में अगर आपसे कोई जानकारी मांगी जाए तो आप ना दें। बहरहाल आप सभी ने लिखा कि सुजाता फिल्म का ये सुंदर मधुर गीत बहुत अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा ये गाना सुनकर और आप सबके कमेंट्स देखकर। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मैं मोबाइल महाराज को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा कि मैं कई बार समय से लेट हो जाता हूं अनेकों जिम्मेदारियों के कारण। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि मैं भी समय की बहुत पाबंद हूं, स्कूल और हो या किसी भी कार्यक्रम में हो या शादी ब्याह जन्मदिन सब में समय से पहुँच जाती हूँ। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं समय हूँ, निरंतर चलता रहता हूँ, जैसे अपना जीवन को समय के साथ ढाल देना चाहिए, नदी की तरह बहना चाहिए। शुरुआत छोटा झरना होता है, चलते चलते वन पहाड़ों जंगल कठिन रास्तों से गुजरती मैदानों को चीरती हुई कहीं गांव कस्बों और शहर के सफर निरंतर करती समुंदर की और मिलन में अपना अस्तित्व मिटा देती है। समय के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो भाई हमारी एक सखी लिखती हैं कि महिलाओं पर लोग हंसते हैं कि वो कभी समय पर नहीं पहुंचेंगी क्योंकि वो तैयार होने में बहुत समय लगाती हैं। बहरहाल आप बताइएगा कि आप कितना समय लगाती हैं तैयार होने में। तो एक साथी ने भेजा है कि आज के गीत हो सकते हैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, समय तू धीरे धीरे चल, सपने सुहाने लड़कपन के, आंखों से जो उतरी है दिल में, अजनबी कौन हो तुम, हम भी चलें तुम भी चलो। तो भाई देखते हैं कौन कौन से गाने हमारे आपके मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात तो कभी बिना सामान चले, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जिंदगी कैसी है पहेली इसी दौरान, आंखों से उतरी है दिल में और तस्वीर है एक अनजाने की, अजनबी तुम जाने पहचाने लगते हो तब उनसे कहिए कि तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। एक साथी ने लिखा है कि यौवन के सपने अक्सर भविष्य को लेकर आशावादी होते हैं, इसमें करियर प्यार और एक बेहतर जीवन की कामना होती है। यौवन के सपने सिर्फ करियर तक सीमित नहीं होते बल्कि इसमें भावनात्मक और संबंधों से जुड़े सपने भी शामिल होते हैं। युवा अवस्था में इंसान नए विचारों और कल्पनाओं से भरा होता है जो उनके सपनों को रंगीन बनाते हैं। इसे अक्सर जीवन का सबसे प्रभावशाली और यादगार समय माना जाता है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि देखिए ना, एक छोटा बच्चा होता है वो कब बड़ा हो जाता है, फिर स्कूल जाता है, नौकरी करता है, अपना घर बसाता है, इस दौरान उसको कितने पड़ावों से गुजरता है और ये जो युवावस्था होती है वहां पर उसकी सोच भी बदलती है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। एक कमेंट में आया है कि जिंदगी में बदलाव ही एकमात्र निरंतर सत्य है, इसे रोकने के बजाय इसके साथ ढलना ही जीने का असली सलीका है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, ये जो समय होता है ना, ये हमें अपने और परायों की जो पहचान है वो करा देता है। हमारे जीवन के कठिन समय में, उस समय जो हमारे आस पास लोग रहते हैं, अपने पराये अच्छे बुरे की पहचान हमें हो जाती है। देखने में आता है कि अक्सर जिंदगी के जो कठिन दौर होते हैं, कठिन समय होता है, उसमें अपने भी साथ छोड़ देते हैं लेकिन कोई अजनबी साथ दे जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं एक यौवन के सपनों की, एक युवावस्था के बचपन के बाद

युवावस्था में आकर जो सपने आंखों में बुने जाते हैं अपने जीवन के सुनहरे काल के लिए, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। क्या आपने अपने इस दौर में कौन से सपने बुने थे, जरा बताइए तो। और बहरहाल सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें संगीत हेमंत कुमार का है।

बहरहाल लड़कपन के सपने आंखों में लिए, ये बड़ा ही प्यारा सा गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी 20 साल बाद। तो हमारी एक सखी लिखती हैं कि अगर आज टाइम मशीन होती तो सबके सब अपने बचपन में वापस जाना चाहते। भाई ये बात तो बिल्कुल आप 100% सही कह रही हैं, हमारा भी ऐसा ही मन करता है। और बताइएगा आप में से किस किस का ऐसा मन करता है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बचपन की प्यारी सी मासूमियत नादानी और शैतानियों को मधुर बनवा देती है, गुनाहों को माफ करवा देती है। और एक सखी लिख रही हैं कि देखो आपकी बातों ने हमें अपने साथी की फिर इतनी प्यारी सी बात याद दिला दी जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो समय से पहले ही चलते थे, हमेशा कहते थे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, कभी ट्रैफिक में फंस गए तो हम थोड़े लेट। लतीफ भाई आपने ये बात कह के हमें भी अपनी बात याद दिला दी कि मेरे भी पापा ऐसे ही कहा करते थे कि जहाँ जाना है वहाँ समय से पहले पहुँचना चाहिए। तो भाई दूसरे साथी ने लिखा है कि भाई क्या बात है, आज लॉटरी लग गई, अभी तक 3 गाने बजे मेरी लिस्ट में से। वाह क्या बात है भाई, हमारी आप सबकी पसंद काफ़ी हद तक मिल रही है। तो दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि हमारे पापा जी ने हम बच्चों को समय का मूल्य अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि समय सभी कीमती है, हमारा भी और दूसरों का भी, तो न कभी अपना समय नष्ट करो न दूसरे का। समय के साथ चल सको तो बहुत अच्छा, पर समय से पीछे होना जीवन में कभी कभी दुखदायी हो सकता है, विशेषकर परीक्षा के लिए। जब किसी को आपने समय दिया हो या किसी ने आपको दिया हो तब समय को प्रधानता देनी चाहिए। बहुत सटीक बात है।

कुछ बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं भाई। हमारे साथियों की लिखा है कि बचपन में हम आम के बागीचे में आम मारते थे और बगीचे के मालिक से पकड़े जाने पे कहते थे कि अब आम नहीं मारेंगे, लेकिन फिर वही गलती दोहराते थे और बगीचे में जाकर आम मारते थे। ऐसा कौन करता था ज़रा बताइएगा। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि अपना बचपन भी बड़ा कमाल का हुआ करता था, न कल की फिक्र न आज का ठिकाना हुआ करता था। वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई है, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई है। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे, तब दिल नहीं सिर्फ खिलौने टूटा करते थे, अब तो एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता और बचपन में जी भर कर रोया करते थे। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है, बचपन की बात क्या कहूँ, सचमुच बचपन तो बचपन ही होता है। आज तक वो खुशियाँ नहीं मिली जो स्कूल के दोस्तों के साथ मिली थी। जैसे ही पीरियड खाली रहता है, बस स्कूल के पीछे इमली का पेड़ था, पैंट की जेब में इमली भरकर लाया करते थे और पूरी क्लास में अपने अपने टेबल के नीचे कचरा करते थे। लेकिन जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन खूब पिटाई होती और इमली भी जब्त हो जाती है। मेरे ख्याल से ऐसी शरारतें हम सभी किया करते थे। तो वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बचपन की बहुत सारी चीज़ हम मिस करते हैं। जब बारिश हो जाती थी और हम स्कूल से लौटते थे तो सड़कों पर पानी भरा रहता था और हम उसमें पानी में छपक छैया करते हुए एक दूसरे से को उस पानी से भिगोते थे। आज भी सड़कों पर पानी देखती हूँ तो मुझे डम डम डिगा डिगा वो राज कपूर साहब वाला स्टाइल करने को मन करता है, पर जब अगल बगल लोगों को देखती हूँ तो बस ये रह जाता है। ओहो, एक कमेंट में लिखते हैं कि वक्त हमें सिखाता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। पुराने दोस्त पीछे छूट सकते हैं, नए लोग जुड़ते हैं और परिवार की अहमियत सबसे ऊपर आ जाती है। हम रिश्तों में शब्दों से ज्यादा उपस्थिति और भरोसे को तलाशने लगते हैं। बचपन में जो छोटी सी बात दुनिया का अंत लगती थी, उम्र के साथ समझ आता है कि वो सिर्फ एक अनुभव था। समय हमें प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया को चुनने की समझ देता है। बिल्कुल साथियों, समय के साथ साथ बहुत बदलाव होते हैं, हमारे सपने बड़े हो जाते हैं और फिर आंखों से दिल में किसी की तस्वीर, कोई एक नया चेहरा हमारी जिंदगी में शामिल होने लगता है।

ओपी नैयर का यादगार संगीत आप सुन रहे थे, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। बिल्कुल साथियों, यही वो दौर होता है जब आंखों में एक तस्वीर उभरती है और कोई अजनबी जिंदगी में शामिल होता है। वैसे जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं तो कोई अजनबी ही होता है जो हाथ थामता है और यही कहता है कि घबराओ मत, मैं हूं ना। ढेर सारे हमारे कमेंट्स हैं हमारे पास और अपने अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं, यादें साझा की हैं साथियों ने। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बाहर कहीं नहीं पर स्कूल में आम के पेड़ पर आम के टिकोले के लिए पत्थर मारा करते थे, तब पूरी स्कूल को सजा मिलती थी, कान पकड़कर क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था। तो साथी दूसरे लिखते हैं कि समय जिस तरह बदलाव होता है उसी तरह रिश्तों में भी बदलाव आ जाता है, वो बचपन का समय क्या खूब होता है जो आज तक नहीं भूल सकते। अच्छा, एक साथी लिख रहे हैं कि देखिए हमारी और आपकी पसंद मिल गई आंखों से जो उतरी है दिल में गाने को लेकर, और आगे लिखा है कि आप पहले आप जब कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी तो बैकग्राउंड में वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ उसका म्यूजिक बजता था। तो भाई देखिए, जब बदलाव हो रहे हैं तो हमने भी सोचा क्यों ना इस बदलाव में हम भी शामिल हो जाएं, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा बदलाव कर लिया है। एक साथी लिखते हैं कि देखो आपकी बातों ने हमें इतनी कुछ बातें हमें याद दिला दी, ऐसा इन्होंने अगर कुछ हमें लिखकर भेजा है, वो मुझे क्लियर नहीं इसमें दिख रहा है, कुछ इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। आगे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के सुरीला सफ़र, रोमांचक सफ़र में इबारत के रहस्यों के बीच कई फिल्मों के गाने हमें सुनने को मिल रहे हैं। और एक साथी ने लिखा है कभी कभी एक अजनबी इंसान आपको उतना समझ लेता है जितना आपके करीबी भी नहीं समझ पाते। कुछ लोग किस्मत बनकर जीवन में आते हैं और धीरे धीरे रूह यानी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। ये अजनबी जो शुरुआत में अजनबी होते हैं समय के साथ यादों और भावनाओं का अहम हिस्सा बन जाते हैं, और ये जीवन की अनिश्चितता और मानवीय रिश्तों की सुंदरता को दर्शाता है कि अनजान लोग भी जीवन को कैसे खुशनुमा और खास बना देते हैं। बिल्कुल, और जब अजनबी का साथ हो तो थोड़ी सी चूहल भी हो जाती है एक दूसरे को जानने के लिए। बहरहाल ये गाना सुनिए और जरा फिल्म का नाम बताइए।

अजनबी से बनके करो ना इशारा, हमने पूछा था ये गाना किस फिल्म का है। तो भाई आप सबने लिखा कि ये फिल्म है एक राज, किशोरदा की आवाज का जादू है इसमें और साथ लता मंगेशकर का। एक साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के साथ एक घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई दूसरे साथी बड़े खुश हैं, वो लिख रहे हैं कि आज मेरी लिस्ट से अभी तक 3 गाने बच चुके हैं, आभारी हूँ आपका और विविध भारती का। भाई हम आभारी हैं आपके इतने सारे कमेंट्स के लिए और इतने शिद्दत से हमारे साथ जुड़ने के लिए, शब्दों को चुनने के लिए, गानों को चुनने के लिए। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि समय के साथ रिश्तों में भी बदलाव आ गया है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थीं जहां सब रिश्ते हुआ करते थे, पर अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जहां रिश्ते 4 लोगों में सिमट कर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बहरहाल कहीं कहीं आज भी जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं वो रह रही हैं और बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत याद आता है अपना बचपन, पीछे मुड़ के देखती हूँ तो माँ पापा दीदी छोटा भाई और भरा पूरा परिवार था, लेकिन सबने साथ छोड़ दिया, अब हम अकेले रह गए हैं, लेकिन सच तो सच को स्वीकार करना पड़ता है। एक साथी ने लिखा है कि बहुत ही खूबसूरत और गहन चिंतन है समय के इस अनमोल प्रवाह पर, आपकी ये पंक्तियाँ बचपन की मासूम खुशियों से लेकर यौवन के सपनों और वृद्धावस्था के अनुभवों तक जीवन के हर पड़ाव को इतनी कोमलता से बुनती हैं कि मन झूम उठता है। समय का वो दामन जो रिश्तों को नए रंग देता है, कभी छोड़ कर जाता है, कभी नए मेहमान लाता है, सचमुच जीवन का सार है। देखा जाए तो सचमुच जीवन के कितने रंग हैं, जिंदगी के इतने सारे रंग हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी दरअसल है क्या, और जब तक समझ आती है तब तक जीवन गुजर चुका होता है। बहरहाल जिंदगी का ये रंग क्या है, जरा इस गाने में सुनिए। बताइएगा हमसे आपकी पसंद कितनी मिलती है इस गाने में।

आदमी और इंसान फिल्म से ये गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस गाने को पसंद किया। एक साथी ने लिखा है कि वाओ, मेरा तीसरा गाना भी आपसे, आपकी चॉइस से मिल गया। देखिए ना, हम सब की चॉइस कितनी मिलती है। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई, मेरी लिस्ट का ये चौथा गाना फिल्म एक राज का, जो आपने अभी इससे पहले सुना था, वो जो किशोर कुमार जी का था, वो भी मिल गया। तो दूसरे साथी ने लिखा है, कुछ बातें याद की हैं कि हमारे समय में माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग शादी ब्याह कराते थे और जीवन साथी मिलना तो दूर, फोन पर भी बात नहीं कर सकते थे। और आज तो लड़का लड़की की रजामंदी बहुत ज़रूरी है, ये जीवन का बहुत बड़ा बदलाव है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। बात तो बिल्कुल सही है। एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती के सभी साथियों को राधे राधे, और मेरे पापा बोलते थे कि हमेशा समय पर जहां जाना, समय पर जाना, समय कितनी जल्दी निकल जाता है। पापा ने भी जाने की बहुत जल्दी की, समय से पहले ही चले गए, बस उनकी यादें रह गईं। ये बात आपने शायद मेरे मन की जान ली। जो बहरहाल, आपकी ये बात मुझसे बहुत मिलती जुलती है। एक साथी ने लिखा है कि बचपन, यौवन और अंतिम पड़ाव के अनुभव मनुष्य को अपने जीवन के चार पड़ाव पार करने होते हैं। सभी का अनुभव जीवन को खूबसूरत बनाता है अगर हम सकारात्मक सोच के साथ सभी को साथ लेकर चलें, गलतियों से सबक लें। आज खूबसूरत गजल, ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, मेरा एक सपना है, मेरा नाम करेगा रोशन, तमाम गाने इन्होंने लिख भेजे हैं। तो भाई बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ें, तो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी।

कुमार एक साथ ही लिखते हैं कि तुम भी चलो हम भी चलें, सुरीला सफर अब अंतिम पड़ाव पर रुकना नहीं है, हमें तभी आगे बढ़ाना है प्रोग्राम को। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बहुत रोचक और एक शानदार लाजवाब कार्यक्रम, कब एक घंटा पार हुआ, वक्त का पता ही नहीं चला। तो इसी के साथ हम भी चलते हैं और मिलेंगे आपसे कुछ थोड़ी देर के बाद अगले कार्यक्रम में। बहरहाल आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम को और सुरीला और सुहाना बनाने के लिए। यूं ही जुड़े रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों। लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देश के वीर सैनिकों के पराक्रम को सलाम किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक साल पहले हमारी सेनाओं ने अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया था। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को हराने और उसे पनपाने वाले पूरे तंत्र को नेस्तनाबूद करने के संकल्प पर हम आज भी उतने ही अडिग हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्कृति विभाग की इस यात्रा में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। ये ट्रेन भोपाल और उज्जैन से तीर्थयात्रियों को लेकर सोमनाथ के लिए रवाना हो गई। 11 मई को ये दल सोमनाथ महादेव के दर्शन कर वापस लौटेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में भी धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और सरकार विभिन्न तीर्थों की यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
1: आज मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले पहले मध्यप्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। जब 13-13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही

0: आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, यह उसका उदाहरण है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल नगर निगम के नए अत्याधुनिक मुख्यालय अटल भवन का लोकार्पण किया। तुलसीनगर सेकंड स्टॉप पर बना यह 8 मंजिला भवन 43 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। अब तक शहर के करीब 10 अलग अलग जगहों पर चल रहे नगर निगम के दफ्तर अब एक ही छत के नीचे आ गए हैं, जिससे आम लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने नीमच जिले में नगर निगम के 10.5 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में विवाह जन जन्मांतर का पवित्र बंधन है और सामूहिक विवाह सामाजिक सद्भाव, सहयोग और सामूहिक चेतना का एक सशक्त प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार सुबह 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 7 दिनों से आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, रीवा, सतना समेत 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय हो रहने से ये मौसम अगले 2 दिन तक बना रहेगा। हालांकि 9 और 10 मई को पूरे प्रदेश में कड़ी गर्मी पड़ने के आसार है और कई शहरों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर समेत 44 जिलों में गर्मी का असर भी रहेगा। 10 मई से एक नया मौसम सिस्टम फिर एक्टिव हो रहा है, जिसका असर 2 दिन बाद दिख सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत विशेष ट्रेन में जाने के लिए 50 चयनित यात्रियों को उज्जैन रेलवे स्टेशन रवाना किया गया। जबलपुर नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के हर वार्ड में नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर और जुन्नारदेव स्थित विद्युत न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और नर्मदापुरम जिले में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिला क्षय केंद्र में 10 टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति

0: सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
1: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण, भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम, भव सव्य साचिन।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्रीय शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बैनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को

गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ @ YR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। गुजरे जमाने के कुछ दिलकश, कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमों के साथ हाजिर हैं हम। स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका अपना सदाबहार नगमे।

नमस्ते जी फिल्म का ये गाना बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। लता मंगेशकर की आवाज, अनजान के बोल, जीएस कोहली का संगीत। अगला गाना क्या कहता है दिल की बात, आइए सुने साथ साथ।

0: दिल की बातें हैं दिल ही जाने। बहरहाल गेस्ट हाउस फिल्म का गाना सुन रहे थे आप लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन के बोलों को सुरों में ढाला था चित्रगुप्त ने। बढ़ेंगे आगे एन दत्ता के संगीत से सजे गाने की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मेरे दिल पे हाय इतना तुम्हें इख्तियार क्यों है। बड़ी खूबसूरत सी बात ब्लैक कैट फिल्म के इस गाने में आपने सुनी। जानिसार अख्तर के बोल थे, एन दत्ता का सुरीला संगीत, लता मंगेशकर की कर्णप्रिय आवाज।
1: हर तरफ अब

मदन मोहन के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना। कैफी आजमी के बोल थे, मन्ना डे का स्वर, फिल्म का नाम हिंदुस्तान की कसम। अब बढ़ते हैं शंकर जयकिशन के संगीत की ओर। शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज़। क्या कहता है ये गीत, आइए सुनें।

लता मंगेशकर के स्वर में पतिता फिल्म का ये गाना आपने सुना। अगले गाने में भी स्वर लता मंगेशकर का है, राजा मेहंदी अली के खां के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज। आइए सुने दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का ये गाना।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद इस मंच के साथ आपकी और हमारी भेंट हुई है।
1: बिल्कुल। और इस भेंट में ये देख रही हूँ कि निजात, इतनी भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए आपके चेहरे पर जो सुकून दिखाई दे रहा है ना स्टूडियो में एसी की ठंडक में, वो अलग ही बता रहा है कि आप भीषण गर्मी से हाल बेहाल है सब लोग, हम सब।
2: हाँ, सभी का इन दिनों तो कह सकते कि देश के हर हिस्से में जिस तरह से गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है तो हर कोई त्रस्त है और वो यही देखता रहता है कि कहीं कोई छांव मिल जाए।
1: और ऐसे तो छांव सड़क पे, खुली सड़क पे तो छांव ढूंढते रहते हैं, तो एक जरा सी छाया मिलती है, पेड़ जब पत्तियां हिलती हैं तो एक जरा सी हवा चलती है, ठंडी हवा जिसे हम कह सकते हैं। हाँ। लेकिन गानों की छांव ऐसे सुकून दे है कि ठंडी हवा के जब गाने सुनते हैं तो सचमुच हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन ठंडी हवा की छांव में चलने से पहले जरा आज के विषय पर हम गौर फरमा लें।
2: हाँ, तो जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं और अभी तक उन्होंने फेसबुक की पोस्ट नहीं देखी है, जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी पता लग जाएगी किन विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आपने जब ठंडी हवा की बात करी ना, तो भाई उसके लिए पर्यावरण का दुरुस्त होना बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
2: ताकि पर्यावरण अच्छा रहे, पेड़ पौधों से भरा हुआ वातावरण हो, तो एक ऐसी महिला जिसने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया उनकी आज हम बात करेंगे। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये हैं तुलसी गौड़ा, इनकी आज बात होगी।
1: पर्यावरणविद हैं, इनके बारे में बताएंगे। और गर्मी से निजात पाने के लिए कपड़ों का ध्यान रख रखाव भी जरूरी है कि हम कौन सी पोशाक पहनते हैं गर्मी के मौसम में। कई बार बहुत सिंथेटिक कपड़ा या सिल्क पहन के धूप में, तपती दोपहरिया में, या बहुत डार्क कलर पहन के निकल जाते हैं तो आपको गर्मी का एहसास और ज्यादा होता है, बल्कि पसीना ज्यादा आता है। गर्मी में कॉटन कपड़े पहन के निकलें तो ज्यादा आपको ठंडक महसूस होगी।
2: लेकिन और आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कुछ कपड़े जिन्हें कई बार हम थोड़े ही दिन पहना, उन्हें बस यूज नहीं हो रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको फिर से अगर पहनने का मन करे तो उनको एक नया रूप देकर किस तरह से पहना जा सकता है। कई कपड़े बहुत बार पहनने के बाद भी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, कपड़ा अभी तक चल रहा है, तो अब इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जो तरीके हैं कि पुराने कपड़े को किस तरह से एक नया लुक देना है, इसके बारे में बात।
1: बिल्कुल, तो ये ज्ञान की बातें हो जाएंगी। और गर्मी के मौसम में सड़क पर चलते हैं तो कैसा लगता है, खुली सड़क पर जब निचाट धूप होती है तो बहुत तकलीफ होती है ना।
2: कई बार ऐसा होता है ना कि लगा हुआ है रेड सिग्नल, लेकिन क्योंकि धूप में खड़े नहीं रहना तो सिग्नल तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कई बार उस गर्मी से बचाव में भी हो जाता है। लेकिन सड़क पर चलते हुए खुद के लिए भी और जो अन्य लोग चल रहे हैं, चाहे वो वाहन में है या पैदल है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसलिए कुछ बातें सड़क सुरक्षा की।
1: एक और जरूरी बात है, वो कौन सी है बताइए जरा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों की जब बातें इतनी सारी चल ही रही हैं, तो एक बहुत विशेष उपकरण है रेफ्रिजरेटर, जो सबके घर में है, और कई बार उसकी अगर साफ सफाई ना की जाए या कुछ सामान ऐसे रख दिया जाए जिनमें से गंध अलग तरह की आने लगती है, तो जो अन्य खाने की सामग्री रखी है उसको भी वो प्रभावित कर देता है। तो उस गंध से कैसे बचा जाए, इसके टिप्स हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करें।
1: और हम अब साझा कर रहे हैं ये ठंडी छांव और सुकून दे गाना, जिससे हमें छांव मिलेगी, ठंडक भी महसूस होगी
2: जी,
1: और पर्यावरण के रखरखाव, पर्यावरण की सुरक्षा की भी बातें हम सोच सकते हैं इस गाने को सुनते हैं। सुनते ही ये गाना।

0: ठंडी हवा के झोंके जब चलते हैं तो यादों का कारवां भी चलता है और छांव तो मिलती है, सुकून मिलता ही है। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की है चंचल जी कि आज पर्यावरण विद तुलसी गौड़ा के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इस तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में जहां भीषण गर्मी है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, ऐसे में पर्यावरण की बातें करके पर्यावरण की ओर ध्यान देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रजाति के वृक्ष की, मातृवृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के कारण तुलसी गौड़ा को वन का विश्वकोश कहा जाता था। वृक्ष देवी के नाम से भी वे जानी जाती थी क्योंकि उन्हें वनों का बहुत गहरा ज्ञान था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी।
1: और बहुत से पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रदूषण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी मनुष्यों की गतिविधियां, जैसे जो औद्योगिकरण बहुत बढ़ रहा है या वनों की कटाई हो रही है, इसके कारण जो भी उत्पन्न होते हैं उनसे वनों को भी बहुत क्षति पहुंचती है। इन्हीं वनों के संरक्षण के प्रति उनकी जो गहरी प्रतिबद्धता थी, इस क्षति को कम करने के लिए वो सहायक हो सकती थी। और इनकी शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तुलसी गौड़ा की, तो इनका जन्म हुआ साल 1944 में कर्नाटक के होन्नाली गांव में। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और जब वो सिर्फ 2 साल की थी तभी पिता का साथ भी छूट गया।

0: जब वो बड़ी हो रही थी तो अपनी माँ जो वो काम किया करती थी एक स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में, उनके साथ वो चली जाया करती थी। और औपचारिक शिक्षा वैसे तो इन्हें कभी नहीं मिली, ना इन्होंने स्कूल जाकर कभी सीखा, लेकिन तुलसी गौड़ा कर्नाटक वन विभाग में नर्सरी में जो भी उगाए जाने वाले बीज थे उनके देखभाल का कार्य किया करती थी। उन्होंने बीजों के संरक्षण में अपने कार्यों और वनस्पति विज्ञान को देखते हुए स्थायी पद की पेशकश के लिए जाने तक अपनी माँ के साथ नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में 35 सालों तक काम किया और 70 साल की उम्र पूरा होने तक यानी कि सेवानिवृत्त होने से पहले करीब करीब 15 वर्षों तक नर्सरी में इसी स्थायी पद पर उन्होंने काम किया था।
1: और इसके अलावा नर्सरी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए वन विभाग के वृक्षारोपण प्रयासों में भी योगदान दिया और प्रत्यक्ष रूप से काम किया। पौधों को रोपने के साथ साथ उन्होंने वन्य जीवों को नष्ट करने वाले शिकारियों और जंगल की आग को रोकने के लिए भी काम किया।
0: तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक वन विभाग में रहते हुए करीब 60 सालों से भी अधिक समय तक सेवा की इन जंगलों की, इन पेड़ पौधों की। और इसमें एक सामुदायिक अभयारण्य, 5 बाघ अभयारण्य, 15 संरक्षण अभयारण्य और करीब 30 वन्य अभयारण्य शामिल हैं। और उनका उद्देश्य गांवों को प्रकृति से फिर से जोड़ देना था, क्योंकि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना इसीलिए। और तुलसी गौड़ा को पर्यावरणविदों ने वन का विश्वकोश कहा, जैसा कि आपने शुरू में बताया, और वृक्ष देवी के रूप में भी वो जानी जाती रही, क्योंकि उन्हें वन और पौधों का बहुत ही गहरा ज्ञान था। और वन में कहीं भी लगाए हुए पेड़ों की प्रजाति के जो मात्र वृक्ष हैं उनकी पहचान किस तरह की जाती है, इसमें उनको एक अद्भुत क्षमता हासिल थी। तुलसी गौड़ा बीज इकट्ठा करने और उन्हें पहचानने में भी विशेषज्ञ थी। सभी तरह के जो पौधे होते थे उनकी प्रजातियों को फिर से जीवित किस तरह से करना है, दोबारा उनको विकसित करने के लिए मात्र वृक्ष से बीज किस तरह निकालना है, ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन तुलसी गौड़ा इसमें सक्षम थी।
1: और इसके अलावा तुलसी गौड़ा खुद भी कभी किसी को ये नहीं समझा सकी कि उन्होंने जंगल के बारे में इतना ज्ञान कैसे पाया, लेकिन वो ये जरूर कहती थी, ऐसा लगता है जैसे वो जंगल की भाषा बोल सकती हैं। उनके समुदाय की परंपराओं में मातृसत्ता प्रकृति से जुड़ी हुई है और भूमि की देखभाल भी करती है।
0: ऐसा अनुमान ममता जी लगाया जाता है कि तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक में अकेले ही करीब 1 लाख के करीब उन्होंने पेड़ लगाए हैं। और उनके गांव के आसपास के क्षेत्र में तुलसी गौड़ा को वहां का गौरव भी लोग मानते हैं। उन्हें जंगल और औषधीय पौधों का अमूल्य ज्ञान था। उन्होंने जो भी पौधे लगाए उनमें बहुत ज़्यादा जो पौधे थे वो औषधीय पौधे भी थे, और इनका उपयोग उस वक्त बहुत ज़्यादा किया गया जब गाँव के लोग बीमार पड़ जाया करते थे।
1: हालांकि एक समय जब वो कर्नाटक वन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने गांव के बच्चों को जंगल के महत्व के साथ साथ बीज खोजने और उनकी देखभाल करने के बारे में सिखाना जारी रखा।
0: तुलसी गौड़ा ने अपने गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया। और जब कुछ कहा सुनी के बाद, कई ऐसे भी मामले होते हैं कि कुछ मार पिटाई भी हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में भी वो आगे आई और किसी निरपराध को उन्होंने कभी सजा नहीं होने दी। और पुरस्कार और सम्मान भी जब कोई ऐसा काम करता है तो वो भी उन्हें दिए जाते हैं। अब उन्हें क्या क्या मिला इसके बारे में बताते हैं। साल 1986 में तुलसी गौड़ा को इंदिरा प्रियदर्शिनी वर्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे IPVM पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं। और ये पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि विकास के योगदान के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को दिया जाता है। इसके बाद साल 1999 में तुलसी गौड़ा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ, जो कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और साल 2020 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान है। और ये सम्मान मिलने पर भी तुलसी गौड़ा का कहना ये था कि पद्मश्री प्राप्त करके उन्हें खुशी तो है, लेकिन फिर भी जंगल और पेड़ों को वो ज्यादा महत्व देती है।
1: और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी समुदायों को शामिल किया जो आसपास के समुदाय थे। इससे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई लोगों में और लोग खुद भी पहल करने के लिए आगे आए। उनके प्रयास से कर्नाटक के बहुत सारे बंजर क्षेत्रों को पुनर्जीवित करके फिर से पर्यावरण के संतुलन को बहाल किया गया और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जंगलों और उनके संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया, जिससे देश और समाज का कल्याण हो सकता है।
0: और फिर आया 16 दिसंबर 2024 का दिन, जब उनकी उम्र करीब 86 साल की थी। इस समय

0: इस संसार को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर चली गई, और तुलसी गौड़ा की विरासत हम सबके लिए प्रेरणा है और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने हमें समझाया कि कोई भी पहल पर्यावरण में बदलाव ला सकती है। उनका जीवन हमें प्रकृति की देखभाल और जुड़ाव की महत्वपूर्ण संस्कृति को विकसित करने का संदेश देता है।
1: और जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो ये बात अपने आप

0: तो भाई ये बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, भरत व्यास की ये रचना थी, सतीश भाटिया का संगीत था।
1: अच्छा ममता जी, इससे पिछली बार जब हम मिले थे विविध भारती में और हम जब गेट पर ही थे तब उल्टी दिशा में आप जा रही थी बड़ी तेजी से।
0: अरे बड़े ध्यान से आप देखती हैं।
1: क्या होता है ना, सीधी दिशा में तो सभी चल रहे थे, अचानक आपको जब उल्टी दिशा में जाते देखा मैंने, तो मैं समझ

0: भाई की कारण क्या है, तो आज जब मुलाकात हुई तो लगा यही पूछ लूं।
1: ठीक, सवाल बिल्कुल सही है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बाएं तरफ चलो
0: जी
1: और एकदम किनारे किनारे चलो।
0: हाँ।
1: जो सड़क के किनारे जो बना रहता है, जिसको हम पैदल यात्रियों के लिए चलने के लिए बना रहता है,
0: हाँ,
1: वहां
0: हाँ।
1: चलना चाहिए, ये सिखाया जाता है हमें।
0: इसीलिए सिखाया जाता है ना कि भाई सुरक्षा के मद्देनजर ये जरूरी भी तो है।
1: और सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन कुछ लोग तो बहुत सदाशयता के साथ करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो नियम उस दिन पालन मैंने नहीं किया, लेकिन आपने पूछा कि क्यों चल रही थी, उसकी एक वजह है। देखो, सड़क के किनारे चलने के लिए जो कई बार छायादार वृक्ष लगे होते हैं, बाईं तरफ हम चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और खासतौर से हाईवे जो होते हैं वहां पर तो आपके लिए पैदल चलने के लिए कुछ बना नहीं होता है।
0: जी।
1: और हाईवे ना हो तो भी कुछ सड़कों पर जहां पर किनारे चलने की जगह ना हो तो वहां पर मुझे लगता है कि उल्टा चलना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बाई तरफ चल रहे हैं, पीछे से बाइकर्स इतनी तेज रफ्तार में आते हैं कि उन बाइकर्स की आवाज से अपना बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरते गिरते बचते हैं, और ऐसे हादसे हमने आंखों के सामने देखे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब जहां पर पैदल यात्रियों के लिए जगह नहीं बनी रहती तो मैं उल्टा चलती हूँ, क्योंकि सामने से वाहन आता हुआ दिखाई देता है तो हम सतर्क रहते हैं पहले से।
0: और आपने जब बात की ना कि कई बार लोग हॉर्न बहुत तेज बजाते हैं, तो हम नियमों की बात तो करते हैं, उसमें इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कितने ज्यादा तेज आवाज की हमें जरूरत है। हम उतना ही, कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए या कहते हैं कि शो ऑफ करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इतनी तेज आवाज वाला हॉर्न अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं, और इससे कई बार लगता है कि जैसे कान के पर्दे कहीं फट ना जाए, तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के बारे में, और इसका मतलब होता है कि सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटना है उसके खतरे को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उनको कम करने के लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करना ना सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन करना, नशे में गाड़ी ना चलाना, रेड लाइट का सम्मान करना, ये सारे नियम ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और जीवन रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। और आज के समय में सड़कों पर वाहनों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक से हर कोई बदहाल है, बेहाल है, और इनसे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये बातें हम करते तो हैं, ये सिर्फ नारा नहीं लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है। यातायात के जो भी नियम है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सड़कों पर वाहन और पैदल चलने वाले जितने भी लोग हैं उनका संतुलन वो बना रहे, कोई दुर्घटना ना हो, जान माल की हानि ना हो।
1: बिल्कुल। और कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए, जैसे कि लेन का पालन करें।
0: हाँ।
1: और हमने तो भाई देखा है कि तुरंत यहाँ मुंबई की सड़कों पर लेन अगर गलत तरीके से चेंज किया तो चालान हो जाता है,
0: और
1: आजकल तो ऑटोमेटिक चालान आपको पता भी नहीं चलता, आपके जब पैसे कटते हैं तो पता चलता है।
0: जब खासतौर पर हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ आपकी गति के हिसाब से लेन बनाई हुई होती है, तो जिस गति में आपकी गाड़ी चल रही है, आप चला रहे हैं, उसी लेन में आपको रहना जरूरी है ताकि अगल बगल जो भी लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर उन्हें कोई दिक्कत।
1: मुंबई की बात करें तो मुंबई में खास तौर से जो मुंबई का शहरी इलाका जिसको मुंबई महानगर कहा जाता है, जैसे कि जहां पर विविध भारती का स्टूडियो है, ये तो उपनगर है बोरीवली, लेकिन मरीन लाइंस और दादर इस तरह इस इन इलाकों में लेन का एक रूल है, अगर लेन बदला तो आपको फाइन भरना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि आप बाईं तरफ ही चलें, वो ट्रैफिक रूल के आपको ट्रैफिक रूल समझ लेना चाहिए मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है, वरना उसके लिए भी फाइन हो जाता है।
0: और
1: हम सब एक आध बार सीट बेल्ट के लिए कार में बैठकर फाइन भर चुके हैं, हमें लगता है।
0: कई बार लोग कहते हैं ना कि कुछ लड़के खासतौर पर कहते हैं कि हीरोपंती में गाड़ी चलाने के लिए वो हेलमेट नहीं पहनते, सिर्फ जब उनको ट्रैफिक सिग्नल पर से निकलना होता है कि सिग्नल आने वाला है, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिसमैन ना हो तो उनसे बचने के लिए वो हेलमेट पहनते हैं। लेकिन आपको हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि
1: अपनी सुरक्षा
0: के लिए पहनना है, इस बात का ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय निर्धारित जो गति सीमा है उसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि तेज गति जो है वो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी तरह से ट्रैफिक के जो भी सिग्नल हैं उनका पालन करें। रेड लाइट का मतलब है कि आपको थोड़ी देर रुकना है, पीली बत्ती है कि आप तैयार हो जाएं, हरी बत्ती का मतलब है कि आप आगे बढ़िए। इसी तरह से मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद ड्राइविंग ना करें, और ये कानूनन अपराध भी है। वाहन चलाते समय मोबाइल

0: फोन पर बात कभी ना करें।
1: चंचल जी,
0: जी
1: यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि मोबाइल फोन पर बात करते समय वाहन न चलाएं। ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन कोई मानता नहीं है। अब तो ईयरप्लग लगा के कार में तो आराम से लोग बातें करते हुए जाते हैं। अब तो कार में ये सुविधा भी है कि आप फोन करो और आपका स्पीकर चल जाता है, तो स्पीकर पे बात करते हो, वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। और जो मोबाइल बाइक पर हेलमेट के अंदर ईयरप्लग लगा के लोग आराम से बात करते हुए जाते हैं, जब ये ईयरप्लग नया नया आया था बाजार में, तो कई लोगों को हमने देखा कि ये पागल है क्या, बंदा अपना बाइक पे चला जा रहा है और बातें करते हुए जा रहा है अपने आप से। तो बाद में पता चला कि ये सुविधा भी है कि आप आराम से बाइक चलाते रहो और बातें करते रहो। ये बहुत खतरनाक होता है। कहाँ पर आपका आपसे बात करने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है कि आपका ध्यान भटक जाए,
0: बिल्कुल सही,
1: वो बहुत खतरनाक होता है।
0: इसी तरह से जो वाहन की लाइट्स होती हैं उनका भी सही उपयोग जरूरी होता है। कई बार हमें लेफ्ट या राइट जब लेना होता है, अपनी गाड़ी को टर्न करना होता है, मोड़ लेना होता है, उस वक्त के लिए कुछ बत्तियां हमारी गाड़ी में निर्धारित होती हैं, तो कई बार उनका लोग प्रयोग किए बिना ही आपने अगर सिग्नल पे से आपने टर्न ले लिया, तो जो पीछे वाले जो लोग हैं जो अपने वाहन पर हैं उनके लिए चीज़ खतरा बन सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, इसीलिए जब भी ट्रैफिक रुकता है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें रास्ता ज़रूर दें और अगले वाहन से एक उचित दूरी ज़रूर बनाकर रखें ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। दूसरे वाहनों को अगर दाईं ओर से ओवरटेक करने की नौबत आती है तो बड़ा सावधानीपूर्वक करना है ताकि आप भी सुरक्षित हों और जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं उनको वाहन में ना लेकर जाएं। वाहनों का समय समय पर उचित रखरखाव जो है या प्रदूषण की जांच है ये भी करवाना जरूरी है। ये सड़क सुरक्षा का नियम नहीं है लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने वाहन को उसी सड़क पर
1: वरना धुआं उगलता हुआ वाहन आपके लिए नुकसानदेह है और सड़क पर जो चल रहे यात्री उनके लिए भी नुकसानदेह।
0: सड़क सुरक्षा का महत्व खुद के लिए भी और दूसरों के जीवन रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यातायात के जो भी नियम हैं उनका पालन अगर करेंगे तो दुर्घटना या अकाल मृत्यु दोनों से बच सकते हैं और ट्रैफिक जाम को भी हम कम कर सकते हैं, आवागमन तेज हो सकता है इससे। अगर इन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना, सजा कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इनसे बचने के लिए नहीं अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी आप करिए। और कई बार तो हमें कहना चाहिए कि छोटे बच्चे जब, क्योंकि कई बार छोटे बच्चों को भी हम वाहन हाथ में दे देते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में उन्हें समझ हो। पहली बात उन्हें वाहन देना नहीं हाथ में, लेकिन बच्चे जब बड़े होकर वाहन चलाने लगे,
1: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन देना है नीचे कानूनन अपराध है। और देखिए सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम है, बच्चों को सड़क पार करने का तरीका भी सिखाएं। जो छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं नया नए, उनके भी जो रूल हैं बताएं कि हेलमेट लगाएं। और देखिए सड़क सुरक्षा के बारे में अपने जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम क्या कहते हैं, सुनते हैं।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो ने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: अंतराल में जो गाना बज रहा था बाबूजी धीरे चलना, तो मुझे याद आई हम बात कर रहे थे सड़क सुरक्षा के बारे में। हमारे साथी का कहना है कि सड़क सुरक्षा के विषय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। हेलमेट पहनना बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। आज की युवा पीढ़ी को रफ्तार से ज्यादा अपनी और दूसरों की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। याद रखें, सड़क पर आपकी समझदारी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है। एक अन्य संदेश में हमारे एक साथी ने लिखा है कि बेहतर सड़क सुरक्षा बेहतर जीवन सुरक्षा। जीवन को बचाना है तो नियमों का पालन करना है, सड़क पर चलना है तो नियमों को जानना है। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। और क्यों ना ममता जी, एक गाना सुन लिया जाए।
0: गाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी है जो श्रोताओं तक पहुंचा दें। हमारे एक सुधीर श्रोता हैं जो नियमित रूप से विविध भारती सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि मोबाइल पर बात करते या ईयरफोन पर गाना सुनते हुए सड़क पार करने की वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है और ट्रेन से भी दुर्घटना होती है। कई बार लोग मोबाइल पर बात करते हुए ब्रिज का प्रयोग नहीं करते हैं और रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, तो इस वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं घटती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, हमने वो बातें बताई हैं हालांकि, तो फिर भी इनका कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। लिखा इन्होंने कि सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं और चोटों से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट सीट बेल्ट पहनना, गति सीमा का पालन, नशा न करना, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, ट्रैफिक सिग्नलों का सम्मान करना इसमें शामिल है। कई बार देखा है कि लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो चलो सिग्नल पार कर जाओ। तो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस ने नहीं देखा, कैमरा देख रहा है, जब कैमरा नहीं था तो आपका आपका अपना आपकी नैतिकता देख रही है ना। अगर आप खुद को बताओ कि हम गलत कर रहे हैं तो अपने आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन
1: और आजकल हर सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पर एक तीसरी आंख यानी कि कैमरा लगा दिया गया है। तो आप ये ना सोचे कि कोई हवलदार नहीं है तो आपको किसी ने देखा नहीं है।
0: अब गाना सुनते हैं एक।

0: ये पतिता फिल्म का गाना था और सड़क सुरक्षा के लिए हमारे श्रोता बहुत सजग है भाई, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ये सच है कि हम उसे उतना महत्व नहीं देते। इस विषय पर हमें बच्चों को स्कूल और घर से ही शिक्षा के एक रूप में देना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे नौजवान, खासतौर पर नवयुवतियां भी फैशन के चक्कर में बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाते देखे जाते हैं, उनका चालान भी होता है।
1: और नवयुवतियों की जब बात हुई है तो नवयुवतियां भी कई बार फैशन में, वो सिर्फ जिस तरह का हेलमेट पहनते हैं वो सिर्फ एक टोपी जैसा होता है, जिसमें सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सिर्फ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए पहनना है। और ममता जी, आपने जब उल्टा चलने की बात बताई थी ना, इसी बात पर हमारी एक सखी ने कुछ कमेंट लिखा है। वो कहती हैं कि ममता जी आपने बिल्कुल सही कहा, उल्टा चलना कई बार ज्यादा सुरक्षित है। कुछ साल अब अपनी अपनी घटना बता रही हैं। कुछ साल पहले पुणे में इसी तरह हम कुछ सहेलियां लौट रहे थे। एक सहेली बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाने लगी तो मैंने मना किया। इस पर उसने कहा कि नहीं, दाहिने से ही चलो, कम से कम उधर से आते हुए वाहन दिखाई तो देते हैं, गाड़ी आ रही है तो हम पीछे हो सकते हैं। तब से मैं भी कई बार इस तरीके को अपनाने लगी हूँ।
0: लेकिन बस सजग रहना बहुत जरूरी है कि आप, पता चला मोबाइल देखते देखते चल रही हूँ, सामने से कोई वाहन चला रहा है तेज स्पीड में, तो आपका बैलेंस तो बिगड़ेगा ही और जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये आपकी सजगता पर डिपेंड करता है। मोबाइल देखते हुए, फोन पर बात करते हुए लोग चले जा रहे होते हैं। आजकल ये जो मोबाइल फोन है वो सब बहुत सारी मुसीबत की जड़ हो गई है।
1: हाँ, लेकिन अगर ये मोबाइल फोन आप कमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है, हम कमेंट पढ़कर सुनाते हैं। अगला जो हमारा विषय है जिस पर हमें बात करनी थी, यानी कि पुराने कपड़े जिन्हें आपने बहुत पहन लिया लेकिन अभी वो अच्छी अवस्था में है, आपको उनको कोई नया रीयूज करना है तो किस तरह करेंगे, इसके बारे में जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इस पर एक कमेंट बड़ा अच्छा आया है कि पुराने कपड़ों को थोड़ी मेहनत के साथ नया रूप दिया जा सकता है। पुराने सूट, साड़ी या जीन्स को नया डिजाइन देकर फैशनेबल बनाया जा सकता है। उन पर कढ़ाई, लेस, बटन, पैचवर्क, रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर आकर्षक लुक दिया जा सकता है। पुराने दुपट्टे से स्टोल, कुशन कवर या बैग भी बनाए जा सकते हैं। पुरानी पैंट के थैले जो कि सामान लाने के लिए बहुत काम आते हैं वो बनाए जा सकते हैं। और ये बनाते हुए हमने अपनी मम्मी को बहुत देखा है। इस तरह पुराने कपड़ों को नया आकार देने से न केवल बचत होती है बल्कि रचनात्मकता भी निखरती है। तो कमेंट्स बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते ही ये गाना।

0: तो चंचल जी, इससे गाने से पहले आप पुराने कपड़ों को नया लुक किस तरह से देना चाहिए बता रहे थे, और हमारी सखियों की बहुत सारी टिप्पणियां भी आपने सिखाई हमें, तो याद है बचपन में कि पुराने कपड़ों की बहुत सारी चीजें तैयार की जाती थी, यहाँ तक कि टेबल क्लॉथ बना दिया जाता था, और कुशन कवर तो बताया ही हमारी सखियों ने, और हमें याद है कि हमारी माँ पुराने कपड़ों से बहुत सारी चीजें और डिजाइनदार बनाती थी, सिलाई मशीन होती थी घर में, सिलाई मशीन का कवर कपड़ों से तैयार किया जाता था, और पैरपोश उस समय बाजार में बहुत कम मिलता था हमें तो जहां तक याद है, तो कपड़ों से ही तैयार किया जाता था, और बहुत सारे तकिए के कवर सुंदर डिजाइनदार बना दिए जाते थे, झालरदार झालर बहुत सुंदर लगता था।
1: कई बार अलमारियां जो घर में होती थी, जैसे अब दरवाजे वाली अलमारियां होती हैं, जब पहले नहीं होते थे ऐसे आले होते थे, खुले होते थे, तो उन पर भी पर्दा लगाने के लिए जो घर के पुराने कपड़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था।
0: और एक बात और, जो बड़ा सा रेडियो हुआ करता था टेबल पर, एक परिवार के सदस्य की तरह बैठा रहता था, मर्फी वाला रेडियो, तो उसके लिए भी कवर बनाया जाता था, और वो बाकायदा डिजाइनदार कवर होता था कि वो स्पीकर दिखाई पड़े और कवर से पूरा रेडियो ढका रहे ताकि उसमें डस्ट ना जाए।
1: और कई बार होता है ना कि कोई बड़े चाव से हमने साड़ी खरीदी, कुर्ता खरीदा या कोई भी जीन्स खरीदी, उस पर कुछ ऐसी जगह पे वो अटक गया जिससे हल्की सी खरोंच लग गई या कुछ फट गया वो उस जगह से, तो हमें लगता है कि अब दोबारा नहीं पहनेंगे, मन में खटास सी आ जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद अलमारी में जब हम फिर से उसी कपड़े को देखते हैं तो मन करता है कि चलो कुछ नया करके इसको पहन लिया जाए। तो इस तरह से जो ये चीजें हमारी अन्य सखियों ने लिखी है ना, कि पैच वर्क लगाकर, कुछ कढ़ाई बनाकर, या उसको कुछ काट छाट कर छोटा बड़ा करके, इस

0: तरह से कई कपड़ों को नया लुक हम दे सकते हैं। और अगर वो दाग वहां पर कोई आ गया है तो उन्हें डाई करके, खुद ना कई बार हमने मशीन में सारे कपड़े एक साथ में डाल दिए और कपड़े नए के नए ही दाग लगने से खराब हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अलग तरह से डाई किया जाए या रंग बिरंगे जो छपाई की जाती है इस तरह से उस कपड़े को हम नया लुक देकर फिर से पहन सकते हैं।
1: वैसे जो डिजाइनदार दुपट्टे होते हैं चुन्नी, उसके तो कुर्ते बनाए हैं आपने भी और हमने भी, है ना, और तो वो बहुत सुंदर बनता है।
0: बहुत सारी जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो रोज साड़ी पहन सकें, और जब वो अपनी वार्डरोब को खोलती हैं तो लगता है कि हाय इतनी सारी साड़ियां हैं सभी पसंदीदा हैं, तो उनका
1: ये आप अपने दिल की बात कर रहे हैं
0: उनका इस्तेमाल करने के
1: दिल
0: लिए
1: की बात है।
0: हम कई बार गाउन बना लेते हैं, कई बार उनसे प्लाजो सेट बना लेते हैं, तो और आजकल आप जाइए डिजाइनर्स के पास में तो वो इतने सारे उनके रीयूज बता देते हैं, और जिन कपड़ों को हम बहुत पहन चुके होते हैं तो उनसे तो आजकल इतने तरह के बैग बनने लगे हैं, कुशन कवर बनने लगे हैं, तो ये जो रीयूज है ना ये बहुत ज्यादा होता
1: है। और बात आपने साड़ियों की निकाली है तो साड़ियां तो ऐसे ललचाती हैं तो हम उसको रखे रहते हैं कि अब फला मौके पर फला साड़ी पहनेंगे, और उन साड़ियों को कई बार रखे रखे उसमें क्या कहते हैं कीड़े भी लग जाते हैं, खासतौर से सिल्क की साड़ियों में। तो अगर आप टेलर के पास ले जाएं और ये कहें कि इसका एक डिजाइनदार जो आजकल बहुत चलन में था पिछले दिनों वेस्टर्न गाउन, जिसे कि आप कहीं बाहर फंक्शन में जाते थे पार्टी में और वो जब खरीदने जाते थे तो महंगे महंगे मिलते थे, तो साड़ियों का डिजाइनदार आप वेस्टर्न गाउन बनवा सकते हैं।
0: उनकी कलियां अलग अलग कटवा कर, तो जो खराब हिस्सा है अनारकली कट जाता है, तो छोटी छोटी कलियां कटवा कर उनकी स्कर्ट बन जाती हैं, उनके अनारकली ड्रेस बन जाते हैं, या आप स्कर्ट बना लीजिए, लहंगा बना लीजिए, ऊपर से कुछ कुर्ती या टॉप नया ले लीजिए, तो वो बहुत सारे नए लुक हैं। इस तरह से जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने भी कुछ आइडियाज हमें दिए हैं, तो पुराने कपड़ों को नया लुक देने के लिए आप ब्लीचिंग या उनको डाई करना, कढ़ाई, पैचवर्क का उपयोग कर सकते हैं, टी शर्ट को क्रॉप टॉप में बदला जा सकता है, जीन्स को डिस्ट्रेट यानी कि फाड़कर स्टाइलिश बनाया जा सकता है, शर्ट पर बटन या लेस लगाकर उनको नया रूप दिया जा सकता है, डाई का उपयोग करके फीके पड़ चुके कपड़ों को फिर से चमकीला बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे साथी ने जो हमें लिखकर बताया है कि कुछ रचनात्मक उपाय उन्होंने बताए हैं कि डाई से नया अंदाज किस तरह से दिया जा सकता है, पेंटिंग या कढ़ाई करके किसी भी शर्ट, टी शर्ट या साधारण से कुर्ते को भी फैब्रिक पेंटिंग उस पर लगा दीजिए, हाथ से कढ़ाई कर दीजिए तो एक फूल पत्ती बना देंगे तो नया डिजाइनर लुक आ जाता है। इसी तरह से जीन्स का कई तरीके से इस्तेमाल है, शॉर्ट्स बना सकते हैं, बैग या पाउच बना सकते हैं, कुशन या मोबाइल के स्टैंड बना सकते हैं, इस तरह से लैच और पैचवर्क कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, फिटिंग में बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक्सेसरीज जोड़ी जा सकती हैं, और आगे इन्होंने संक्षेप में लिखा है कि इससे पैसों की बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, रचनात्मकता का विकास होता है और यूनिक व्यक्तिगत फैशन का स्टाइल बन जाता है।
1: छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे डिजाइनदार कपड़े बन सकते हैं, फ्रॉक है, टी शर्ट है, ये बन सकते हैं। और अब एक गाना सुन सकते हैं।

0: कपड़ों से और क्या क्या बन सकता है चंचल?
1: पुराने जो स्वेटर होते हैं ना उनका भी हम एक नया लुक दे सकते हैं, उनसे टोपी बन सकती है, और जो पुलोवर होते हैं उनसे हम कार्डिगन बना सकते हैं।
0: लेकिन ऊन कट जाता है बीच से, फिर उसको कैसे करें?
1: अरे मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ।
0: अच्छा,
1: एक बार हुआ क्या कि ये तो उन दिनों की बात है जब मैं जयपुर में रहा करती थी और वहाँ ठंड बहुत होती है, तो पूरा तैयार हो गई, हेयर स्टाइल वगैरह अच्छे से बना लिया, बाद में आता है कि स्वेटर नहीं पहना है। अब स्वेटर पहनने में रखने लगे, भाई ऊपर से जब गले में से हम डालेंगे सर पे तो सारा हेयर स्टाइल खराब हो जाता है, और ये समस्या और भी लोगों को शायद होती होगी। तो उस दिन तो फिर मुझे दोबारा हेयर स्टाइल बनाना पड़ा, लेकिन इससे बचने के लिए मैंने परमानेंटली उस स्वेटर को काट दिया आगे से। और फिर वहां पर मम्मी ने, क्योंकि मम्मी सिलाई कढ़ाई किया करती थी, तो वहां पर मेरी माता जी ने एक जिप लगा दी और बड़ा सुंदर सा वो कार्डिगन बन गया। तो ये भी एक नया तरीका इस्तेमाल है। अगर आपका कोई पूरा ऐसा स्वेटर है जो आपको गले में से सर पे से डालकर पहनना पड़ता है, पूरा बंद है, और ये समस्या कभी आपके साथ भी हुई हो, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आगे से काट लीजिए, और वहां पट्टी लग जाती है तो वो उसको मोड़ दिया जाता है, तो ऊन के धागे निकलने का डर भी नहीं रहता, और जिप लगाने के बाद में उसे खोलकर पहनने में बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप बटन लगाएंगे तो शायद वो ऊन के धागे निकलने का डर रहता है, इसलिए जिप लगाना ज्यादा सुरक्षित।
0: और एक बड़े काम की चीज है कि पुराने कपड़ों को, खासतौर से जो छींटदार शर्टें होती है कॉटन की मोटी, तो उसके सुंदर डिजाइनदार बैग या झोले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्लास्टिक की थैलियां लेनी जानी है, तो झोले तो बहुत सारे घर में चाहिए होते हैं, तो वो डिजाइनदार बैग बन सकता है।
1: और इस तरह से ममता जी हम प्लास्टिक के उपयोग को रोक भी सकते हैं। आजकल ज्यादातर कागज के थैलियों में सामान आने लगा है, तो कई बार लटका कर आपको बहुत देर तक तो कोई भारी वजनदार सामान लाना है, तो वो कागज की थैलियां भी उस वजन को झेल नहीं पाती है, इसलिए बेहतर है कि आप घर पर बना हुआ कपड़े का बना हुआ कोई थैला लेकर जाएं।
0: और थैले से जब सब्जियां लेकर आते हैं ना, तो कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। उसकी साफ सफाई देखरेख कैसे करते हैं, जरा बताइए।
1: हाँ भाई, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में हमारे साथियों ने भी हमें लिखकर भेजा है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है हमारे रसोई घर में होता है, जो कि होता है खाने को सुरक्षित रखने के लिए और ताजा रखने के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज अगर रख दी जो खाने को ताजा रखने की बजाय बदबूदार बना दे, या कई चीजें बहुत दिन तक रखी हुई हैं तो भी वो एक सड़न या बदबू पैदा करने लगती हैं, तो इससे हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। फ्रिज से जो दुर्गंध आती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज करते हैं, फिर बैक्टीरिया फफूंद पनपने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इस गंध से आपको बचना है तो बेकिंग सोडा का जो घोल है उससे आप साफ कर सकते हैं। ये हमारे साथियों ने ये टिप हमें बताई।
0: कटा हुआ नींबू का टुकड़ा रख देना चाहिए, उससे भी उसकी जो
1: ये जो आपने
0: स्मेल होती है
1: चली। ये टिप भी हमारे साथियों ने हम तक लिखकर पहुंचाई है। अगर बेकिंग सोडे के घोल से आप पहुंच नहीं सकते हैं तो एक खुले एक बर्तन में, कटोरी में आप बेकिंग सोडा रख दीजिए, तो वो भी गंध को सोख लेता है। और अगर ये बदबू बहुत ज्यादा जिद्दी है तो सफेद सिरका जो होता है उसे पानी में घोल कर एक मिश्रण तैयार कीजिए और इससे पोछा लगा दीजिए। और कॉफी के जो दाने हैं उनको भी रखा जा सकता है, ये भी हमारे एक श्रोता की लिखी हुई टिप्पणी है। और नींबू की तो आपने बताई दी है। इसके बाद जो सक्रिय कोयला जिसे एक्टिव चारकोल कहते हैं वो भी गंध सोखने में शक्तिशाली होता है, तो उसे भी रखकर आप

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती। कहते हैं वक्त के साथ चलना ही जिंदगी की पहचान है। जो ठहर गया वो किस्सों में, जो बढ़ गया वही नई उड़ान है। पुराने कार्यक्रमों की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, यादों से भरी, अपनापन लिए हुए, और नए कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं ताजगी, नए विचार और एक नई ऊर्जा। जिंदगी की तरह रेडियो भी हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि बदलाव ही वो धड़कन है जो हर चीज को जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं खूबसूरत बदलावों के साथ हम

0: यादों से भरी, अपनापन लिए हुए और नए कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं ताजगी, नए विचार और एक नई ऊर्जा। जिंदगी की तरह रेडियो भी हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि बदलाव ही वो धड़कन है जो हर चीज को जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं खूबसूरत बदलावों के साथ हमारी रेडियो पर कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, वहीं कुछ पसंदीदा कार्यक्रम अब नए समय पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम जानना चाहेंगे आपकी राय, क्या ये बदलाव आपको पसंद आ रहे हैं, कौन सा नया कार्यक्रम दिल को छू रहा है और बदले हुए समय आपकी दिनचर्या में कितने फिट बैठ रहे हैं। तो आइए अपनी बात खुलकर कहिए अपनी आज की हेलो फरमाइश कार्यक्रम की साथी यानी कि मैं नेहा आगरकर देसाई के साथ, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारे हर कार्यक्रम की असली जान है। और आइए अब देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: जी हम भोपाल से बोल रहे हैं, राम गोपाल मालवीय।
0: भोपाल से गोपाल जी? जी गोपाल जी, बताइए आप क्या करते हैं?
1: हाँ, हमारा ये लॉन्ड्री का काम है, ये काम हम करते हैं और एफएम सुनते ही रहते हैं हम तो सुबह से लेके शाम तक आपके प्रोग्राम विविध भारती के।
0: अच्छा, तो आप बिल्कुल रेगुलर श्रोता हैं?
1: हाँ जी जी जी बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन फोन पहली बार लगाया है।
0: ओहो क्या बात है, पहली बार आपका फोन लग रहा है, खुशी जरूर हो रही होगी।
1: हाँ जी बहुत खुशी हो रही है।
0: अच्छा ये बताइए कि विविध भारती के कुछ कार्यक्रमों में अब बदलाव आए हैं, तो आप उन बदलावों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे आपको ये बदलाव?
1: बिल्कुल अच्छे लगे हैं, जो वो अपना मनचाहेगी, जो अपने पत्रों पे आधारित प्रोग्राम शुरू किए हैं संडे और सैटरडे को 3 बजे से, वो प्रोग्राम अच्छे, और हमने 2 पत्र डाल दिए, एक तो शामिल हो ही जाएंगे हमारे।
0: ओहो हो, हमें भी इंतजार है आपके खतों का और आपकी बातों का। तो अच्छा, मतलब इस बार आपका कॉल भी लग गया है और अब आपको उम्मीद है कि पत्र भी शामिल हो ही जाएगा।
1: हाँ जी जी,
0: यानी चित भी आपकी और पट भी आपकी।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक छोटा सा बदलाव आपने किया है ठीक है, लेकिन मंगलवार को वो जो नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो ये हेलो फरमाइश एक ही दिन आएगा, सिर्फ गुरुवार।
0: जी एक ही दिन आएगा।
1: अच्छा,
0: और आप उसको रिपीट में भी सुन सकते हैं अगले दिन, जैसे गुरुवार को आप नया प्रोग्राम सुनेंगे और शुक्रवार को वही कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुन सकेंगे, तो रिपीट में भी आप इसे सुन सकेंगे। जरा अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि हम नए कार्यक्रम आपसे परिचित करवाने वाले हैं, तो और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के साथ भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना हेलो फरमाइश के साथ आ रहा है।
1: जी जी,
0: चलिए ये बताइए गोपाल जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: संगीत फिल्म का एक गाना है इसमें, सुनो ए हसीनो।
0: सुनो ए हसीनो संगीत फिल्म से, और फिलहाल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काचियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साथी बात कर रहा हूँ। और मैम कैसे हैं?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या करते हैं, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, खेती बाड़ी करता हूँ। और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआ से सब सही है, सब सलामत है।
1: जी सर, सभी को रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और आपके कार्यक्रम जितने भी आते हैं वो सुनना चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिक भरे हुए भी हैं और मनोरंजन भी है।
0: जी
1: भी है।
0: क्या बात है, इतनी सारी तारीफें आपने की हैं। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ लूं? देखिए आपकी बातों से तो ये समझ आ रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। अब ये बताइए कि जो नए बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: बढ़िया जी, नए नए प्रोग्राम जब चलते हैं तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि समय का परिवर्तन जरूरी होता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं या फिर जिन कार्यक्रमों के बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आपके जिन कार्यक्रमों के समय में बदलाव हुआ है वो आपके टाइम के हिसाब से फिट हो रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, तो खेती बाड़ी करते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुना करते हैं?
1: जी जी, कहीं पर भी सुन सकते हैं, खेत पर भी, घर पर भी, क्योंकि अब मोबाइल ऐप पर जो चालू हुआ है उसके माध्यम से कहीं भी सुना जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप जो है उसके जरिए फोन पर भी सुना जा सकता है। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म है गिरफ्तार, धूप में निकला न करो रूप की रानी।
0: गर्मी के हिसाब से गीत को पसंद किया है क्या आपने?
1: बिल्कुल, इसी की वजह से सुनना चाहता हूँ। जैसे मौसम चेंज भी हो रहा है ना, इसलिए, और थोड़ा पानी वगैरह साथ लेकर रखें।
0: ये तो बिल्कुल सही है। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ रूप की रानी क्यों, बल्कि रूप के राजा को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि इन धूप के, कड़ी गर्मी के दिनों में किसी को भी बिना वजह या फिर जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना?
1: जी
0: बिल्कुल। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हमारा नाम है चंद्र प्रकाश पात्र
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: रामपुर ग्राम पालीगंज पटना बिहार।
0: क्या बात। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: हम तो अभी अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर के ड्यूटी में।
0: ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र में?
1: RBI के हम CFC रंगराजन, हमारा रुपया है गवर्नर, तो उसी में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ज्वाइन न किए हैं, सामान वन मंगा लिए हैं और लेंगे आजकल।
0: अच्छा, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है?
1: जी मैम।
0: अरे वाह, क्या बात है। विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: जी।
0: चलिए ये बताइए, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जी हमको सुनना है अखियों की झरोखों से खिलू के हेमलता की आवाज़ में।
0: चलिए चंद्र प्रकाश जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम रामेश्वर एक्वार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मैडम जी,
0: रामेश्वर जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती का काम निपट गया है।
0: खेती का काम हो चुका है तो फिर अब क्या विचार है आपका आगे?
1: आषाढ़ आएगा ना मैडम जून के महीने में, तो उसमें बुआई होगी अगली फसल की।
0: कौन सी फसलों की बुआई करेंगे आप?
1: मैडम जी ये उड़दा और मूंग।
0: क्या बात है, तो इसकी पूर्व तैयारी भी कुछ लगती होगी?
1: अभी तो ऐसे खेत खाली पड़े हैं, अभी नहीं है कुछ नहीं।
0: तो फिर अभी आप बिल्कुल फ्री हैं विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनने के लिए?
1: जी मैडम मैं सुनता हूँ सभी, जो दोपहर में आता है कमेंट वाला वो भी सुनते हैं और छाया गीत सुनते हैं, हवा महल भी सुनते हैं।
0: तो अब जो कमेंट वाला आता है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? क्या बदलाव है जानते हैं आप?
1: जी मैडम, पहले गीत माला था, सुरीला सफर हो गया।
0: पर उसके क्या बदलाव आए हैं कार्यक्रम के अंतर्गत? ये तो आपने नाम का अंतर बताया, कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं वो बताइए।
1: मैडम जी कार्यक्रम में तो काफी बदलाव है, थोड़ी जानकारी मुझे कम है।
0: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ये पहेली पूछी, बस इसी तरह की एक इबारत यानी कि एक टेक्स्ट उस कार्यक्रम में आता है और उस टेक्स्ट या इबारत में कुछ शब्द ऐसे शामिल होते हैं जिनके ऊपर कुछ गीत बजने वाले होते हैं, उन शब्दों से शुरू होने वाले या फिर उन शब्दों को लिए हुए कोई गीत, उस गीत के बीच में कोई शब्द आ सकता है। तो ऐसे गीतों की वो इबारत होती है और आपको पहचानना होता है कि कौन सा गीत बजने वाला है।
1: जी मैडम
0: जी, तो ये तो था यूं ही ताकि आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी पता चल जाए, और हम तो जानना चाहते थे कि आपने उस कार्यक्रम को कितना समझा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम नया नया है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा और फिर आपके भी कमेंट्स उसमें आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।
1: जी मैडम।
0: अच्छा ये बताइए रामेश्वर जी, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी पड़ोसन फिल्म का है, चतुर करके सिंगार।
0: तो चलिए रामेश्वर जी आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: यक चतुरन

ये चतुर नार हम छोड़ गए जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं राजकुमार यादव बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जलागोना मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है राजकुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: किसान हूँ, खेती बाड़ी में व्यवसाय है मेरा।
0: आपकी पसंद का काम है या फिर आपके यहाँ पूर्वज जो आपके पिताजी होंगे दादाजी होंगे तो ऐसे करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं?
1: जी मैम, वो जो हमारा बचपन से ही काम है खेती बाड़ी का।
0: अच्छा अच्छा,
1: पहले से ही चलती आ रही है खेती बाड़ी। किसान ही है हमारे गांव में, सब किसान ही है।
0: इसके अलावा और क्या शौक है आपके?
1: हमारे तो विविध भारती रेडियो सुनना, और थोड़े बहुत समय मिल जाए तो खेती बाड़ी में हाथ बटा लेते हैं।
0: क्या बात है, तो जब आपका शौक है विविध भारती सुनना तो चलिए आपसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाएं।
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए विविध भारती में जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं मैम। आपकी आवाज़ भी हम सुनते रहते हैं प्रोग्राम में, है जो हेलो फरमाइश है, साकी सहेली है।
0: पसंद आता है आपको कार्यक्रम?
1: जी जी मैम आता है।
0: क्या बात है, चलिए ये बताइए राजकुमार जी कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे कच्चे धागे फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम। उसमें एक गीत है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में, दिल का आना आया परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए राजकुमार जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से।
0: जी शेर खान जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं पहले तो सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को आपको प्यार भरा सलाम कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए यही दुआ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं वैसे तो रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ और हैदराबाद आके कुछ 7-8 साल हो रहे हैं।
0: अच्छा।
1: और मैं बता दूं कि मैं ब्लाइंड हूँ, दोनों आंखें नहीं है मेरी। 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी कैंसर की वजह से।
0: अच्छा,
1: और मैं विविध भारती को बचपन से सुनता हूँ।
0: अच्छा।
1: जी हाँ, बचपन से सारा प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। पहले भी जो प्रोग्राम आते थे, आज भी जो आते हैं, जो बदलाव हुआ है, बचपन से मेरा साथी है, जीवन साथी बना हुआ है रेडियो और विविध भारती।
0: क्या बात है। तो इन बदलावों के बारे में आपकी क्या विचार है, कैसे लग रहे हैं आपको ये बदलाव?
1: हाँ, बहुत अच्छा है। वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है और भी ज्यादा मजा आ रहा है और भी अच्छा लग रहा है कि आप जो है तो मोबाइल ऐप पे या किसी स्पेशल प्राइमरी चैनल से ये सुनने को मिलता है।
0: जी, तो ऐसा है कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आते हैं, हर बात बदलती जाती है।
1: बदलाव आते हैं और बदलाव स्वीकार करना ही इंसान की एक अच्छी कामयाबी है।
0: जी बिल्कुल, स्वीकार करना जरूरी है।
1: हैदराबाद में आके हमको 7-8 साल हो गए, तो यहाँ के रेडियो से ही मेरे कुछ दोस्त बने हैं, चैनल है, भाई बहन बने हैं। कॉल लगना बोले तो बिल्कुल एक चांद को छू लेने जैसी कामयाबी है। मैं भी इतने सालों से ट्राई कर रहा था, आज मेरा कॉल लग गया, बहुत खुशी हो रही है मुझे भी।
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी श्रोता का पहली बार कॉल लगता है और उनकी जो खुशी होती है वो हमें सुनने को मिलती है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है।
1: और मेरी गाने की फरमाइश है, फिल्म का नाम है हुकूमत, धर्मेंद्र साहब की फिल्म है, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक का और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है गाना। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा।
0: अच्छा, क्या आप गाते भी हैं?
1: नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं।
0: तो फिर गुनगुना दीजिए थोड़ा सा।
1: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा।
0: क्या बात है शेर खान जी, बहुत अच्छा गाया आपने। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका यानी कि श्रोता और विविध भारती परिवार का प्यार

0: और भी हमेशा यूं ही बना रहे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से उधर से भी रिस्पांस आ रहा है, बिल्कुल जोश के साथ। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम को नमस्कार।
0: बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम मैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी बोल रहा हूँ। मैडम
0: बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं ऑटो में सवारी घुमाने का, पर्यटक घुमाने का काम करता हूँ।
0: अरे वाह, उदयपुर है तो फिर तो घूमने घामने की बात तो होगी ही होगी।
1: जी बिल्कुल, लेक सिटी।
0: तो जब आप अपने पर्यटकों को घुमा रहे होते हैं तो क्या उन्हें जिस जगह ले जा रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं या फिर सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करते हैं?
1: नहीं मैडम, कोई पूछना चाहे तो हम उसकी जानकारी बिल्कुल देते हैं।
0: क्योंकि ऐसा कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारे जो ऑटो चलाने वाले भैया होते हैं वही हमारे आधे गाइड बन जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम पूरी जानकारी जो मांगते हैं पूरी जानकारी देते हैं मैडम। उसमें जो भी है घूमने की जगह उनको बता देते हैं। ये जैसे उदयपुर में सिटी पैलेस है, जगदीश टेम्पल है, फतेह सागर है, सुकन्या सर्कल है, सेलियों की बाड़ी है।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, उदयपुर में किस मौसम में आना चाहिए?
1: उदयपुर में मैडम खासकर तो दीपावली के दिनों के बाद शुरुआत ज्यादा आती है, पर्यटक ज्यादा आते हैं, विशेषकर गुजरात से, मुंबई से।
0: यानी कि ठंड के दिनों में?
1: जी बिल्कुल, दीपावली की छुट्टियां पड़ती है मैडम, उस टाइम ज्यादा टूरिस्ट आता है।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनने का समय आप कब निकालते हैं? ऑटो चलाते समय सुनते हैं?
1: मैडम बिल्कुल चलता रहता विविध भारती हमारा उस समय।
0: तो क्या कभी आपके किसी यात्री ने ऐसा कहा है कि अरे यार क्या आप ये रेडियो सुनते रहते हैं, थोड़ा आवाज कम करिए या फिर ऐसे कुछ?
1: नहीं मैडम, हमारा बिल्कुल ही मध्यम।

0: आवाज से चलाते मैडम, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल पंच सुने और सवारी सुन सके, बाहर तक आवाज नहीं जाती, इतनी वॉल्यूम रखते हैं मैडम
1: जी। ये बिल्कुल सही बात है
0: और हमको वीर भारती कभी डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम के अलावा।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो
1: जी, और
0: गाने के बोल है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए क्योंकि उदयपुर में अभी मैडम गर्मी बहुत चल रही है।
1: ठंडे ठंडे पानी की आपने बात कर दी है, उदयपुर क्या पूरे भारत भर में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है।
0: और मैडम इस गाने को हमारे साथ में हमारी वाइफ शांति वारी भी सुनना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो आपको और हमारी सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नेहा जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपने आवाज से पहचाना या फिर आपको पहले से पता चल गया था कौन है आज?
1: जी पता चल गया।
0: बताइए कौन बात कर रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोल रहा हूँ नेहा जी।
0: जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरी फ्लोर मैंने धर्मपुर में बाईपास चौराहे पे और यहाँ से मांडो 23 किलोमीटर है। आइए नेहा जी आप बारिश में।
0: जी मैं मांडो घूम चुकी हूँ। जी जी जब हम स्कूल में थे तब हमें हमारी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गई थी जब हम मांडो महेश्वर मंडलेश्वर तीनों एक साथ घूमे थे। जी तस्लीम जी ये बताइए आप हमारे विविध भारती के रेगुलर श्रोता हैं?

0: जी जी कम से कम मैं 35-40 साल से सुन रहा हूँ।
1: तो फिर आपको इन 35-40 सालों में कार्यक्रमों में जो बदलाव हुए वो भी आपको भली भांति पता होंगे।
0: जी जी, और ये अपना SMS के बहाने US के तराने तो बहुत पसंदीदा प्रोग्राम था हमारा।
1: ओ ऐसा, तो अभी जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
0: वो अभी मैडम बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन के लगभग हुए हैं
1: जी।
0: बराबर मालूम भी नहीं है, वो ज्ञापन सुना करते थे, वो सुनते रहेंगे तो वो मालूम पड़ जाएंगे सर।
1: जी मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूरी तरह जानकारी नहीं है तो सुबह 6:30 बजे और शाम में 6:30 बजे इन दोनों समय पर आप झरोखा सुन सकते हैं, जिसके अंतर्गत किस दिन कौन सा कार्यक्रम कितने बजे जाने वाला है उसकी पूरी जानकारी होती है।
0: जी नहीं मैं सुनता हूँ, शुरू सुबह 8 बजे से तो रात तक की फ्लोर में चला करती है, 9-10 बज जाती है, गीत तक सुना करता हूँ मैं।
1: क्या बात है, ये बताइए तस्लीम जी कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
0: 2 अक्टूबर फिल्म में गीत है साधना सरगम जी और उदित नारायण जी की आवाज में, चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू न शराब, हमको तो नशा है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम का जनाब।
0: क्या बात है, नमस्कार नमस्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बात अमरीश पुरी साहब से हो रही है।
1: जाना मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: ओहो डायलॉग पे डायलॉग, क्या बात है।
1: सतीश गुलियानी दिलकुशा मार्केट जलंधर, और रहता है अपने दोस्तों के दिल के अंदर। हर टाइम आपको याद करते हैं, आपकी मिलने की फरियाद करते हैं।
0: क्या बात है,
1: दिल नहीं लगता तो आपको फोन लगाते हैं।
0: ओहो क्या बात है, क्या बात है। आपकी ये आगाज करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा हमें।
1: मैडम जी सब कुछ आपसे सीखा जी आपने। हमें क्या आता है, हम तो बिल्कुल अनजान है। जो सीखा है रेडियो से, आकाशवाणी से सीखा है जी।
0: जी बिल्कुल सही बात है, रेडियो पर इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, विविध भारती पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं।
1: अपने तो दिल में ही रहते हैं, बस गैरों को याद किया जाता है। काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर हेलो फरमाइश में याद किया जाता है।
0: क्या बात है, आपने तो लड़ियां लगा दी हैं शायरियों की, डायलॉग्स की। लगता है आज बातें नहीं होंगी, डायलॉग्स ही होंगे।
1: डायलॉग ही चलेगा जी।
0: ये बताइए सतीश जी, अपने यारों दोस्तों के दिल में तो आप रहते हैं, मगर भौतिक तौर पर कहाँ रहते हैं?
1: मैं जलंधर दिलकुशा मार्केट, दवाइयों वाली मार्केट।

0: जी हमारी।
1: अच्छा अच्छा जी, और क्या करते हैं आप?
0: जी मैडम अभी तो तंग ही कर रहे हैं घर वालों को।
1: तंग करते हैं घर वालों को?
0: फ्री है जी।
1: अच्छा अच्छा,
0: हो गया ना।
1: ओहो, अरे आपकी आवाज से लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए होंगे।
0: कहते दिल होना चाहिए था जवान उम्र की रखिया। मैडम सैर करते हैं एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, और आज टाइम खुश रहते हैं। मैडम गीत सुनेंगे, राजकुमार फिल्म है जी वो, देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा।
1: ओहो क्या बात है, क्या आप गीत गाते भी हैं?
0: हाँ जी हाँ जी, मैडम पंजाबी में सुना दो हिंदी वाला?
1: कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: पंजाबी में सुनाता हूँ आपको।
1: बिल्कुल।
0: ठंडा हो जाओ चूल्हा चौंका वेड़ा सुनम सुना, दस जा किंज दाल बनावा किंज आटा गुन्ना, उन्हानी याद आऊगी। ओए होए मैं क्या नहीं जदों, मैं क्या नहीं जदों तुर जाएंगी, ओ पेके जान वाली है। सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं जा रहे हो तो गाड़ी मोबाइल में फोन आ जाता है तो गाड़ी जूस सैड पे लगाए।
1: बिल्कुल,
0: और जानवरों को दाना डाले, गर्मी है अपने कोठों पे वो कटोरे रखे, उनके अपने पानी और दाना झूल डाले।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। चलिए सतीश जी फिर आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, हम भी ठीक हैं। मैम मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी फहीम जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं एक्चुअली टूरिस्ट गाइड हूँ, टूरिस्ट से रिलेटेड काम करता हूँ, गाइडिंग करता हूँ। अभी मैं डल झील के अंदर हूँ, कस्टमर के साथ को गाइडिंग कर रहा हूँ।
0: आप कस्टमर के साथ हैं और आपने फोन भी लगा लिया?
1: हाँ जी हाँ जी, मुझे आपसे बात करने हुए बहुत टाइम हो गया।

0: सोचा आज विविध भारती के हेल्थ फरमाइश प्रोग्राम में आपसे बात कर लूं और अपनी पसंद के नगमे यहाँ डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के सुन लूं।
1: क्या बात है, मगर आपके जो टूरिस्ट हैं वो इस पर कोई नाराजगी तो नहीं जताएंगे?
0: नहीं नहीं, वो अभी फोटोज के साथ बिजी है, उन्होंने कश्मीरी ड्रेस में वो फोटोज कैप्चर कर रहे हैं अभी। जिस तरह शमी कपूर शर्मिला टैगोर ने वो नगमा जल्दी के अंदर शूट किया था चांसा रोशन चेहरा, तो वैसे ही उन्होंने भी ड्रेस पहने हैं कश्मीरी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ, वो अभी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आपसे बात करने का,
1: तो आपने मौके पे चौका मार लिया।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा ये बताइए, कौन कौन सी भाषाओं में आप गाइडिंग करते हैं?
0: जी सबसे पहले देश की भाषाएं हमारी हिंदी है
1: जी,
0: मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कर्नाटका है, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र भी आता है।
1: अच्छा आप इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हैं?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए आप जो काम करते हैं ये गाइड का, तो आपको किस किस तरह के अलग अलग लोग मिलते होंगे या फिर कुछ अनुभव आते होंगे? कोई अच्छा सा किस्सा किसी टूरिस्ट के साथ हुआ हो तो आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हर देश के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे, जो विदेश के लोग हैं वो भी बहुत सारे आते हैं, कश्मीर को एक्सप्लोर करके जाते हैं और बहुत अच्छी मैसेज लेकर जाते हैं। वो तभी जाते हैं जब उनके हम अच्छी गाइडिंग करते हैं, उनका अच्छे से साथ देते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग यहाँ से एक अच्छी मैसेज लेके जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा ही हो रहा है, लोग यहाँ से बहुत अच्छे खुशी होकर वापस जा रहे हैं। एक कस्टमर आया था वो केरला से था, काफी अच्छा रहा है उनके साथ, उनके साथ इतना अच्छे से हुआ कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो डायरेक्ट हमारे घर ही आए थे।
1: तो क्या बात है,
0: ज्यादा अच्छा रहा था।
1: फहीम जी से अच्छी खासी बात चल रही थी मगर शायद उनका कॉल कट हो गया बीच में से और हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन हमारे जो साथी होते हैं उन तक ये कौन सा गीत फहीम जी सुनना चाहते थे इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है, तो आइए फहीम जी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

0: श्रोताओं, आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आपने जिस उत्साह से अपनी राय हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आपकी बातें, आपके सुझाव और आपके अनुभव ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, बदलाव से ही निखरती है हर एक कहानी, आपके साथ से ही मिलती है हमें नई रवानी। उम्मीद है कि हमारे नए कार्यक्रम और बदले हुए समय आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपके हर दिन को और भी खास बनाएंगे। साथ ही हम अपने साथियों को बताते चले कि अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले सोमवार को सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम यानी कि हेलो फरमाइश में, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपसे की हुई बातें। हमारा टेलीफोन नंबर है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर सुने, 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर 2687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे गुरुवार को दिन में 4 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार को दिन में 10 बजे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वे कृपया अब 2 माह के बाद ही कॉल मिलाएं, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रहा सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इसी के साथ आज के इस हेलो फरमाइश कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जिंदगी में रूमानियत बहुत जरूरी है। इंसान वही रूमानी हो सकता है जिसमें एहसास का मादा हो, जिसमें जज्बात हो। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का एक डायलॉग है, बाबू मोशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए।

सामिन, जिंदगी में रूमानियत बहुत जरूरी है। इंसान वही रूमानी हो सकता है जिसमें एहसास का मादा हो, जिसमें जज्बात हो। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का एक डायलॉग है, बाबू मोशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। देखिए ना, मैं भी यही सोचती हूँ। तुम मेरे जीवन का वही कोना हो, जहां मैं जिंदगी को खुलकर रूमानियत के साथ जीना चाहती हूँ। डरकर नहीं, मरकर नहीं।

प्यार में शर्तों का कोई काम नहीं है ना। हमारी सादगी में बसी है रूहानी मोहब्बत। दिखावे की दुनिया से दूर हम सादगी का लिबास ओढ़े बैठे हैं। देखो ना, दिल चाहता है चांदनी रात हो और महबूब का साथ हो, महकती हवा और चांद तारों की छांव हो। तुम मेरे साथ हो ना तो मन मयूर कह उठ रहा है, ये रात कभी खत्म न हो। हाँ, ये रात कभी खत्म न हो।

दिन की भागदौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा न हो तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाती है। ख्वाब के प्याले से होकर नींद जब आंखों में पिघलती है, बिखरी हुई रात आसमां से यूं आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। मैं आंखें बंद करती हूं, लगता है मैं किसी खूबसूरत सपने में जी रही हूं। ओह, ये रात बहुत हसीन है, तुम्हारे पास होने से ये सपनों की रात बन गई है जैसे।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मोहब्बत की किताब का यही फायदा है कि इसके अक्षर पढ़ने के लिए उजाले का होना नितांत गैर जरूरी है। देखो ना, तुम्हारा स्पर्श मुझे ऐसी जकड़ लेता है जैसे उदासी भरी दीवारों पर चढ़ती हूँ लताएं। जब मन में प्यार पनपता है तो बाहर का मौसम भी हसीन लगता है। हवाएं प्यार का संगीत घोल रही होती हैं और बादल बूंदों के रूप में

अपना प्रेम बरसाने लगता है। और प्यार में तो शाख से गिरे सूखे पत्तों से भी आती है मरमरी धुने। हाँ, मरमरी धुने।

कभी कभी आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस आते हैं तो आपको सोने नहीं देते, लेकिन प्यार में डूबी मेरी अंखियां सिर्फ तुम्हें तलाशती हैं। सारा दिन बेचैन रहती हैं, तुम्हारे कदमों की आहट की तलाश रहती है इन्हें। चांदनी रात में खुशबूदार फूलों का मेरे जूड़े पर गजरा सजाना, आह आज भी रूह में महकता है तुम्हारा वो अंदाज़े मोहब्बत निभाना।

रात की खामोशी में जब तुम मेरे साथ होते हो तो लगता है जैसे खुदा ने मुझे अनमोल पल उपहार में दिए हैं। सिर्फ तुम्हारी इबादत के ख्वाब के साथ तुम्हारे आगोश में हो अंतिम पड़ाव जीवन का। ओह, कितनी रूहानी है ये प्रेम की अनुभूति।

अभी राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब सुनिए निमाड़ी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत FM 101.2 MHz पर। आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। अब प्रस्तुत है युवा दिलों की वाणी कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। युवावाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त शांभवी का तेज़ गर्मी में मिली ठंडी मीठी चुस्की साथ ठंडक भरा, मिठास भरा और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि आज है गुरुवार और युवावाणी के खजाने में हमेशा की तरह हमारा आज का क्रम होता है अनोखी जानकारी, मनोरंजक गीतों और रोचक बातों के रंगों से सजा इंद्रधनुष। लेकिन दोस्तों इंद्रधनुष के रंगों का आनंद लेने से पहले हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न भी सुन लीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा हरियाणा में बनवाए गए महल का नाम क्या है। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, देश में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को किस दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। दोस्तों इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप सभी कार्यक्रम के अंत तक खोज कर रखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ युवावाणी में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों, वैसे तो हमारे देश के युवा खेल कूद में रुचि रखते हुए बढ़ चढ़ कर खेलों में हिस्सा लेते हैं और साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका थोड़ा सा श्रेय विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को भी जाता है, क्योंकि यह विशेष रूप से फिटनेस को बढ़ावा देने और खेलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का दिन है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अव्यावसायिक एथलेटिक्स महासंघ यानी IAAF की स्थापना साल 1912 में विभिन्न खेलों को आयोजित करने के लिए की गई थी, जिसके बाद साल 1996 में सर्वप्रथम विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य था एथलेटिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर के युवाओं को खेल में भाग लेने के प्रति प्रेरित करना। और दोस्तों, यही कारण है कि प्रतिवर्ष आज यानी 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। इस वर्ष यह दिवस विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को एथलेटिक्स की ओर आकर्षित करता है और इस वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026 का विषय है पावर ऑफ 5 यानी 5 की शक्ति, क्योंकि इस वर्ष यह कार्यक्रम अपना 5वां वर्ष मना रहा है और उत्साह और जुड़ाव पर केंद्रित है।

दोस्तों, इसी के साथ इंद्रधनुष की रोचक जानकारी की ओर बढ़ें तो सबसे पहला इंद्रधनुषी रंग प्रकृति का देखने को मिलता है, क्योंकि आज के दौर में प्रकृति में घूमने और यात्रा करने के साथ ही लोग अपनी यात्राओं को इस धरती के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं और इसी सोच ने जन्म दिया है वॉलंटूरिज्म को, यानी एक ऐसा टूरिज्म या यात्रा जिसमें व्यक्ति प्रकृति से जुड़ाव के साथ समाज, पर्यावरण या किसी समुदाय के लिए योगदान भी देता है। दोस्तों, वॉलंटूरिज्म का मतलब है यात्रा के दौरान किसी सामाजिक या पर्यावरणीय कार्य में हाथ बटाना, जिसमें आप अपनी स्किल्स के अनुसार शिक्षा, प्राकृतिक खेती या सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स में योगदान दे सकते हैं। साथ ही इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है, जहां एक और स्थानीय लोगों के साथ काम करने से आपका टीम वर्क, कम्युनिकेशन और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर नई भाषाएँ सीखते हैं, स्थानीय संस्कृति और समाज को भी करीब से समझते हैं।

दोस्तों, ठंडी हवा में लॉन्ग ड्राइव और लंबे सफ़र का अपना मज़ा होता है, लेकिन यदि रास्ता लंबा हो तो हाईवे हिप्नोसिस का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, हाईवे हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म को सम्मोहन भी कह सकते हैं। जब वाहन चलाते समय आप लंबे सफ़र पर निकलते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि सड़क पर संकेतों सहित आसपास की अन्य चीज़ों पर दिमाग ध्यान नहीं देता। यदि आसान शब्दों में कहें तो हाईवे हिप्नोसिस एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें वाहन चालक लंबे समय तक एक जैसी सड़क स्पीड और वातावरण में ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और गाड़ी चलाते समय अचानक एहसास होता है कि पिछले 10-15 मिनट में क्या देखा, कैसे ड्राइव किया, कुछ याद नहीं रहता। और यह परिस्थिति खतरनाक तब बनती है जब ड्राइवर का रिएक्शन टाइम बढ़ जाने की वजह से अचानक ब्रेक या मोड़ पर देर होने के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, सफ़र के दौरान हर 1-2 घंटे में ब्रेक लेते हुए, थोड़ा रुकते हुए, मार्ग में आने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लीजिए। म्यूज़िक, रेडियो या पॉडकास्ट सुनते हुए आप अपने सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही बीच बीच में स्पीड और पोजीशन बदलते रहें। अगर बहुत थकान हो तो रुककर आराम करें और पर्याप्त नींद लेकर ही ड्राइव करें।

दोस्तों, भारत ऊर्जा के मोर्चे पर एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। देश अपने विशाल कोयला भंडार का उपयोग अब डर्टी फ्यूल के बजाय एक स्वच्छ औद्योगिक संसाधन के रूप में करेगा। दोस्तों, पारंपरिक रूप से कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती रही है, जिससे प्रदूषण होता है, लेकिन अब कोयला गैसीकरण तकनीक से इसे सीधे जलाने के बजाय सिन गैस में बदला जाएगा। यह गैस यूरिया, मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन बनाने में काम आएगी। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल देश की ऊर्जा हिस्सेदारी में 74% बिजली उत्पादन अभी कोयले पर आधारित है। साथ ही दोस्तों, मंदसौर में अब मालदीव जैसा आकर्षण देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गांधी सागर के नीले शांत जल के बीच उभरता हरा भरा मालाश्री टापू प्रकृति के अनोखे रूप से नजर आता है। दोस्तों, लहरों के बीच बसे इस सुंदर से द्वीप में मिनी मालदीव जैसा आकर्षण देखने को मिलता है, जहां सुकून और सौंदर्य एक साथ महसूस होते हैं। और अब मंदसौर के इस मनोरम टापू को पर्यटन मानचित्र पर उभारने की नई पहल शुरू हुई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड यहाँ फिक्स्ड टेंटिंग यूनिट्स विकसित करने की योजना बना रहा है, ताकि पर्यटकों को प्रकृति के बीच ठहरने का अनुभव मिल सके। और दोस्तों, रहा सवाल मालाश्री टापू तक पहुँचने का, तो पहले आपको गांधी सागर स्थित मध्य प्रदेश टूरिज्म के बोट क्लब तक आना होगा। यहाँ से नदिया में नाव के सफर का मजा लेते हुए आप पहुँच जाएंगे मिनी मालदीव यानी मालाश्री टापू।

दोस्तों भारत में गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में जानलेवा लू यानी हीट वेव से बचने के लिए और घर को ठंडा रखने के लिए आज भी जहां एक ओर उत्तर भारत में खिड़कियों और दरवाजों पर खसके पर्दे लगाए जाते हैं जिन्हें पानी में भिगोने पर आने वाली हवा भीनी भीनी खुशबू के साथ ठंडक भरी होती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान और गुजरात जैसे गर्म इलाकों में छत पर सफ़ेद चूना या पेंट किया जाता है। पश्चिम और उत्तर प्रदेश में गर्मी से बचने के लिए बेंत और बांस के पर्दे लगाए जाते हैं और मिट्टी के घड़े तो अपने घरों में भर ही दिए होंगे आपने ठंडे ठंडे पानी के लिए। वैसे दोस्तों आप इनमें से कौन सा उपाय करने वाले हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए, हमें पत्रों और ईमेल्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।

दोस्तों, यह तो था हमारा आज का क्रम। इंद्रधनुष इसी के साथ समय हो चला है कार्यक्रम के आरंभ में पूछे गए सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के उत्तर देने का। आज का हमारा पहला प्रश्न था, शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा हरियाणा में बनवाए गए महल का नाम क्या था? इसका उत्तर है गुजरी महल। और आज का दूसरा प्रश्न था, देश में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? इसका उत्तर है बोरीबंदर बम्बई और ठाणे के बीच। दोस्तों, यह तो थे हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के उत्तर। इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम संपन्न करने की दी अनुमति आपकी दोस्त शांभवी को। फिर मिलेंगे, तब तक हैव अ गुड टाइम। गुड बाय। नमस्कार।

अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था FM 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आप प्रस्तुत है फिल्म संगीत

झुमका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या

रहने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र

0: आप इसे जमीन के कौन से हिस्से से लाए हैं?
1: सर, हम इसे जमीन के पूरी हिस्से के मुल्क हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से लाए हैं।
0: ये नमूना उस वक्त क्या कर रहा था?
2: अपने दफ्तर के बाहर लॉन में बैठा मूंगफलियां खा रहा था।
0: क्या दफ्तर के टाइम में? और कोई इंफॉर्मेशन?
1: इसकी जेब में जो कुछ निकला है उसमें एक टूटी हुई कंघी, एक बीड़ी का बंडल, एक लॉटरी का टिकट, एक नावल और ₹1.35 है।
2: और निकला है एक आइडेंटिटी कार्ड जिससे पता चलता है इसका नाम रामलाल है, ये अपने दफ्तर में क्लर्क है।
0: आपको इसे लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं?
1: नो सर, हमने जमीन पर पहुंचने के बाद इनविजिबल यानी अदृश्य होने वाली गोली खा ली थी
2: और इसे बेहोश करने के बाद एक गोली इसे भी खिला ली थी।
0: चूंकि हमें इसे मिशन के लिए पूरी रफ्तारी से काम लेना है, इसलिए इस बात को चेक करने के लिए आप नमूने के सबकॉन्शियस माइंड को बेदार कीजिए और कंप्यूटर की मदद से इसे साउंड एक्सरे डिवाइस पर लाइए और फिर मेरा सवाल इस तक पहुंचाइए।
3: यस सर।
4: मिस्टर रामलाल, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस वक्त कहां हो? या क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या बीती?
5: मुझे कुछ मालूम नहीं। आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये कि मैं अपने दफ्तर के बाहर लॉन में बैठा लंच कर रहा था। लंच के बाद जो ही मैंने नावल पढ़ना शुरू किया, अचानक मेरे दिमाग पर अंधेरा छा गया।
0: एजेंट ट्रिपल जेड।
3: यस बॉस।
0: आप इसके सबकॉन्शियस माइंड को जगाए रखिए और इसे अनुवाद टेप पर लाकर मुझे इसके घर की हालत की एक झलक दिखलाइए।
5: ओहो, अब मैं पूछता हूँ मेरी ऐनक कहाँ है?
6: आपकी ऐनक? एलो, ये आपकी आंखों पर क्या है जी?
5: तो फिर मुझे पेन क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं मिल रहा
6: पेन? आए हाय, तो ये आपके हाथ में क्या है?
5: ओ, तो इसमें सामने जवाब देने की क्या बात है? लो, अब कमीज का एक बटन ही टूटा हुआ है। क्या घर में एक बटन भी नहीं था?
6: बटन तो क्या घर में साबुन भी नहीं है। और ये कमीज आपको 3 दिन चलानी होगी।
5: हाँ। और बनियान 6 दिन। मैं कहता हूँ मैं पागल हो जाऊंगा इस घर में। ये जिंदगी है या नरक? कमामत नहीं और बड़ा परिवार, सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह, कभी दूध की लाइन में तो कभी राशन की लाइन में तो कभी बस की लाइन में तो कभी बनिए की लाइन में, ऊपर से तुम्हारी तू तू मैं, इससे तो मैं दफ्तर में ही अच्छा।
0: मुझे एक बार फिर इसके माइंड से जोड़िए और मेरे कुछ और सवालात इस तक पहुंचाइए। मैं जानना चाहता हूं कि जमीन के इन लोगों की इस हालत की वजूहात क्या है। मिस्टर रामलाल, क्या आपके घर का माहौल हमेशा से ऐसा है?
5: जी नहीं।
0: तो क्या कभी आपको अपनी पत्नी से मोहब्बत थी?
5: बहुत ज्यादा। शादी के बाद कई साल तक?
0: इसका कोई सबूत?
5: 6 अदद बच्चे।
0: 6 बच्चे? My goodness! मगर अब मोहब्बत में कमी का कारण?
5: शादी के वक्त मेरी पत्नी एक हूर थी, मगर अब शक्ल लंगूर है।
0: इसकी वजह?
5: वही 6 अदद बच्चे।
0: समझा। बहुत पिछड़े हुए। एजेंट ट्रिपल जेड।
3: यस बॉस।
0: जमीन के नमूने के बारे में हमारी खोज और जानकारी कई पहलुओं से मायूस कुन होने के बावजूद दिलचस्प है। मैं चाहता हूँ कुछ इसके दफ्तर के बारे में मालूम करूँ। मुझे एक बार फिर इसे करेक्ट कीजिए।
3: यस बॉस।
0: मिस्टर रामलाल, आपके दफ्तर का आम सिस्टम क्या है?
5: हमारा सिस्टम वही है जो मैं चाहता हूँ।
0: यानी
5: अपनी मर्जी और अपने वक्त से आता हूँ और अपनी मर्जी और अपने वक्त से जाता हूँ। चाहूँ तो फाइल 2 मिनट में निपटा दूँ और चाहूँ तो फाइल 2 दिन में भी ना निपटाऊँ और चाहूँ तो फाइल सिरे से ही गायब कर दूँ। काम करवाने वाले इंतजार करते हैं तो करते रहे, मैं अपने सिस्टम के मुताबिक बीच बीच में रिलैक्स करने के लिए सिगरेट बीड़ी जरूर पीता हूँ। सच तो ये है कि सारा दफ्तर मेरे गिर्द घूमता है। जब तक कोई कागज मेरे हाथ से होकर ना निकले

0: कुछ नहीं कर सकता।
1: हैरत है इस कदर लूज सिस्टम।
2: और एक हमारा सिस्टम है कि हर शख्स एक मशीन की तरह है, एक एक मिनट और एक एक सेकंड का हिसाब है। हमारे डिसिप्लिन सिस्टम और रूटीन की पाबंदी का ये आलम है कि कोई शख्स सदियों तक इसमें तब्दीली या गलती नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी ड्यूटी को ही जिंदगी मानता है और ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा हमेशा हमेशा।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं सर।
2: एजेंट ट्रिपल जेड।
0: यस बॉस।
2: ये नमूना जो अपने बॉस के बारे में गोलमाल बात कर गया, जरा उस रात से पर्दा हटाओ।
0: यस बॉस। रामलाल।
3: यस सर।
0: तुम बिल्कुल ही डल हो। मैंने तुम्हें सर्किट हाउस भेजा था मगर तुम नामुकम्मल फाइल लेकर चले आए। मैंने तुम्हें मिस्टर पांडे से सख्ती से निपटने के लिए कहा था मगर तुम उसकी बातों में आ गए। मैंने तुम्हें इंक्वायरी की फुल रिपोर्ट देने को कहा था मगर तुमने कुछ नहीं किया। मैं हैरान हूँ कि तुम जिंदगी में कभी कुछ काम सही या मुकम्मल करोगे भी कि नहीं।
3: मैं
0: पूछता हूँ, तुम्हारा कोई अखलाक भी है?
3: जी।
0: मिस्टर पांडे ने तुम्हें चाय पिलाकर अपना मतलब निकाल लिया। हैरत की बात है कि फकत एक कप चाय के लिए तुम अपना जमीन बेचकर चले आए।
3: जी वो
0: क्या?
3: जी वो चाय के साथ पेस्ट्री बिस्कुट भी थे।
0: ओह माय गॉड।
2: इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प। एजेंट ट्रिपल जेड।
0: यस बॉस।
2: क्यों ना कोई दिलचस्प पहलू देखा जाए। आ कोई दफ्तर की ही एक झलक।
0: ओके बॉस।
3: ओ रोजी, आखिर तुमने मुझे लिफ्ट दे ही दी। आखिर मेरी 3 साल की तपस्या काम कर ही गई।
4: रेली?
3: सच पूछो तो मैं बाकायदगी से दफ्तर आता ही तुम्हारे लिए हूँ। सामने बैठे हुए जब तुम पतली पतली उंगलियों से टाइपराइटर पर बिजली की तरह टाइप करती हो तो मेरा सुख चैन उड़ जाता है। मुझे लगता है तुम टाइप नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक गिटार पर फिल्मी धुन बजा रही हो।
4: ओह गॉड।
3: तुम काले हो तो क्या हुआ, दिलवाले हो?
4: मिस्टर रामलाल, मिस्टर रामलाल, तुम कुछ ज्यादा ही तड़प रहे हो।
3: हाय रोजी।
4: रामलाल, काश तुम्हारी मालिया हालत कुछ अच्छी होती तो रोमांस में कुछ मजा भी आता। अभी तक तो हमारी भेंट पैकोरास और कैंटीन की चाय से आगे नहीं बढ़ सकी।
3: तुम ठीक कहती हो रोजी, मुझे तुम्हारे जैसी फैशनेबल लड़की से रोमांस में जान डालने के लिए कुछ और मेहनत करनी होगी।
4: ऑफ कोर्स।
3: ओवर टाइम तो हमारी ब्रांच में बंद हो गया है और डीए और टीए भी बढ़ने का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अब मैं हर फाइल पर वो नोट।
4: ओ मिस्टर रामलाल, रामलाल तुम कैसा बातें करते हो, अब मैं बहुत बोर हो गई। अब मुझे जरा जल्दी भी जाना।
3: क्या?
4: कोई मेरा वेट भी कर रहा होगा। ओके फिर मिलेंगे। बाय।
2: इंटरेस्टिंग, ये फ्लैशबैक भी खूब था।
0: हे सुप्रीम बॉस, प्लीज स्पेसिमेन, मेरा मतलब है नमूना, होश में आ रहा है?
3: मैं कहाँ हूँ, आप लोग कौन हैं?
2: तुम इस वक्त मंगल ग्रह पर हो मिस्टर रामलाल।
3: मंगल ग्रह पर? क्या मेरी ट्रांसफर हो गई है?
2: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
3: तो जोशी राम भरोसे ठीक ही कहता था कि मुझ पर मंगल सवार है।
2: मिस्टर रामलाल, इस वक्त मंगल तुम पर सवार नहीं, तुम मंगल पर सवार हो।
3: भाई दीवे, क्या इस लंबे सफर के लिए कोई टीए मिलने की संभावना है?
2: नो
3: नो।
2: एजेंट ट्रिपल जेड।
0: यस बॉस।
2: मेमोरी मशीन में इसका ब्रेन वॉश कर दो और थोड़ी देर के लिए इसे मंगल के जंगल में छोड़ दो।
0: यस बॉस। गजब हो गया बस, गजब हो गया, सारा स्टाफ लूज हो गया है। कोई कैंटीन में चाय पी रहा है और कोई सिगरेट सुलगाए रिलैक्स कर रहा है, कोई तो ओवर टाइम मांग रहा है और कुछ ने तो पेन डाउन स्टाफ की धमकी दी है और वो जमीन का नमूना उनके साथ बैठा उन्हें

0: फल मूंगिया खिला रहा है।
1: सर सर क्या मैं भी थोड़ी देर के लिए नॉवेल पढ़ सकता हूँ?
2: बट मैं समझ गया, ये सब जमीनी जरासीम का असर है। ये नमूना यहाँ अपने कीटाणु और बैक्टीरिया छोड़ रहा है, इसे फौरन यहाँ से रवाना करो, फौरन वापस जमीन पर भेजो, वरना हम लोगों का भी वही हाल होगा जो जमीन के लोगों का है।
1: मगर बॉस इसे छोड़ने कौन जाएगा? स्टाफ तो कंट्रोल से बाहर हो गया है।
2: इसे रिमोट कंट्रोल रॉकेट में रवाना कर दो आदमी रहित यान में, और फौरन एंटी इमोशन गैस के गोले छोड़कर स्टाफ का ब्रेन वॉश कर दो। ये मंगल ग्रह है।
1: यस सर।
2: यहाँ एक डिसिप्लिन है।
1: यस सर। यस सर।
2: एक रूटीन है।
1: यस सर।
2: एक सिस्टम।
3: ने सुनी लेखक राजकुमार दाग थे, निर्देशक दीनानाथ, प्रस्तुति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म जवान से। इसे गाया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। गीत कुमार का है, संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र का।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी को सुनिए। फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, संगीत प्रीतम का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

0: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। आइए अब सुनते हैं धुरंधर द रेवेंज फिल्म में जैस्मीन सैंडलेस और सतिंदर सरताज की आवाजें। संगीत शाश्वत सचदेव का है।

अभी आपने गदर टू का गाना सुना, गीत सईद कादरी का था, संगीत मिथुन का। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में कबीर सिंह फिल्म का गाना, गीत इशाद कामिल ने लिखा है, संगीत सचेत परंपरा का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
4: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
4: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2

0: 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
1: कैनेडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रहे सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की एक कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सिंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल माहे

दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों से। फिल्म का नाम है जौहर महमूद इन गोवा। गीत कमर चलालाबादी का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में मन की आंखें फिल्म का गाना सुनिए। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: Pakistan without even crossing the border. Defense Minister Rajnath Singh, while speaking about the operation, said,
1: हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी. भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया. हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया. भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है. हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है.
0: India's retaliatory response was unimaginable for the enemy. It was triggered by the deadly Pahalgam attack. On April 22nd, terror struck Pahalgam. Pakistan-backed attackers stormed a village, asked people their religion and killed them, resulting in the death of 26 people. It was a clear attempt to incite communal violence. This marked a shift from cross-border attacks to dividing India from within. In response, India launched Operation Sindoor to destroy the terror bases behind the attack. But Pakistan hit back harder. Over the next week, it used drones and shelling to target religious sites, the Shambhu Temple in Jammu, the Gurudwara in Poonch, and the Christian convents were attacked. These were not random strikes. These were part of a plan to break India's unity. To safeguard the honor of the nation, its military prowess roared. 11 major air bases were targeted.
2: मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, POJK, के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप भिंबर, अब्बास कैंप कोटली. अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी. पहला सरजल कैंप सियालकोट, दूसरा महमूना जाया कैंप सियालकोट, मरकज ताइबा मुरीद के, मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर.
0: India countered the enemy on multiple fronts. The battle was not just on the borders. It was also the information warfare that was being fought. The officers of the Indian Armed Forces briefed the media every day. Air Marshal A.K. Bharti, while briefing the media, informed about why 11 air bases were chosen.
3: This was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated.
0: Nearly 20% of Pakistan's air capability was degraded before they could mount a response. This wasn't just about force. It was precision at a completely different level. Rafales, advanced strike systems and indigenous AI-enabled networks worked in perfect coordination, intercepting every incoming threat with speed and accuracy. Operation Sindoor was a significant demonstration of India's military and strategic power, executed through a combination of military and non-military means. This multidimensional operation effectively neutralized India's terrorist threats, deterred Pakistani aggression, and firmly enforced India's zero-tolerance policy towards terrorism. The operation maintained strategic restraint while gaining international support.
4: भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया. आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है.
0: The military measures included the Indian Armed Forces launching the

0: किए जाते हैं।
1: He added that water and blood cannot flow together.
0: भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता इतना अन्यायपूर्ण है, इतना एक तरफा है।
1: He stated that if there are talks with Pakistan, it will be only on terrorism. Prime Minister said,
0: Operation Sindoor जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: On the first anniversary of Operation Sindoor, you were listening to a special program on India's firm response against terrorism and unparalleled valor of Indian armed forces. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: Spotlight.
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जैसा कि हमने आपसे कहा, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं प्रेम धवन को। प्रेम धवन की शख्सियत के कई पहलू रहे हैं। वो गीतकार रहे, संगीतकार रहे, यहां तक कि उन्होंने कुछ फिल्मों की कोरियोग्राफी भी की है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी की कहानी। इसके लिए हमें चलना होगा साल 1923 में अंबाला शहर में। अंबाला शहर में थे एक जेल सुपरिंटेंडेंट जिनके घर 13 जून 1923 को एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर प्रेम धवन के नाम से विख्यात हुआ। प्रेम धवन के पिता जेल सुपरिंटेंडेंट थे और कुछ ही दिनों में उनका तबादला हो जाया करता था, इसलिए प्रेम का बचपन कई शहरों में बीता और शहर शहर भटकते हुए परिवार का कारवां पहुंचा लाहौर। तब तक प्रेम धवन कॉलेज जाने की उम्र में पहुंच चुके थे। मशहूर लाहौर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। यहां उनके सहपाठी थे इंद्र कुमार गुजराल और साहिर लुधियानवी। आई के गुजराल आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने और साहिर लुधियानवी एक जाने माने गीतकार। ऐसे जागरूक साथियों का साथ मिला और प्रेम धवन का रुझान युवा राजनीति में हो गया। उन्होंने उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जुट गए। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई के लिए चेतना जगाने का काम नौजवान करते थे। प्रेम धवन पंजाब में इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के बैनर तले प्रेम धवन अपने साथियों के साथ गांव-गांव, शहर-शहर जाते नाटक और गीत संगीत के जरिए आजादी के लिए चेतना जगाते, लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा देते और इस तरह एक दिन भारत आजाद हो गया।

प्रेम धवन की दिलचस्पी इप्टा के हर पहलू में थी, संगीत में, गीत में, यहां तक कि नृत्य में भी। उन्होंने पंडित रविशंकर से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। उन दिनों में वे पंजाबी में गीत गाया करते थे। यही वो दौर था जब रविशंकर के भाई मशहूर नर्तक उदय शंकर के साथ ही शांतिवर्धन से प्रेम धवन ने शास्त्रीय नृत्य की तालीम ली। उन दिनों में वो डांस ट्रूप का हिस्सा हुआ करते थे। आगे चलकर प्रेम धवन मुंबई आ गए। उन दिनों के मशहूर संगीतकार खुर्शीद अनवर ने प्रेम धवन को अपना सहायक बना लिया। साल 1946 में प्रेम धवन की शुरुआत हुई बतौर गीतकार फिल्म पगडंडी के जरिए। सन 1948 में प्रेम धवन ने खेमचंद प्रकाश के लिए मशहूर फिल्म जिद्दी के गाने लिखे। आपको बता दें, जिद्दी वही फिल्म है जिसमें किशोर कुमार ने अपना पहला पार्श्व गीत गाया। हालांकि वो गाना जज्बी ने लिखा था, मरने की दुआएं क्यों मांगू, लेकिन इसी फिल्म में प्रेम धवन का लिखा लता मंगेशकर का गाया राग छाया नट पर आधारित ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ।

सलील चौधरी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है प्रेम धवन ने। सन 1955 में आई फिल्म तांगे वाली और इसका ये तांगा गीत।

0: लिया
1: कोई ना,
0: एक की मैं कुफर तो लिया
1: कोई ना,
0: एक की मैं जहर को लिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ हट के भला जी बच के,
2: सन 1961 में प्रेम धवन ने फिल्म काबुलीवाला का ये नायाब गीत लिखा।

सलील चौधरी के लिए प्रेम धवन ने फिल्म आवाज के गाने भी लिखे। अब बात करते हैं प्रेम धवन और हिंदी फिल्म संगीत जगत के बेहद वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास की जोड़ी की। सन 1951 फिल्म तराना, तलत महमूद का ये गाना।

सन 1953 में अनिल बिस्वास ने कई रागों पर आधारित एक गाना बनाया जो रागावली कहलाता है। फिल्म हमदर्द का ये गीत मन्ना डे ने गाया। इसके बोल प्रेम धवन के थे।

धवन की शख्सियत के कई पहलुओं में से एक था उनका संगीतकार वाला पहलू। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में संगीत नहीं दिया, गिनी चुनी फिल्में हैं उनके संगीत निर्देशन में। प्रेम धवन के दोस्त और मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने जिद करके फिल्म शहीद के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी प्रेम धवन को सौंपी।

0: ये सन 1965 की बात है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रेम धवन ने शहीद भगत सिंह की मां से मुलाकात की। ये उनके लिए बहुत जज्बाती अनुभव था और उन्होंने इस यादगार मुलाकात को एक गाने में ढाल दिया और वो गाना है मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना।
1: तू न रोना के तू है भगत।

प्रेम धवन की संगीत निर्देशन वाली कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके हीरो रहे हैं तारा सिंह। इन फिल्मों के नाम हैं वीर अभिमन्यु, किसान और भगवान, मेरा देश मेरा धर्म, भारत के शहीद। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रेम धवन ने नृत्य की तालीम भी ली थी और फिल्म संसार में जब जब मौका आया उन्होंने कोरियोग्राफी की। सन 1949 में फिल्म सिंगार के लिए उन्होंने नर्तकी कुक्कू को कोरियोग्राफ किया था। फिल्म नया दौर के इस गाने का नृत्य निर्देशन प्रेम धवन का ही था।

0: इसके अलावा प्रेम धवन ने आरजू, धूल का फूल, वक्त और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्मों के लिए नृत्य निर्देशन किया। जब जब मौका लगता प्रेम धवन फौजियों के पास जरूर जाते। जब अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने अजंता आर्ट्स के जरिए फिल्मी सितारों के एक ट्रूप को फौजियों के पास पहुंचाया और उनके लिए कुछ कार्यक्रम किए, तब लद्दाख और नाथुला की यात्रा में प्रेम धवन उनके साथ थे। अपने बैनर त्रिवेणी पिक्चर्स के जरिए प्रेम धवन ने सामाजिक मुद्दों पर कई डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण किया। फिल्म संसार में योगदान के लिए सन 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है। अभिनेत्री सुरैया अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म का नाम था मोती महल और हुआ यूं कि स्टूडियो आते वक्त उनकी गाड़ी बिगड़ गई और वो शूटिंग के लिए बेहद लेट हो गई। जब वो शूटिंग के लिए फ्लोर पर पहुंची और उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि उनकी गाड़ी बिगड़ गई थी, इस वजह से वो लेट आई। उफ, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में। बस प्रेम धवन ने इस घटना को गाने में ढाल दिया और ये गाना सुरैया ने ही गाया।
1: कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर रस्ते में, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में।
0: आपको बता दें कि 7 मई सन 2001 को प्रेम धवन ने इस असार संसार से अलविदा कह दिया।

0: कलाकार, एक नायाब गीतकार, एक अद्भुत संगीतकार और प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी प्रेम धवन को हमारा नमन। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को, मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को अपना एक इकरार दे दे। मैं क्या दे पाऊंगा तुझे इस मोहब्बत के सिवा, बस तू मुझे अपना बना ले, मुझ पर ये एक एहसान कर दे।

0: मत जाओ मुझे यूं अकेला छोड़कर, ऐ मेरी जान। मेरी हर धड़कन तुझसे ही है, ये बात तू मान। अगर जाना ही पड़े तो वादा कर, जल्दी लौट आएगी। तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है, यूं देर तक मुझे ना तड़ पाएगी।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए।

चांद खिड़की पे ठहरा है तेरी राहों की तरह, और रात खामोश है मेरे जज्बातों के साथ। नींद आंखों से कोसों दूर भटक रही है, और तू याद आ रही है हर एक धड़कन के साथ।

आने वाले पल का हिसाब, जो मिला उसी में ढूंढ लिया हर बार कुछ खास, हवाओं के संग बहते हुए जीना ही उसूल बना लिया, जैसी भी मिली जिंदगी उसे वैसे ही हंसकर गले लगा लिया।

तेरे चेहरे की लकीरों में भी नूर सवसता है, हर गुजरा हुआ लम्हा तुझ में फिर से हंसता है। वक्त चाहे जितना भी सफर तय कर ले, पर तू आज भी दिल को पहली मोहब्बत सा लगता है।

रास्तों से हर कांटा चुन लूं मैं, तेरे हर ख्वाब को अपना बना लूं मैं, तेरी हर खुशी पे अपनी दुनिया लुटा दूं मैं, तेरे हर गम को हंसकर अपना बना लूं मैं। बस एक अर्ज है दिल से, उम्र भर साथ निभाने का वादा कर दे।